मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ माह की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 जून सन 2026। इस समय सुबह की 5:55 और 41 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

सुबह की भोर का सौंदर्य हमारे मन मस्तिष्क को शांति और स्फूर्ति पर भर देता है। भोर होते ही गहरा नीला और काला आसमान धीरे धीरे सुनहरे गुलाबी और नारंगी रंगों की चादर ओढ़ लेता है। पक्षियों की चहचहाहट सोई हुई प्रकृति को जगा देती है और पेड़ों पर बैठी चिड़ियों की मधुर आवाजें गूंजने लगती है, जो एक प्राकृतिक संगीत सा महसूस होता है। भोर की बहने वाली धीमी और ठंडी हवा तन और मन को तरोताजा कर देती है। नमस्ते लखनऊ में, मैं अंजलि श्रीवास्तव भोर की सुहानी बेला में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। सुबह के 6 बजने वाले हैं, समय है समाचारों का। आइए चलते हैं दिल्ली केंद्र समाचार सुनने के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन

यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में एफआईएच प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। समय है हमारे किसान भाइयों को कृषि से संबंधित जानकारी देने का। आज सुनी मूंगफली की उन्नत कृषि तकनीक विषय पर डॉक्टर रुद्र प्रताप नारायण सिंह से की गई भेंटवार्ता। भेंट की है डॉक्टर सुशील कुमार राय ने।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खरीफ के मौसम में जहां मूंगफली उत्पादन की योजना है तो इसकी उन्नत तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आरपीएन सिंह साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि खरीफ में जहां तिलहन उत्पादन में मूंगफली पैदा करना चाहते हैं किसान भाई बहन तो क्या सलाह है?
2: नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि मूंगफली में आप जानते हैं कि खरीफ में तिलहनी फसलों में इसका बहुत ही प्रमुख स्थान आता है और इसलिए भी आता है कि ये असिंचित और सिंचित अवस्था दोनों अवस्था में इसकी खेती कर लेते हैं और सबसे फायदेमंद ये है कि इसमें तत्व के रूप में देखा जाए तो 10-12% कार्बोहाइड्रेट, इसमें 40-50% तक फैट पाया जाता है, वसा का जो प्रतिशत है। इसमें अगर कुछ हमारे किसान भाई प्रजातियों का चयन करने में अगर शुरू में सावधानी लें इसकी खेती की जा सकती है और पैदावार अच्छी ली जा सकती है।
1: तो शुरुआत करें कि खेत का चुनाव और खेत की तैयारी में क्या कुछ खास है?
2: मूंगफली की जो खेती है वो ज्यादातर बलुई दोमट और दोमट भूमि में बहुत ही अच्छी होती है। जहाँ सिंचाई के साधन हो, पर्याप्त हो, जल भराव न हो, वहाँ पर खेती इसकी बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे तरीके से की,
1: यानी जल निकास का प्रबंध अच्छा हो
2: जी
1: और बलुई दोमट हो तो सबसे अच्छा,
2: बहुत बढ़िया है।
1: और खेत की तैयारी में?
2: खेत की तैयारी में पहले तो आप मिट्टी पलट हट से इसकी जुताई कर लेते हैं खेत की और उसके बाद कल्टीवेटर चला के और पाटा चला के इसको पूरा समतल कर लें, क्योंकि समतल करना बहुत ही जरूरी होता है बाद के लिए कि सिंचाई जब करते हैं तो उसमें पानी की बराबर की मात्रा फैलती है।
1: उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं जो अच्छी पैदावार देंगी खरीफ में? डॉक्टर साहब
2: खरीफ में पैदावार देने के लिए जैसे पुरानी अगर प्रजातियों को हम लोग लेके चले तो पुरानी प्रजातियों में चित्रा है, कौशल है, प्रकाश है, ये चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय की हम लोग के यहाँ की प्रजाति है जो मैनपुरी में इसका रिसर्च सेंटर था उससे
1: निकली हुई है।
2: पैदावार बहुत अच्छी है। जैसे अब कुछ गुण है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। चित्रा प्रजाति जो हमारे यहाँ है इस प्रजाति में थोड़ा सफेद कलर होते हैं जो दाने में छिलके के वो कलर होते हैं और दूसरा कौशल प्रजाति बहुत अच्छी चली। कौशल में दोनों गुण है, सिंचित और असिंचित दोनों समय में खेती इसकी कर सकते हैं दोनों तरीके से। थोड़ा बहुत उत्पादन में अंतर आता है और ये भी 8-10 क्विंटल उपज प्रति एकड़ आपको मिल जाता है, बहुत अच्छा और बड़े दाने में है जिसकी बहुत मांग होती है। प्रकाश उसी के साथ अगर देखा जाए तो प्रकाश प्रजाति थोड़ी बड़े दाने की प्रजाति होती है, वो भी बहुत अच्छी है। इसी तरह से अंबर है और बाहर की अगर प्रजाति कहें तो TG 37A

0: है,
1: जो
0: उद्गार्स
1: गर्मी
0: है।
1: में भी होती है और बरसात में भी
0: जी
1: होती
0: जी जी ये भी अच्छी है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी की है, जो रस्ट रेजिस्टेंट है।
1: है।
0: और दिव्या है, बाहर की अगर प्रजाति कहें तो GJG 31 है, GJG 9 है। और एक प्रजाति जो 2008 की है, अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है, गिरनार 2, ये भी प्रजाति बहुत अच्छी है।
1: अब डॉक्टर साहब, बुआई का उपयुक्त समय क्या है और बुआई में कौन कौन सी खास बातें हैं जो ध्यान में रखनी है मूंगफली उत्पादन?
0: देखिए, मूंगफली उत्पादन अब 15 जून से अगर देखा जाए तो इसका बुआई का समय शुरू हो चुका रहेगा। 15 जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक इसको ले सकते हैं।
1: जी
0: और जो मैंने पहले भी बताया कि जहां सिंचाई की सुविधा हो वहां पर खेती इसकी अवश्य करें, जल भराव क्षेत्र एकदम न होना चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका जो तापक्रम है, जो मौसम का तापक्रम भी ध्यान देने की जरूरत है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा न हो, तब इसकी बुआई का उचित समय माना जाता है। थोड़ा ज्यादा है तो उस समय कुछ देर टाला जा सकता है।
1: हाँ, बीज दर प्रति एकड़ कितना लगेगी डॉक्टर साहब?
0: 20 दर इसके दाने पर है। अगर बड़े दाने की जो प्रजाति है उसकी जो दाने की बीज की मात्रा है उसकी है 36 से 38 किलो। जैसे प्रकाश है, मैंने पहले बताया कि प्रकाश की प्रजाति थोड़ी बड़े दाने की है, कौशल थोड़ी कम है। तो कौशल और प्रकाश को अगर लिया जाए तो 36 से 38 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको बीज दर के रूप में प्रयोग करते हैं। और जो प्रजातियां हमारी मध्यम और छोटे दाने की जो प्रजातियां हैं उसमें अगर देखा जाए तो 26 से 30 किलो प्रति एकड़ के दर से इसका प्रयोग कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, स्पेसिंग क्या होगी, यानी अंतरण क्या होगा, लाइन से लाइन की दूरी, पौध से पौध की दूरी, और बुआई के पहले क्या बीज शोधन और भूमि शोधन करना जरूरी है?
0: बहुत ही अच्छा प्रश्न। जब मूंगफली की खेती करते हैं तो हमें पूरी तरह से कोशिश करना चाहिए कि लाइन में और पूरी तरीके से इसका जो अंतर है बुआई का वो जरूर पालन करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे मूंगफली उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 94-157-44-645, 9415744645, 94-157-44-645।
1: डॉक्टर RPN सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए, मूंगफली उत्पादन की उन्नत तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप मूंगफली की उन्नत कृषि तकनीक विषय पर डॉक्टर रुद्र प्रताप नारायण सिंह से की गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ कृषि चर्चा संपन्न हुई। आपने ट्यून किया है मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। कठिन परिस्थितियों में कभी कभी एक पंक्ति ही मनोबल को वापस लौटा देती है। आज के सुविचार में सुनी मातृभूमि के बारे में, स्वर डॉक्टर हरि प्रसाद दुबे का है।
3: मातृभूमि में एक ऐसी अलौकिक मोहिनी शक्ति है जो मूक से मूक प्राणी को भी मुग्ध कर लेती है, जो जितना ही अधिक संवेदनशील होता है इसके प्रति उसका भावनात्मक लगाव उतना ही अधिक रहता है। मानव हृदय में कवि चेतना सबसे अधिक संवेदनशील होने के कारण महान कवियों की रचनाओं में मातृभूमि का गौरवगान मिलता है। भारत भूमि को प्रकृति ने ऐसा इंद्रधनुषी सौंदर्य दिया है कि वह किसी को आकर्षित किए बिना नहीं रहता। महापुरुषों की देश सेवा प्रेरणा स्रोत है। मातृभक्त से श्रेष्ठता मिलती है, निस्वार्थ साधना इतिहास रचती है। मातृभूमि बहुलता में एकता स्थापित करके जीने की कला सिखाती है। सप्तपुरियों में एक का नाम लेने पर सभी की उपस्थिति हो जाती है। सदाचार, विचार और चरित्र से निर्मित मातृभूमि की जीवन दृष्टि कीर्ति बढ़ाती है। उपकार स्वीकार करने पर परोपकारी धन्य होता है। एक कोयल ने तोते के बच्चे से पूछा, अपने माता पिता का साथ छोड़कर मेवा फल खाकर संतुष्ट रह पाओगे? उसने कहा, पराधीनता में इसकी भूख नहीं है, अपने माता पिता के साथ पत्तियां खाकर रह जाऊंगा। अपनी मातृभूमि के प्रति है एक पक्षी का इतना उदात्त भाव। माँ की गोद में जन्म देने वाली मातृभूमि से बड़ा स्वर्ग दूसरा नहीं है। जहाँ ग्राम देवता में अन्नदाता रहते हैं, यहाँ की जड़ें इतनी गहरी हैं कि पूरे विश्व को त्याग प्रेम का संदेश देती हैं। भारतीयता का सृजन मंत्र गूंजने पर जीवन चेतना थिरकने लगती है। मातृभूमि की दिव्यता बोध से अनुप्राणित कवि कुलगुरु कालिदास नगाधिराज हिमालय को देवात्मा और पृथ्वी का

0: मानदंड कहते हैं। भवभूत के राम पूर्ण शैला गंगा अस्तमन करते हुए कुल देवता के रूप में प्रणाम करते हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भारत की एकता को एक सामाजिक सच्चाई माना। बंकिम बाबू ने राष्ट्र प्रेम को सबसे बड़ा धर्म कहा है। रामचंद्र बंदोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखते समय बंकिम चंद्र से कहा था, वंदे मातरम से बंग दर्शन का पेट नहीं भरेगा, आप जल्द एक उपन्यास लिखना आरंभ कर दें। इसका उत्तर बंकिम बाबू ने दिया, इस गीत का मर्म अभी तुम लोग नहीं समझ सकोगे, अगर 25 वर्ष जीवित रह गए तो देखोगे कि इस गीत के पीछे सारा बंगाल पागल हो उठेगा। गुरु रामकृष्ण परमहंस के कहने पर 3 बार विवेकानंद ने काली माता से धन मांग कर ज्ञान वैराग्य मांगा। इसी देवभूमि पर संसार के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों की चरण रज पड़ी है, यहीं से हमारी सभ्यता संस्कृत का जन्म और पोषण हुआ है। हिमपुत्रियों के तटों पर वेदों पुराणों का गायन किया गया। देवात्मा के अतिरिक्त संसार के और किसी भाग में कस्तूरी मृग के दर्शन नहीं होते। यहाँ स्वर्ग से अधिक शांतिप्रद स्थान है। नदियों में ऋषियों मुनियों ने स्नान करके इसे अलौकिक तीर्थ बना दिया है। सुभाष चंद्र बोस ने अपने सहपाठी वेद मूर्ति पंडित क्षेत्रेश चंद चट्टोपाध्याय को पत्र में लिखा, तुम वेद में कार्य करो, मैं देश सेवा के लिए कार्य करूंगा। फांसी का फंदा तोड़ने वाले नरनाहर राम नारायण ने यही जन्म लिया। त्याग परोपकार शरणागत के रक्षक शिव दधीच के देश में जन्म लेने के लिए देवता लालायित रहते हैं। हिमालय से कन्याकुमारी, अटक से कटक और द्वारिका से रामेश्वरम के कण कण में राष्ट्रीयता का आदर्श समाहित है। क्या और कहीं मलय की रम्य घाटियाँ देखने को मिल सकती हैं, जहाँ तमाल वन शोभा पान बेल से ढके सुपारी वृक्ष और इलायची के बेलों से लिपटे चंदन के वृक्ष हों। सेतुबंध से लेकर चरजू, त्रिवेणी से गोदावरी, कालिंद कन्या की कलकल धारा मातृभूमि का अध्याय रचती है। गगनचुंबी माल्यवान की अद्भुत चोटियाँ हैं तो पंचवटी का कहना ही क्या। अगस्त्य, सातकर्णी, सुतीक्ष्ण, शरभंग ने तप से इसे गौरवान्वित किया है। उच्च शिखरों वाला चित्रकूट और मंदाकिनी का दृश्य मातृभूमि के कंठ में मोतियों का हार पहनाता है। अत्रि अनसुईया के क्षेत्र से पावन धारा बहती है। केरल में त्रिकूट देश का दक्षिणी मानदंड और विजय स्तंभ है। शिप्रा महाकाल के कारण अवंती को जो प्रतिष्ठा प्राप्त है, वह गंगा और विश्वनाथ के कारण प्राप्त काशी के गौरव से किसी भांति कम नहीं। कलिंग में महेंद्र पर्वत के साथ हिलोरे लेता सागर का सौंदर्य स्वर्गिक है। नर्मदा सोनभद्र का उद्गम अमरकंटक अलौकिक है। हमारी पर्व परंपराएं मातृभूमि को अर्घ्य चढ़ाती हैं। जीवन बचाने के लिए मातृभूमि अनुराग विलक्षण सार्वभौमिक तत्व है। इतनी पूर्ण मातृभूमि को प्रणाम करके मन नहीं लगाता।
1: आज के सुविचार में आप सुन रही थी मातृभूमि के बारे में, स्वर डॉक्टर हरिप्रसाद दुबे का था। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। भक्ति भाव का आधार प्रेम, श्रद्धा और समर्पण है। मन में भक्ति भाव के उठने पर नकारात्मक गुण दूर हो जाते हैं, और ये कैसे संभव है जब हम ईश्वर की आराधना करें।

शिविर का नाम जीवन की सबसे बड़ी पावन यात्रा है। काशी को मोक्ष की नगरी कहा गया है और ये भजन उसी दिव्य भाव को सर देता है कि जहाँ शिव का वास है वहीं आत्मा को शांति और मुक्ति का मार्ग मिलता है।

मीरा की भक्ति में समर्पण है विरह और अनंत विश्वास की मिठास है। और सच ही है, जब ये मन पूरी तरह से प्रभु में रम जाए तो संसार अपने आप छूट जाता है, जहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती।

जय रघुनंदन। यह जय घोष प्रभु श्री राम की मर्यादा, करुणा और धर्म स्वरूप का स्मरण कराता है। श्री राम का नाम लेते ही हृदय में शांति और करुणा आ जाती है। आइए श्रद्धा भरे मन के साथ इस मधुर भजन को सुनें।

शिव शंकर ये नाम लेते ही मन में शांति, वैराग्य और आत्मबल का भाव जाग उठता है, जो हमें स्थिरता, संयम और सत्य के मार्ग की ओर ले जाता है।

नमस्ते, लखनऊ में मैं अंजलि श्रीवास्तव आज आपके साथ हूँ। राम करुणा में हैं, राम शक्ति में हैं, राम एकता में हैं, राम प्रगति में हैं, राम तेरे तन में हैं, राम मेरे मन में हैं और राम घर घर में हैं। तो आइए चलते हैं राम नाम का सुमिरन करने और सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की।

भरत को ये प्रतीति है कि श्री राम को वनवास दिलाना काल का कुचक्र है। कैकई तो मात्र माध्यम बन गईं। उन्हें चिंता इस बात की है कि किस प्रकार श्री राम का राज्याभिषेक कराया जाए। ये सोचकर मन में आशा का संचार होता है कि श्री राम गुरु की अवज्ञा नहीं करेंगे, किंतु दूसरे ही क्षण मन में ये विचार भी आता है कि वशिष्ठ जी श्री राम की रुचि को ध्यान में रखकर ही जो कहना होगा कहेंगे। भरत स्वयं तो मात्र सेवक हैं, जिसका हट करना भी कुकर्म होगा। जब भरत समेत सभी सभासद वशिष्ठ जी के सम्मुख उपस्थित हुए तो मुनिवर ने आशातीत कुछ भी नहीं कहा। बोले, श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। उनका जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है। नीति, प्रेम, परमार्थ तथा स्वार्थ को उनसे अधिक कोई नहीं जानता। वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, दिक्पाल, माया, जीव सभी की आज्ञा प्राप्त है। अतः उनकी रुचि जानकर ही कुछ कहने में सबका हित होगा।

अभी आप श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और सुरेश वाटिकर। संगीत

0: संयोजन सतीश भाटिया का था। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: आप सुन रहे हैं मीडियम वेव पर आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 6:55 होने को हैं। आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

तो श्रोताओं, इसी के साथ आज के कार्यक्रम नमस्ते बरेली से मुझे संजय को दीजिए इजाजत। उम्मीद है आज की हमारी मुलाकात ने आपके दिन को नई ऊर्जा और मुस्कान से भर दिया होगा। याद रखिए, जिंदगी का हर नया सवेरा अपने साथ नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आता है। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनों के साथ खुशियां बांटते रहिए। इसी शुभकामना के साथ कल फिर एक नए प्रेजेंटर के साथ मुलाकात होगी, नए गीतों और नई जानकारी के साथ।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम नमस्ते बरेली। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 100.4 मेगाहर्ट्ज पर 8:45 हुए हैं। आइए अब हम आपको सुनवा देते हैं कुछ लोकगीत, और आज के लोकगीतों में स्वर दिया है बीना शर्मा और सखियों ने। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से हम आपको सुनवा रहे हैं बीना शर्मा और सखियों की आवाज में कुछ लोकगीत। आइए सुनते हैं।

साथियों, अभी हम आपको सुनवा रहे थे बीना शर्मा और सखियों की आवाज में कुछ लोकगीत। 9 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब सुनते हैं अनुपम रॉय और श्रेया घोषाल का गाया हुआ पीकू फिल्म का ये गाना।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं केदारनाथ फिल्म का गाना देव नेगी की आवाज में। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई है अमित त्रिवेदी ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये गाना।

सनमपुरी और शिप्रा गोयल की आवाजों में हंसी तो फंसी फिल्म का ये गाना आप सुनना सुन रहे थे। कुमार के बोल थे और विशाल शेखर का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए इस कार्यक्रम में सुनते हैं अजहर फिल्म का गाना अरमान मलिक की आवाज में। रश्मि विराग का लिखा गीत है और अमाल मलिक का संगीत।

डियर जिंदगी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह का गाया हुआ, कौसर मुनीर के बोल थे और अमित त्रिवेदी का संगीत था। और लीजिए अब सुनिए लैला मजनू फिल्म का गाना, अरिजीत सिंह और जॉनिता गांधी की आवाजें हैं, इरशाद कामिल का लिखा गीत जिसे संगीत से संवारा है नीलाद्री कुमार ने।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हमने रिले किया था आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है।
1: लीजिए सुनिए फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फेको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध। पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है, जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050।
2: बहनों भाइयों, कीजिए स्वीकार रविंद्र कुमार मिश्र का सप्रेम नमस्कार। जान है तो जहान है कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं फिर से डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी।
3: दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कनुप्रिया, डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट फोकस नेत्रालय आई हॉस्पिटल बरेली से।
2: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, मैंने आज अनुमान लगा लिया है कि आज जो विषय है नेत्रदान के बारे में है, और कुछ चर्चा होगी मोतियाबिंद के बारे में।
3: आज आपको एक किस्से के साथ में इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ समय पहले एक व्यक्ति आए मेरे पास में, बिल्कुल भी आंखों से दिखाई नहीं देता था। जब मैंने उनकी जांच करी तो मैंने पाया कि उनकी आंख की काली पुतली सफेद हो गई है, बाकी पीछे का लेंस, आंख में जेल होता है जिसको विट्रियस कहते हैं, वो आंख का पर्दा जिसको रेटिना कहते हैं, वो सब लगभग मोटे तौर से सही था। लेकिन उनकी सिर्फ और सिर्फ आंख की काली पुतली खराब हो गई थी चोट लगने की वजह से बहुत समय पहले, और उसकी वजह से जब काली पुतली सफेद हो गई थी तो वो देख नहीं पा रहे थे। तो ये इस स्थिति के बाद मैंने सोचा कि हमारे आसपास कोई भी आई बैंक नहीं है और एक आई बैंक की शुरुआत किया जाए। तो आज की चर्चा हम आई बैंक के ऊपर करेंगे कि आई बैंक क्या है और उससे क्या फायदे हो सकते हैं। तो आई बैंक क्या है? जैसे कि आप सबको पता है, बैंक में क्या करते हैं, बैंक में हम अपने पैसे जो हैं वो जोड़ कर रखते हैं, उनको संभाल कर रखा जाता है, उससे जो है हम लोन ले सकते हैं, उस

0: से हम जोड़ते हैं उसको आगे चल के किसी कामों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आई बैंक होता है। तो आई बैंक में करते क्या हैं हम? आई बैंक में आँख को प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि हम उन लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकें जिन लोगों की आँख की पुतली खराब हो गई है। आप लोगों ने इस बारे में सुना होगा कि किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, इस बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि लेंस का ट्रांसप्लांट, जो आँख में पड़ने वाला लेंस है, उसका भी वो भी बदला जाता है। इसी तरीके से आँख का एक और अंग जिसको हम बदल सकते हैं वो है कॉर्निया। कॉर्निया मतलब जब आप आँख को देखेंगे तो दो हिस्से होते हैं, एक सफ़ेद हिस्सा होता है, एक काला हिस्सा होता है। इस काले हिस्से को कहते हैं कॉर्निया। और कॉर्निया की सफ़ेदी की वजह से रोशनी ना आना हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा कारण है। और इस कॉर्निया का इलाज, सफ़ेदी का इलाज कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया ट्रांसप्लांट है, यानी कि कॉर्निया का प्रत्यारोपण, यानी कॉर्निया को बदलना।
1: डॉक्टर साहब, हमारे जहन में एक सवाल उठता है, हमारे श्रोता भी आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो कॉर्निया ब्लाइंडनेस है, तो इससे हिंदुस्तान में कितने लोग पीड़ित हैं, ये हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं।
0: हिंदुस्तान में लगभग 4.8 मिलियन लोग को अंधापन है जो कि प्रिवेंटेबल है, यानी कि बचाया जा सकता है, जिसका मुख्य कारण मोतियाबिंद है। उसके बाद इस 4.8 मिलियन लोगों में से 1.3 मिलियन, यानी लगभग लगभग 1.25 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित है। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस मतलब पुतली के खराब होने की वजह से आँख में रोशनी कम होना। ये रोशनी कम होने का कारण ये जो है ये प्रिवेंटेबल नहीं है, यानी कि ये किसी भी दवाई से, किसी भी और उपचार से सही नहीं हो सकता है, तो इसका प्रत्यारोपण ही किया जाता है। तो ऐसे हमारे देश में लगभग लगभग 1 से 1.25 मिलियन लोग इफेक्टेड हैं। और आँख में ट्रांसप्लांट अपने देश में मात्र 50 से 60 हज़ार हो पा रहे हैं साल में। वो इसलिए हो पा रहे हैं इतने क्योंकि लोग अपने देहांत के उपरांत अपनी आंखें डोनेट करने में झिझकते हैं। वो ये सोचते हैं कि आंख की, शरीर की बनावट खराब होगी। बहुत सारे लोग जो चाहते भी हैं वो जागरूक नहीं हैं ये समझने के लिए कि हमारा आंख को दे सकते हैं, आंख किसी और के, हमारी आंख, हमारी कॉर्निया किसी और की कॉर्निया में लगाई जा सकती है और वो इंसान आपकी आंखों से अपनी दुनिया संवार सकता है। आपके जाने के बाद भी आपकी आंखें जीवित रहेंगी और वो आपकी आंखों से दूसरा व्यक्ति देख पाएगा। तो कॉर्निया बैंक जो है वो देहांत के बाद जो लोग अपनी कॉर्निया को डोनेट कर देते हैं उनको संभाल के रखता है, फिर उन लोगों को बुलाता है जिनको कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और सही, सारी जांचें सही होने के बाद कॉर्नियल प्रत्यारोपण होता है।
1: डॉक्टर साहब, आंखें दान करने के लिए क्या कोई उम्र होती है? परिवार के लोग दान कर सकते हैं, स्त्री या पुरुष? जी, इस बारे में जरूर बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: किसी भी उम्र में और किसी भी लिंग में, मतलब चाहे बच्चा हो चाहे 100 वर्ष का बुजुर्ग हो, अगर उसकी आंख स्वस्थ है तो वो नेत्रदान कर सकता है। चाहे उसको चश्मा लगा हो, चाहे उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका हो, चाहे उसको मधुमेह यानी डायबिटीज़ की बीमारी हो, चाहे उसे हाइपरटेंशन हो या उसको हार्ट का कोई बीमारी से पीड़ित हो, तो भी वो अपनी आँखों को दान कर सकता है। पहले सर्जरी हो चुकी हो चाहे आँखों की, चाहे वो मोतियाबिंद की सर्जरी हो चुकी हो, चाहे वो लेसिक सर्जरी हो चुकी हो, तो भी वो नेत्रदान कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति का रेटना या ऑप्टिक नर्व की समस्या है जिसकी वजह से उसकी आंख में रोशनी नहीं है लेकिन उसकी कॉर्निया स्वस्थ है, तो भी वे व्यक्ति आंख को दान कर सकता है, कॉर्निया दान कर सकता है।
1: डॉक्टर साहब, ऐसी कौन कौन सी बीमारी हैं जो होने पर आंख काम नहीं करती है, वो आंखें बेकार हो जाती हैं?
0: कौन दान नहीं कर सकता? कभी कभी कुछ कुछ ऐसे शरीर के रोग होते हैं जिनकी वजह से नेत्रदान स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और इस तरीके के रोग हैं जैसे कि HIV/AIDS या फिर हेपेटाइटिस बी या सी, रेबीज, सेप्टिसीमिया, ल्यूकीमिया या फिर मेनिनजाइटिस, दिमागी रूप से क्या कहते हैं जो व्यक्ति ठीक नहीं होते हैं और जिनको ICU में बहुत लंबे समय तक जो रहते हैं उन लोगों का नेत्रदान नहीं हो सकता है। तो ऐसे कुछ ही लोग हैं जिनका नेत्रदान नहीं हो सकता है, लेकिन ज्यादातर सारे लोग।
1: डॉक्टर कनुप्रिया जी, आंख कौन कौन दान कर सकता है?

0: बच्चे बूढ़े या कोई खास उम्र होती है या स्त्री या पुरुष? जी,
1: किसी भी उम्र में किसी भी कोई भी लिंग हो, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, वो नेत्रदान कर सकता है।
0: डॉक्टर साहब, एक्सीडेंट में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसकी आँख किसी के काम आ सकती है?
1: आपने सही सवाल किया रविंद्र जी। चाहे एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हुई हो या क्या कहते हैं कोई और कारण की वजह से मृत्यु हुई हो जिसमें आंख की बनावट सही है और कॉर्निया सही है, तो हमारा नेत्रदान हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब, समाज में कुछ रीति रिवाज भी होते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: कुछ रीति रिवाजों में बहुत अजीब अजीब सी भ्रांतियाँ हैं, जैसे कि अगले जन्म में आँख नहीं मिलेगी, या फिर क्या कहते हैं शरीर की बनावट खराब हो जाती है तो शरीर पूरा होना चाहिए क्रिया करने के लिए। तो इस तरीके की भ्रांतियों से दूर रहें। आपका आँख किसी और की आँखों को रोशनी दिखा सकता है, इससे बड़ा दान और कोई नहीं हो सकता है। तो आप अपनी आँखों को क्या कहते हैं उन लोगों के लिए दान जरूर करें जो कि क्या कहते हैं जिनको आंखों की या कॉर्निया की प्रॉब्लम्स हैं और वो नहीं देख पा।
0: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, नेत्र बैंक की क्या सुविधा आपके नेत्रालय में है? जी, ये जरूर हमारे श्रोताओं को बताइए, इससे हमारे श्रोता अवगत होना चाहेंगे।
1: ये सुविधा फोकस नेत्रालय में जल्दी ही शुरू हो जाएगी और आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। वो लोग भी रजिस्टर करा सकते हैं जो कि प्लेज लेते हैं, यानी कि वो सोचते हैं कि हम आँख को दान करेंगे। वो अपने साथ में अपने रिश्तेदारों को लाकर अपनी आँख की डोनेशन का प्लेज कर सकते हैं, और वो लोग जिनकी आँखों को कॉर्निया ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है वो लोग भी आके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, ताकि जब हमारे पास में पुतली हो तो हम उन लोगों की आँख में ट्रांसप्लांट कर सकें।
0: बहनों भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि दान कैसे होता है। भाई, दान करते हैं कपड़े का, दान करते हैं अन्न का, दान करते हैं, तो ये आंख का दान कैसे होता है?
1: बहुत लोग ये पूछते हैं कि आई डोनेशन होता कैसे है। तो जब किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो परिवार आई बैंक को इन्फॉर्म करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन फौरन ही होना चाहिए, क्योंकि आई डोनेशन जो है या पूरे प्रोसेस जो है वो देहांत के बाद 6 घंटे के भीतर भीतर हो जाना चाहिए, तभी आंख प्रिजर्व होके दूसरी जगह ट्रांसप्लांट होनी चाहिए। अस्पताल से एक ट्रेंड टीम आपके घर पे पहुंचती है जो कि बहुत ही कायदे से और स्टेराइल तरीके से लगभग 15 से 20 मिनट में आपकी आंख में

0: जो कि बहुत ही कायदे से और स्टेराइल तरीके से लगभग 15 से 20 मिनट में आपकी आंख में जो काली पुतली जिसको कॉर्निया कहते हैं उसको निकाल लेती है। हम समझते हैं कि ये समय बहुत ही मुश्किल होता है हर परिवार के लिए, लेकिन और उस समय माहौल नहीं होता है कई बारी, लेकिन ये भी समझना आपको ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी में अगर हम किसी के लिए कुछ छोड़कर जाते हैं तो उससे बड़ा और कोई चीज़ नहीं होती है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में दान करते हैं, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में यादें छोड़ते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रोशनी को छोड़कर जाते हैं। सोचिए आप जिस दुनिया में हैं, आपके बाद भी आपकी आंखों से अगर कोई माँ अपने बच्चे को देख पाती है या कोई बुजुर्ग अपने परिवार को देख पाता है सिर्फ आपकी वजह से, तो इससे बड़ा दान कोई भी नहीं हो सकता है। तो मैं आप सब श्रोताओं से निवेदन करूंगी कि आई डोनेशन के बारे में जानें, आई बैंकिंग के बारे में जानें, अपने परिवार से बात करें, अपनी इच्छा उनके साथ रखें, उनकी इच्छाओं को जानें, क्योंकि जब कभी परिवार में कुछ ऐसा होता है तो हम एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा कर पाएं, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होती है। एक लाइन से मैं इस बात को ख़त्म करना चाहूँगी, आंखें बंद होने के बाद भी किसी की दुनिया रोशन की जा सकती है। आई डोनेशन करें, अवेयरनेस बढ़ाएं और किसी की ज़िंदगी में रोशनी बनकर वापस आएं।
1: श्रोताओं, कुछ याद आ गया। आंख से देखोगे तो खुश पाओगे, दिल से पूछोगे तो दर्द का सैलाब हूं मैं। अगर रख सको तो एक निशानी हूं मैं, खो दो तो सिर्फ एक कहानी हूं मैं। अगर आंख दान दोगे तो किसी के लिए उजाला है जीवन में। फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फेको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध, पर्दे, कालापानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है, जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 90 68 80 50 50।
2: डॉक्टर कृपया अग्रवाल जी, कुछ धारणाएं अंधविश्वास की गर्मी में ऑपरेशन आंखों का नहीं कराना चाहिए, मोतियाबिंद पक जाए तब ऑपरेशन होना चाहिए, ये भ्रांतियां हैं, तो ये भ्रांतियां आज दूर कीजिए हमारे श्रोताओं की।
3: मैं डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल, फोकस नेत्रालय आंखों के अस्पताल बरेली से आज आपके साथ कुछ धारणाएं और अंधविश्वास जो आंखों से जुड़े हुए हैं आपको जागरूक करने के लिए कुछ बातें करना चाहूंगी और कहना चाहूंगी।
4: अक्सर फिर ये धारणाएं के बारे में, अंधविश्वास के बारे में पहले बता दीजिए, मोतियाबिंद के बारे में, आंख के बारे में, ताकि रोशनी क्या क्या सावधानियां। जी,
3: सबसे बड़ा जो अंधविश्वास है वो एक ये है कि गर्मी में मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे लोग जो है, अब क्योंकि गर्मियां आने वाली हैं, तो वो ये सोचते हैं कि गर्मियों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है और वो इससे बचते हैं, और इससे क्या होता है कि उनका मोतियाबिंद पकने लगता है और आंख में समस्याएं आने लगती हैं, उसकी वजह से समलवाई उतर आती है, आंख का प्रेशर उतर आता है, आंख में रोशनी खत्म होने लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है कि गर्मी में मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। आजकल जमाना बदल गया है, नए जमाने में नए तरीके से दूरबीन विधि से, जिसको फेको विधि कहते हैं या आम भाषा में लेजर भी कहते हैं, ऐसे समय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग फोकस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कोई चीरा नहीं लगता, कोई टाके नहीं लगते हैं, कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती है, सही समय पे अगर आप कराते हैं पट्टी की जरूरत नहीं होती और उसी दिन छुट्टी हो जाती है।
4: डॉक्टर साहब, के फोकस नेत्रालय में क्या ये सारी सुविधाएं हैं?
3: जी बिल्कुल, फोकस नेत्रालय में ये सारी सुविधाएं हैं और फोकस नेत्रालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेशन हो रहा है, और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारे रोहिलखंड मंडल में पहली बार ये मशीनें आई हैं जिनसे जो है मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रहा है, और इन ऑपरेशनों में हमें उसी दिन छुट्टी मिल जाती है, और गर्मी सर्दी बरसात इन सबका, धूप का या किसी चीज का कोई परहेज नहीं है। सही समय जरूरी है कि आप अपना ऑपरेशन, मोतियाबिंद अगर है आंख में और मोतियाबिंद की वजह से आपकी आंख में रोशनी कम है, तो आप अपना दूरबीन विधि से अपना आंख का ऑपरेशन सही समय पे करवाएं। तो सबसे पहले मैं फिर से बात ये कहूंगी कि गर्मी में मोतियाबिंद

0: ऑपरेशन कराने का कोई परहेज नहीं है और आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन का मौसम से कोई ताल्लुकात नहीं है, किसी भी मौसम में सही समय पे आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएं।
1: डॉक्टर साहब, ये पसीना आता है गर्मियों में तो बार बार नहाना भी पड़ेगा, तो क्या इससे भी कुछ फर्क पड़ता है या आराम से?
0: आंख में वही, जैसे मैंने आपको समझाया कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन में बिल्कुल भी इस चीज का फर्क नहीं है कि आप जो है क्या कहते हैं बार बार अगर नहाना पड़ेगा, तो ये दूरबीन विधि में आप गर्दन से नीचे रोज नहा सकते हैं। आप चेहरे को, तौलिए को पानी से, साफ पानी से निचोड़ के तौलिए से चेहरे को पोछिए, आंख को साफ करिए, सर को साफ कर सकते हैं और गर्दन से नीचे आप रोज नहा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, नहाते वक्त थोड़ा ये भी ध्यान रखें कि पानी ज्यादा ना खर्च हो। ये बताइए कि ज्यादा लोग पानी फैलाते हैं तो पानी की समस्या भी आ सकती है ना, तो भविष्य में अपनी पीढ़ी के लिए जल को ही बचाना है, क्या कहेंगे आप?
0: नहीं, बिल्कुल, ये बात तो बहुत ही जरूरी है कि हमें इस बात का भी ख्याल रखना है और अपने बच्चों को इस बात के लिए भी शिक्षित करना है कि हम जो है क्या कहते हैं पानी का बचाव करें, ताकि क्या कहते हैं हमारे आगे चलकर जो समस्याएं, जीरो वाटर सिटीज जिनको कहा जा रहा है, जैसे बैंगलोर है वो जीरो वाटर सिटी में आ गया है। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा था कि पानी ज्यादा उन्होंने इस्तेमाल करने की वजह से एक घर को 1000 रुपए का फाइन तक देना पड़ा था
1: जी।
0: तो ये सारी समस्याएं भी आने लगी हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बरेली जीरो वाटर सिटी में कभी भी ना आए और बरेली और आसपास का क्षेत्र जो है वो अभी से ही हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएं कि हमें उचित पानी का इस्तेमाल करना है।
1: डॉक्टर जी, मोतियाबिंद ऑपरेशन करने के बाद जो आज का गर्मी है तो लोग स्विमिंग भी करना चाहेंगे, तैरना चाहते हैं, तो क्या तैर सकते हैं? ये हमारे श्रोताओं जरूर बताइए।
0: मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मैंने जैसे आपको बताया कि आप गर्दन से नीचे जरूर नहा सकते हैं, लेकिन किसी भी पानी में सर से ऐसे डुबकी अभी मात्र एक हफ्ते के लिए नहीं करना है, ठीक है? एक हफ्ते के लिए, जैसे पुराने जमाने में जब चीरे वाला ऑपरेशन होता था तो आप जो है एक महीने के लिए नहाने के लिए परहेजी होती थी, लेकिन ये परहेजी क्या कहते हैं दूरबीन वाले ऑपरेशन में नहीं है। ये परहेजी दूरबीन वाले ऑपरेशन में सिर्फ एक हफ्ते के लिए है, जो कि एक महीने के लिए चीरे वाले में हुआ करती थी। एक महीने के लिए आपको ऐसे कोई गतिविधि नहीं करनी है कि आपको तालाबों में नहाना है या पूल्स में नहाना है या बाथटब में नहाना है, लेकिन आप गर्दन से नीचे आराम से रोज नहा सकते हैं, उसमें कोई परहेज नहीं है। आप चाहे सुबह शाम भी नहाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
1: गर्मियों में डॉक्टर साहब लू भी चलती है, हवाएं भी चलती है, उसमें फिर धूल में मिट्टी आ जाते हैं, कण आ जाते हैं, तो क्या क्या सावधानी रखें, ये भी तो जरूरी होगा।
0: हाँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है, हम जो है ऑपरेशन के बाद एक काले रंग का चश्मा दिया जाता है। ये काले रंग का चश्मा जो है ये गॉगल्स नहीं होते हैं, ये काले रंग के चश्मे की बनावट अलग तरीके से होती है, जो कि ऊपर से और किनारे से आंख को ढक कर रखती है। तो इसकी वजह से क्या कहते हैं हमारी आंख किसी भी प्रकार के धूल मिट्टी हवा से सुरक्षित रहती है और ये चश्मा हमको लगाना रहता है। ये चश्मा सिर्फ और सिर्फ सोते समय हटता है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जो है क्या कहते हैं कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप आराम से सब जगह जा सकते हैं। और दूसरे दिन से ही मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद अपने आप 95% तक आप अपने सारे काम जो है वो गतिविधि कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे ही पता चला कि आपसे पता चला या किसी ने बता दिया कि मोतियाबिंद है, दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, तो लोग कहते हैं अभी छुट्टी नहीं मिल रही है, तो इसके लिए वो कितना समय लगता है, कितने दिन उनको आराम करना पड़ेगा, ये हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: तो बहुत सारे लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन इसलिए भी नहीं कराते हैं क्योंकि उस समय उनको छुट्टी नहीं मिल रही है, या उस समय उनको, या किसी न, हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा चलता ही है कि वो चीजें भी जरूरी होती हैं। लेकिन हमें जो है समय अपने लिए खुद ही निकालना पड़ेगा, हमें अपने लिए खुद ही जागरूक होना पड़ेगा, हमें अपनी सेहत का, अपनी आंखों का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। तो समय निकालना तो हमारे को अपने लिए जरूरी है और इसीलिए आंख के ऑपरेशन में मात्र 2 से 3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। फ्राइडे वाले दिन आप अपना ऑपरेशन कराएं, सैटरडे संडे वैसे ही छुट्टी होती है, सैटरडे संडे के बाद सोमवार से आप अपना ऑफिस दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मात्र 2 दिन में ही आप जो है अपना काम जो है, जैसे कि मैंने बताया कि दूसरे दिन से ही आप 95% यानी 95% अपना काम जो है कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसी आपको बहुत लंबी एक महीने की छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है और अपना आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएं और आप अपना ऑफिस का भी काम कर रहे हैं और सब काम कर सकते हैं।
2: इस समय आप सुन रहे हैं फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। आज इस कार्यक्रम में मेहमान हैं वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल। डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी,

0: मान लीजिए किसी को ऑफिस में काम करने की लगन तो है, पर कंप्यूटर पर या फाइल पर सही से देख नहीं पा रहे हैं, उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो कार्य तो समय पर पूरा ही नहीं होगा। ये भी तो आंखों की समस्या है ना, तो ये समस्या कैसे दूर होगी?
1: जो काम हम 10 मिनट में कर सकते हैं अगर हमें दिखाई दे रहा है, और अगर हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो उसी काम को, समस्या को, वो ही काम को हमें करने में क्या कहते हैं कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। तो इसलिए जब हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो परेशानियां होती हैं, चाहे ऑफिस में हो चाहे कहीं पे भी। 2 दिन के छुट्टी जो आप लेंगे वो काम ऑपरेशन के बाद आप 2 घंटे में कर पाएंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं सही समय पे ऑपरेशन करा के अपने आंखों की रोशनी को तेज करिए, क्योंकि शरीर में बहुत सारे उम्र के बदलाव है। मोतियाबिंद शरीर का एक उम्र का बदलाव है। जैसे मोतियाबिंद आप इस तरीके से समझिए कि मोतियाबिंद जो है बालों के जो बाल होते हैं वो जिन प्रोटीन से बना है उसी प्रोटीन से बालों का एक गुच्छा है। जैसे हम ऊन का गोला बनाते हैं ना, उसी तरीके से ऊन के गोले की तरीके से जैसे धागे लिपटे हुए होते हैं, उसी तरीके से आंख में जो है वो प्रोटीन के धागे से लिपटे हुए हैं। ये धागे जो है एक एक करके उम्र के साथ साथ में सफेद होते रहते हैं, और जैसे ये उम्र के साथ सफेद होते हैं हमारे बाल सफेद होते हैं, झुर्रियां आती हैं, शरीर में ताकत कम होती है, थकान जल्दी हो जाती है। उसी तरीके से एक ये बदलाव आंख का है कि इस समय हमारे आंख में मोतियाबिंद बनने लगता है।
0: डॉक्टर साहब, आंखों में मोतियाबिंद है, सोचते हैं कि ऑपरेशन करा लेंगे, सर्दी में करा लेंगे, अभी रहने दें, गर्मी में ना कराएं, और ये आंख का ऑपरेशन ना कराने पर क्या और भी समस्या आगे बढ़ सकती है आंख की रोशनी के लिए?
1: हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आंख में जो लेंस है हमारा वो एक क्या कहते हैं ऊन के गुल्ले की तरीके से है जिसपे धागे हमारे लिपटे हुए हैं। तो वही धागे हमारे शुरुआत में 2 धागे सफेद हुए, फिर 4 धागे सफेद हुए, फिर 10 धागे सफेद हुए, ऐसे करते करते सारे धागे सफेद होने लगते हैं और लेंस पूरा सफेद हो जाता है। जब लेंस पूरा सफेद हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि हमारे आंख में मोतियाबिंद पक गया है। लेकिन जब आंख में मोतियाबिंद पक जाता है तो बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। समस्याएं कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट इसको हम कहते हैं कि आंख में मोतियाबिंद अब कॉम्प्लिकेट कर गया है, मतलब अब उसमें समस्याएं पैदा होंगी। क्या समस्याएं पैदा होंगी? मोतियाबिंद जो पक जाता है किसी भी समय फूट सकता है। जब मोतियाबिंद फूटता है तो रोशनी आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। काला पानी उतर आता है, काला पानी उतर आता है, आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। आंख का प्रेशर बढ़ जाता है तब हमारे आंख में बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। और रोशनी ऐसे समय में जब मोतियाबिंद बिल्कुल पक चुका है तो ऑपरेशन के बाद कितनी रोशनी आएगी, नहीं आएगी, कैसी आएगी, ये कहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कम पके मोतिये पे ही या कच्चे मोतिये पे ही दूरबीन का ऑपरेशन ज्यादा सक्सेसफुल है। जब हमारा मोतियाबिंद पक जाता है तो दूरबीन विधि से, आजकल क्योंकि हम लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर रहे हैं तो दूरबीन विधि में पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये पावर हमें ज्यादा देनी पड़ती है, जितना मोतिया पका हुआ होगा उतनी पावर देनी पड़ेगी। जितनी हमें पावर देनी पड़ेगी आंख के और जो हिस्से हैं उस पावर से उनको नुकसान होता है। तो हमें क्या कहते हैं आंख को नुकसान होने लगता है, इसलिए हमें जो है सही समय पे कम पावर में ऑपरेशन कराना चाहिए। आंख के और लेंस के चारों तरफ जो झिल्ली होती है वो सड़ने लगती है, और कई बार ये स्थिति भी आ जाती है कि लेंस ज्यादा पक पक के जो है वो अपनी जगह से गिर जाता है और ऑपरेशन के बाद लेंस पड़ने की संभावनाएं भी कम हो जाती है।
2: डॉक्टर साहब, ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है घटता है, तो आपने भी प्रेशर की बात की आंखों में, ये कौन सा प्रेशर होता है, ये क्या हानि पहुंचाता है, ये बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: आपने बिल्कुल सही एक बार ये बात कही, जिस तरीके से शरीर में ब्लड प्रेशर होता है कि खून का एक दौरान होता है, खून का दौरान होना जरूरी है। अगर खून का दौरान बीपी लो हो गया और खून का दौरान या बीपी एकदम हाई हो गया तो खून की नली फटेगी। बीपी एकदम लो हो गया तो खून का प्रभाव उस क्षेत्र में कम हो जाएगा, और खून का प्रभाव किसी भी क्षेत्र में कम हो या ज्यादा हो उससे उस क्षेत्र का परमानेंट डैमेज हो जाता है। इसी तरीके से आंख जो है वो शरीर से थोड़ी सी भिन्न है, और आंख में एक प्रेशर होता है। जैसे गुब्बारे में, आप इस चीज को समझे, जैसे गुब्बारे में आप हवा भरते हैं तो गुब्बारा जो है तो फूलता रहता है ना, जितनी हवा भरेंगे उतना बड़ा होता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जब बहुत ज्यादा आप उसमें हवा भर देंगे तो गुब्बारा फट जाएगा। लेकिन आंख ऐसी नहीं है, आंख में प्रेशर बढ़ता रहेगा तो आंख तो बड़ी छोटी नहीं होंगी, आंख के अंदर की जो नस है वो खराब होने लगेगी, वो सड़ने लगेगी। तो इसलिए जब मोतियाबिंद पकता है, समलवाई उतरती है, तो आंख का प्रेशर बढ़ने लगता है और इससे हमारी आंख की नस सूखने लगती है और ऑपरेशन के बाद रोशनी बहुत कम आती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है।

0: कि हमारा मोतियाबिंद किसी भी समय पके ना और पकने से पहले ही ऑपरेशन सही समय पे हो जाए।
1: डॉक्टर साहब, अगर मोतियाबिंद पका के कराएंगे तो क्या बहुत नुकसान हो सकते हैं?
0: हाँ, वही मैंने यही तो मैं आपको समझा रही हूँ।
1: कैसे कैसे नुकसान होंगे जी?
0: यही मैं आपको समझा रही हूँ कि आंख में मोतियाबिंद पकता है तो कॉम्प्लिकेटेड कैटेरैक्ट बनता है, समलवाई उतरती है, झिल्ली सड़ने लगती है, हमें बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है ऑपरेशन के दौरान, रोशनी भी ऐसी स्थिति में कम आती है, और कभी कभी स्थिति ऐसी भी बन जाती है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लेंस नहीं पड़ पाता है, लेंस नहीं पड़ पाएगा तो आंख में रोशनी नहीं आएगी। तो इसलिए शरीर के जितने भी बदलाव है, आंख में मोतियाबिंद एक ऐसा बदलाव है जिसमें क्या कहते हैं, हमारी रोशनी जो है वो पूरी की पूरी वापस वैसे ही आ जाती है। तो आपको जब एक ऐसी सुविधा, एक ऐसा ऑपरेशन है आपके पास में जिससे आप उसी तरीके से देख सकते हैं जिस तरीके से आप पहले देखा जा सकता था, तो क्यों अंधेरे में जीना? आपको दूर जब आप चंद्रमा को देखेंगे तो वो चंद्रमा आपको एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार उसके चारों तरफ दिखाई देते हैं, और ये भी क्या कहते हैं, एक मोतियाबिंद का ही लक्षण है। तो अगर आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपके दादी बाबा कह रहे हैं कि चंद्रमा एक ना होकर तीन चार हमारे मेरे को दिखाई दे रहे हैं, तो फिर आप इस बात को समझ सकते हैं कि इनको मोतियाबिंद की शुरुआत हो गई है, और आप फोकस नेत्रालय उनको लेकर आ सकते हैं।
2: इस समय आप सुन रहे हैं फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। आज इस कार्यक्रम में मेहमान हैं वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का विषय है अंधविश्वास और धारणाएं और उनका जो सही तथ्य है, डॉक्टर पास नहीं जाना पड़ेगा।
0: सबसे बड़ा अंधविश्वास है कि मोतियाबिंद ड्रॉप से ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ड्रॉप से ठीक नहीं होता है। उसके लिए छोटी सी मात्र 10 मिनट की ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन को सही समय पे कराएं। दूसरा एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है कि गर्मियों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं होता है। ये सब परहेज उस जमाने के थे जिस जमाने में चीरा लगता था, टाके लगते थे, टाके पक जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ना चीरा लग रहा है ना टाके लग रहे हैं, दूरबीन द्वारा बिना पट्टी बिना इंजेक्शन के ऑपरेशन हो रहा है, और फोकस में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेशन हो रहा है। तो आप जो है गर्मी में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएं, चाहे सर्दी में कराएं, चाहे बरसातों में कराएं, मौसम से और मोतियाबिंद के ऑपरेशन से कोई रिलेशन नहीं है।
1: सब मौसम का लोग आनंद लें और खूब घूमें, और लेकिन जब आंखें स्वस्थ होंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आखिर में आप हमारे श्रोताओं से क्या कहेंगे, रोशनी सही रहे, क्या खाएं गर्मियों में खास तौर पे?
0: मोतियाबिंद और आंख स्वस्थ रहे, मोतियाबिंद ना बने, इसके लिए क्या कहते हैं, हमारी आंख में विटामिन सी और विटामिन ई जो जिनमें ज्यादा होते हैं, रिच फूड्स होते हैं, जैसे कि अब गर्मियों में आएगा आम, तरबूज, लाल, पीले और हरी फल सब्जियां जितनी भी हैं उनमें बहुत अच्छा मात्रा में होता है। संतरे हैं, मौसमी हैं, और नारंगियां हैं, नींबू है ना, ये सारे फल हैं। फिर तरबूज है, और क्या कहते हैं, काशी फल है, ये सब चीज़ें हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। स्मोकिंग अवॉइड करें, जो धूम्रपान करते हैं लोग, वो धूम्रपान से हमारी आंखों में मोतियाबिंद उन लोगों को जल्दी होता है। अपने डायबिटीज़ और बीपी को कंट्रोल करके रखें, क्योंकि जिन लोगों का डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होती है उनको भी मोतियाबिंद के शिकार जल्दी होते हैं, या मोतियाबिंद उनकी आंखों में जल्दी पकता है। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें, और अपने आंखों का और अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि जीवन अनमोल है।
2: जान है तो जहान है कार्यक्रम समाप्त करने के लिए अपने दोस्त रविंद्र मिश्रा को अनुमति दीजिए। श्रोताओं नमस्कार। फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फेको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध, पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050।
3: अभी आप सुन रहे थे फोकस नेत्रालय डेलापीर बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है।
4: FM आकाशवाणी बरेली से अब समय हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद का हाजिर है।

नमस्कार श्रोताओ, आकाशवाणी बरेली के 100.4 MHz पर आप सुन रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय कार्यक्रम आपकी पसंद, और मैं हूं आपका साथी संजय, लेकर आया हूं आपके मनपसंद फिल्मी नगमे, आपकी फरमाइशें और संगीत की सुरीली महफिल। तो आइए ना, कुछ पल निकालिए अपने लिए और डूब जाइए सुरों की उस दुनिया में, जहां हर गीत एक खूबसूरत एहसास बनकर दिल को छू जाता है।

सबसे पहला गीत आपकी ही पसंद पे, तोता मैना की कहानी पुरानी हो गई। जी हाँ, यह गाना फिल्म है फकीरा, सुना चाहा है। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद ने। बोड़ा गाछी पश्चिमी बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। शेरकोट बिजनौर से नदीम वाकी, कलीम अलीम, अजीम अदीम, अब्दुल गनी। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान। शाहजी नगर देगलूर नांदेड़ महाराष्ट्र के संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। कड़ी कोटाहा पंचकुला हरियाणा से सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम अकरम, शानिया इलियास, मुशाहिद अक्सा, आयशा उमर और समीना अंसारी। चरडोगरी पिपरिया कबीरधाम छत्तीसगढ़ के दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जय किशन, कुमारी साहू, इंद्राणी माया साहू। रामपुर रोड हल्द्वानी उत्तराखंड के गंगा सिंह रावत साहब और उनके बहुत सारे दोस्त। महेशपुर खेम मुरादाबाद से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी साहब। एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अंबई से लोड, जिला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घुटके, वैशाली प्राजक्ता, वैष्णवी गायत्री और यज्ञेश घुटके। वीरपुर पोस्ट बिलसर अलीगंज एटा उत्तर प्रदेश के विपिन कुमार, शाक, सपना, रविंद्र, राजेश, रमेश चंद, राजीव, प्रदीप, रंजीत, सिद्धार्थ, सुजाता, संगमित्रा, प्रज्ञा, प्रतिज्ञा और उनके मम्मी पापा। दूल्हापुर मुरादाबाद के मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू राजपाल, काजल मानवी, लक्ष्य मोहिनी, बलबीर सिंह। बराड़ा अंबाला से रवि कुमार, राहुल, रंजीत को, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरु कीरत, गुरु शब्द सिंह, राहुल। बहेड़ी बरेली से अंजुम भाई, खालदा बेगम और उनके परिवारी जन। ज्योतिनगर नोखा राज

राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश गोर्धन, फरसाराम, श्यामलाल घनश्याम, बाबू गौरी और हसन सिक्का, मुकेश गौतम, सुनील अमन, ये हमारे श्रोता है बुद्धनगर खंडवा से, साथ में नदीम भाई बैजोई से, राजू भाई। वारसी क्लब से नोली मीरगंज, बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रियान शेख, करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान।

और अब बारी है उस फिल्म की जिसका नाम है एक नारी दो रूप। गाने को आवाज दी है मोहम्मद रफी और साथियों ने, सुना जाए आप लोगों में से कुछ लोगों ने। शनि मंदिर चौक खंडवा से अनीता सैनी, दुर्गा प्रसाद सैनी और गौरव सैनी। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुसाहिद पटेल और नदीम पटेल। ऊपरकोट मोहल्ला चौक घुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सोहान अरजान, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी लोग। बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय दर्द सरिता मालवीय। सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश के पवन गौड़, सुयश गौड़, आशीष तन्मय, अपूर्वा। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरभ, साइना और मैंडी शर्मा। मीरगंज बिजलीघर के पास से आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, ओमेंद्रपुरी गोस्वामी और भाई कल्लू मिस्त्री। नगरीय कला बरेली से मोहम्मद अकरम अंसारी और उनके सभी परिवारीजन। दीदार रेडियो श्रोता संघ बिल्लाम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जबरनुशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी जाहिद और आबाद खान। ग्राम्बा पोस्ट हररपुर मटकली बरेली से शाहरुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम और डीजे प्रधान। महोमा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के नरसिंह राजपूत, शत्रुधन सिंह। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद और बेबी आलिया, साथ में है अयान बाबू। नागपुर महाराष्ट्र के कमल साहनी, हाजी डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़। रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी साहनी।

दोस्तों, हम आपको सुनवा रहे हैं 100.4 एफएम आकाशवाणी बरेली से प्रोग्राम आपकी पसंद। और अब आपकी पसंद है आप लोगों की। तू मेरी जिंदगी है, जी हाँ, ये है गाना, फिल्म है आशिकी। सुना जाए खुर्जा उत्तर प्रदेश के तिलक राज अरोड़ा साहब, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा ने। कटरा चांद का पुराना शहर बरेली के जमुना प्रसाद मौर्य, किरण दृष्टि मौर्य और मानवी मौर्य। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु, पार्वती, हिमांशु और गोदारा परिवार के सभी लोग। जबलपुर मध्य प्रदेश के अशोक सिंह, सुनीता, प्रीति, रितु, संकल्प और गुड़िया वेदा सेन। समर्थ रेसिडेंसी अक्कलकोट रोड, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र के गणेश लोडे, आम्रपाली लोडे और आरव। जबलपुर मध्य प्रदेश के माधव नामदेव, सीमा नामदेव। रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हेना, हर्षित और खुशी गोस्वामी।

अहमदनगर मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, जावेद, सूरज, जैस्मीन, शकीला और उनके परिवार के सभी लोग। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद शाकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकरलाल गंगराडे, वनीता गंगराडे और मोहम्मद हसनैन पवार। सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका दले। पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका और विशाखा सोनवने। गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान और फैजान खान। उगैती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज पंकज, प्रिंस प्रशांत कार्तिक और निर्भय गुप्ता। शनि बाजार उगैती उत्तर प्रदेश के प्रभाकर गुप्ता, अवधेश, सचिन देव, प्रियाल, कायरव और गुप्ता परिवार के सभी लोग। पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कायरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु। जिला खरगोन सनाबाद मध्य प्रदेश के मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश, शेख मूसा और राजकुमार बुढ़ाना। सुदामानगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। श्रीरामपुर महाराष्ट्र के हरिभाऊ, अनिकेत, शुभांगी और अनिता बिडवे।

0: सिक्कों की उम्र लंबी होने के कारण एक ही मूल्य वर्ग के विभिन्न सिक्के साथ साथ चलन में रहते हैं, इसलिए अफवाहों से बचें और इन्हें बेझिझक लेन देन के लिए इस्तेमाल करें।
1: बैंकों को भी निर्देश है कि ग्राहकों से सिक्कों को आसानी से स्वीकारें।
2: सिक्का सिक्का सिक्का चलेगा पक्का पक्का।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आपकी आवाज, आपकी फरमाइश, आपका अपना कार्यक्रम, आपकी पसंद, जहां हर गीत में बसती है आपकी मुस्कान। और अब हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद के अनुसार ही बेताब फिल्म का वो गीत जिसके बोल हैं, बादल यूं गरजता है। सुना जाए बीरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश सन्नी और भावसार परिवार के सभी लोग। गाडके नगर यवतमाल महाराष्ट्र के लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश कुमार, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे। गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश और योगेश बगड़िया। साथ में है रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज नवेद हसन, रशीद वारसी, अनम यशफ और

साथ में है सुहेल हसन अब्बासी साहब। कमर कॉलोनी बड़वाहा जिला खरगोन एमपी के प्रवीण श्रीमाली मीना श्रीमाली। मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर सतना एमपी से उमंग मलिक आकांक्षा और माही मलिक। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर यूपी के अनीश राजभर, मनीष मनीष आशीष और आकाश राजभर। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मंगुनाथ भंजन उत्तर प्रदेश के राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक और वर्मा परिवार के सभी लोग। शिव मंदिर हकीकतपुर पुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रेहान। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिस्सा मोहम्मद, नसीब पलक लोगना और यश मंसूरी। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता साक्षी, जयश्री अंजलि, बाला साहब, रामनिवास, धनंजय और पीबी कुलते। करेली बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, माहिनूर अंसारी, नसरीन अंसारी और समा अंसारी। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी, दुबिया नेवादा, गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल रॉय। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, लदाबली मुरादाबाद से। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी साहब, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी और उनके साथ हैं अल्ताफ हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई और आशिक हुसैन साहब। तो अब देरी ना करते हुए सुनवा दें आपको आपकी पसंद आपके ही रेडियो सेट पर। उम्मीद है, हमें आशा है कि आप अपने पसंद के गाने को सुनकर एंजॉय करेंगे।

लीजिए अब सुनिए फिल्म का नाम। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए और गाने के बोल हैं हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। सुनना चाहे जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपा कौस्वाती जायसवाल ने।

गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला विशाल और निशा। लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ के, रुक्मणी बघेल साहिल भारती। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल दीपिका गाव्या, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी जयपाल यादव। आसल गांव बाजार तहसील जलगांव जामोद बुलढांडा महाराष्ट्र के, राजू माठे।

मूद बुलढांडा महाराष्ट्र के, राजू माठे, गजानन, संजय माठे, ज्ञानेश्वर प्रकाश दांडगे जी। शेरगांव से हैं संतोष काले जी, गजानन सालोकर, सुरेश भिसे और मानेवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर जी।

ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेरा जहां, ये हमारे श्रोता हैं आजाद नगर लक्सा हरिद्वार उत्तराखंड के। प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा, साथ में है प्रथम सलूजा जनकपुरी नई दिल्ली से। फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी के सुरेश चौरसिया, सरोज सुबोध सलोनी, संजू और लल्ला चौरसिया। बलकेश्वर कॉलोनी आगरा से सरिता चौरसिया, सुमित और वीर चौरसिया। नवाबगंज कानपुर से सुजाता पंकज पीहू और दिया चौरसिया। पटियाली रोड गंज डोंडवारा से आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और उनके सभी परिवारीजन। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ के रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निमी शिवम सतीश, मुकेश कुमार। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परवणी महाराष्ट्र के रूपेश संगही, महेश, प्रगेश, प्रतेश और पूरा संगही परिवार। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल। बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा।

अगला गीत फिल्म ठोकर से सुना जाए आशा रेडिशोता सिंह मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र के अभिजीत गभ्याड़कर राही सरिता प्रणेता अर्जुन गभ्याड़कर टुक टुक आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर के वैशाली शैलेश सुमित ध्वनि परी प्रिंस और एकांश गभ्याड़कर दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर हनुमानगढ़ राजस्थान के प्रेम सिंह बड़वाल सुखबीर काजल लखवीर रानो कृष्णा श्रीमती छिंदो त्रिवेणी शीतल नवीन निशान अनमोल और चटकू मटकू खंडिया गेट कॉलोनी रामपुर से अमरजीत शिवम सुखपाल अमरपाल ऋषिपाल सिद्धार्थ और यश सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान के रमेश चंद चौहान मोहिनी कल्पित बेबी गर्बी और बाय हिमाक्ष बटेंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग अंजू मोहित और तानिया

बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और आसमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी और डॉक्टर सोनम अदीबा, गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, जाइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम और अदीब, मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना, मुन्नी, चांदनी और नंदनी।

सिकलापुर मौर्य मंदिर बरेली से रतन लाल मौर्य, मुकेश प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा गौरव और चंद्र प्रकाश मौर्य, आइए सुनते हैं।

अब आ गए हैं उस गीत की ओर जो प्रोग्राम आपकी पसंद को पहुंचाएगा अपनी मंजिल पर। सुना रहे हैं आपकी पसंद फिल्म है दोस्ताना बने चाहे दुश्मन। जी समझ गया। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक, कोलड़िया नवाबगंज बरेली के राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल, धर्मवीर, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश और उनके मम्मी पापा, साथ में है राजू, चंद्रपाल, उल्फत, बबलू गंगवार, वेदपाल और संजीव गंगवार, मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी, पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु, रिधान खुराना और तुलसी मस्केन, चंडीगढ़ से ही सतीश आने जाओ और उनके परिवार के सभी लोग, शेरवानी स्कूल गंज टोंडवारा से आफताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर, लुबना और आली अंसारी, सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव और हर्षित शर्मा, बुलंदशहर से उमेश कुमार गौड़ और

रानी गौर। सागर लखनाथौन मध्य प्रदेश के लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम चौबे और सक्षम चौबे। तो सुनवा रहे हैं, एंजॉय करिए है।

दोस्तों, इसी के साथ आज के कार्यक्रम आपकी पसंद को यही विराम देने का समय अब आ गया है। उम्मीद है कि आपके पसंदीदा गीतों ने आपके दिन को और भी खुशनुमा बनाया होगा। अपनी फरमाइशें प्यार यूं ही भेजते रहिए, क्योंकि आपकी पसंद ही हमारी पहचान है। मैं संजय आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार, शुभ दिन और मुस्कुराते रहिए।

साथियों, इस गाने के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम आपकी पसंद यहीं पर संपन्न होता है। 11 बजे हैं और अब हम 100.4 मेगाहर्ट्ज यानी कि आकाशवाणी बरेली पर ला रहे हैं प्रोग्राम सबरंग। सबरंग की पहली प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह और साथियों की आवाज में। आइए सुनते हैं।

अनूप जलोटा के स्वर में इस भजन के बाद एक बार फिर से गजल की ओर बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं भूपेंद्र सिंह और साथियों को

साथियों, सबरंग प्रोग्राम में एक बार फिर से हवा का रुख करते हैं गजल की ओर और सुनवाते हैं आपको गजल न सुनवा के अब सुनवा रहे हैं भजन। आइए सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में

0: साथियों, इस गजल के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम सबरंग अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। बस कुछ ही क्षणों में हम रिले कर रहे हैं अगला प्रोग्राम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: पीछे की तरफ जा रहा था और मैंने उसे तुरंत पकड़ के उनको दिया। मैं कहा इसे संभाल कर रखिए आप, पहले मैंने उनसे यही कहा, पहले आप इसे पकड़िए, मोबाइल थोड़ी देर में देख लीजिएगा। तो उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, पर ये बहुत सोचने वाली बात है, मोबाइल पर ध्यान देना ठीक है और जो एक्स्ट्रा समय है आपका उसको यूटिलाइज करना भी ठीक है, पर ये बहुत ही जरूरी मैसेज है। अगली जो मेल हमारे पास है नागेश कुमार जी की है, इन्होंने उमरी जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से मेल किया है हमें, गांव उमरी है इनका। इन्होंने लिखा है, किसान भाइयों बहनों, मौसम को ध्यान में रखकर खेती करें, अच्छी गुणवत्ता के बीज अपनाएं। और इन्होंने बहुत लिखा है कि सुरक्षित खेती समृद्ध किसान, ये लिखा है। बहुत शुक्रिया नागेश कुमार जी आपका हमें मेल करने के लिए। और एक नाजिम रेन जी का मेल हमारे, माफ़ कीजिएगा, नाजिम रेन जी का मेल हमारे पास है। नाजिम रेन जी ने हमें मेल किया है और लिखा है कि दिल्ली से सुन रहा हूँ और आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया नाजिम जी, लेकिन आपने संदेश नहीं भेजा हमें, तो हम

इस प्रोग्राम में संदेशों को ही पढ़ते हैं। अगला जो गाना है आपके रेडियो सेट पर हमारी तरफ से, आप इसे सुनिए, एंजॉय करिए और तुरंत वापस आते हैं आपके संदेशों को लेकर।

0: हेलो हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी जी बोलिए।
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: हाँ, बोलिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलिए।
1: और बताइए, आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
1: बहुत अच्छे मैम, आपसे बात करके हम और अच्छे हो गए। और जिला सीतापुर पचैनापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हो। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: जी शमा जी, बताइए कैसी हैं आप?
1: मैम आज बहुत कंफ्यूज हैं।
0: क्यों?
1: क्यों? हमने देखो फोन किया पहले 2238 845 वाले नंबर पे,
0: जी
1: ये हमेशा FM रैनबो पे चलता था, लेकिन आज वो विविध भारती पे चल रहा है। हमने जब
0: अच्छा,
1: फोन किया, आप राखी मैम बात कर रही हैं, अनुपमा मैम, जैसे आप सीमा मैम बात कर रहे हैं।
0: हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ इनकी डिस्कनेक्ट हो गई है कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से शायद। अगली जो मेल हमारे पास है वो है, अच्छा इससे भी पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे स्टूडियो के नंबर्स पे 2238 852 इस नंबर पे ट्राई कीजिए, और FM की हमारी ये वाली लाइन अभी चल रही है, इस पे सारी कॉल्स आ रही हैं। 0522 ये कोड आगे आपको लगाना होगा। अगर आप नए श्रोता हमारे हैं तो 2238852 ये लाइन हमारी चल रही है, 2238852 इस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और हमारी मेल आईडी है fmakashwani@gmail.com, इस मेल आईडी पर आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। मेल हमारे पास आया मोहम्मद आसिफ जी का, इन्होंने लिखा है हैदराबाद तेलंगाना से ये सुन रहे हैं, और इन्होंने लिखा है सुपर हिट सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे लगे। इन्होंने संदेश ये भेजा है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें, नाले में कचरा वगैरह न डालें, इससे नाले चोक हो जाते हैं और बरसात में सड़क पर पानी भर जाता है। कचरा हमेशा डस्टबिन में ही डालें। एक्चुअली मैं रहने वाला ये अच्छा जो मोहम्मद आसिफ जी हैं, ये एक्चुअली में रहने वाले राजा कटरा अहमदपुर बाराबंकी के हैं। आसिफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए, और आपका संदेश भी काबिले तारीफ है। आपने लिखा है कि जो नालों में हम डाल देते हैं कूड़ा रेपर, परसों भी हम देख रहे थे कि एक महाशय गाड़ी से जा रहे थे और कुछ खाकर लगातार एक के बाद एक दो तीन छिलके फेंक रहे थे। हम उनसे कुछ कहने जाते इससे पहले कि उनकी गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से आगे निकल गई, पर कहने का मतलब ये है कि ये सब कूड़ा सड़क से उड़ करके नालों में ही जाता है, और जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी उसमें लगे रहते हैं, वो मनुष्य ही तो है भाई, कितना काम करेंगे वो, कितना काम करेंगे वो, कितना कूड़ा उठाएंगे। आप सोचिए, आप अगर उन्हें समेट कर अपना डस्टबिन में रखा हुआ कूड़ा पन्नी में भर कर या जिस भी तरीके से अपना डिब्बा उन्हें पास कराएं, तो उनके लिए कितनी आसानी होगी। थोड़ी मानवीय पहलुओं के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। अगला जो मेल हमारे पास है वो है पिंकू सोनी का, इन्होंने टिकैत नगर बाराबंकी से मेल लिखा है। इन्होंने लिखा है संदेश ये है कि आप बच्चों के सारे छोटे बच्चों को अच्छा सहारे छोटे बच्चों को छोड़ देते हैं, प्लीज वो ऐसा ना करें। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि बच्चों को छोटे बच्चों के सहारे छोड़ देते हैं, मतलब जो भाई बहनों में होते हैं। इन्होंने लिखा है बाद में परेशानी उठानी पड़ती है, इसीलिए ऐसा ना करें। मतलब इन्होंने लिखा है कि जैसे कुछ देर के लिए बच्चों को छोड़ के बाहर जाना हो या कहीं जाना हो, तो छोटे बच्चों के सहारे छोड़कर उन्हें चल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों में खुद अक्ल नहीं होती है, वो खुद का ख्याल नहीं रख पाते, तो अपने से उतने छोटे बच्चों का कैसे रख पाएंगे। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। वारिस अली खान जी का मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है प्यार भरा सलाम। इन्होंने लिखा अर्ज है लहजे में नरमी, बातों में मिठास होनी चाहिए, आपका मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बात तो सही है। इन्होंने लिखा है संदेश, अहंकार कभी न करें, एक छोटा सा कंकड़ भी मुंह में गया हुआ निवाला बाहर निकलवा सकता है। क्या बात है, बात तो बड़ी डेप्थ है बात में। तो एडवोकेट वारिस अली खान, इन्होंने संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से मेल किया है, और इसी तरीके से आपके संदेश हमारे पास आते रहेंगे और आपके संदेशों का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। और ऐसे ही एक खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर आने जा रहा है, और ये गाना सुनने के बाद तुरंत शुरू होंगे आपके मेल्स का पढ़ने का और कॉल्स का सिलसिला शुरू।

11:35 हो रहे हैं और अभी प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे चल रहा है। आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ और बिना देरी के हम देखेंगे कि कौन जुड़े हमारे साथ, लेकिन इस समय हम कॉल रिसीव कर लेते हैं कि कौन जुड़ी हैं फोन लाइन पे हमारे साथ।

0: 12 जून।
1: जी हमारी बात आपसे 12 जून को हुई थी, आप तब से आप आई ही नहीं शायद थी।
0: अच्छा जी हाँ, थोड़ा समय हो गया जी।
1: जी
0: क्या मैसेज है आपका, कैसी हैं आप?
1: मैसेज हमारा ये है कि हम जैसे कि अब बारिश भी होने वाली है, मतलब कि मानसून बन रहा है, हमारे यहाँ तो बादल बना हुआ है,
0: अच्छा
1: और मैं आस पास शहर के सफाई रखे हैं, ऐसे नाले वगैरह हैं, तो उनकी सफाई भी करवा दूंगी कि रोड में बारिश होने के बाद में रोड पे पानी भर जाता है, तो
0: जी,
1: हमें अपने घर के आसपास की सफाई करवानी चाहिए।
0: ये यही सेम मैसेज अभी हमारे एक लिसनर ने दिया था, तो आप सुन रही थी उसमें?
1: जी हम सुन तो रहे थे,
0: अच्छा, तो मतलब आपका भी यही
1: आसिफ
0: मैसेज
1: भाई
0: है
1: ने संदेश दिया था। जी
0: जी, आपने आसिफ भाई को कॉपी कर लिया, कोई बात नहीं, आपका भी यही संदेश है मतलब।
1: मैम,
0: चलिए कोई बात नहीं, ठीक है
1: हम
0: फिर।
1: सारे नाम ले लें, मोहम्मद
0: हाँ ले लीजिए।
1: आसिफ भाई, मोहम्मद फैज भाई, अकेले मोहम्मद मंसूरी भाई हैं, सत्यम कुमार भाई, समाप्ति हैं, गुलाब सहित देखिए पी हैं, साजियान साहब हैं, रोशनी दीदी हैं, प्रीति दीदी हैं, बबीता रा दीदी हैं।
0: ठीक है,
1: अब आप जल्दी जल्दी आया करें,
0: बिल्कुल हम जल्दी जल्दी आया करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के
1: शुक्रिया,
0: लिए,
1: हम
0: थैंक
1: आपका प्रोग्राम करने का अंदाज अच्छा लगता है।
0: यू, थैंक यू साहिबा। चलिए ठीक है, फिर आपसे
1: थैंक
0: बात
1: यू, जी
0: होती है, और शुक्रिया। देखिए मैसेज बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये मैसेज जो है दो दो लोगों ने सेम मैसेज किया है, और एक मेल भी हमारे पास है गुलफ्सा जी की, और इन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग, और संडीला से इन्होंने मेल किया है। इन्होंने लिखा, मेरा संदेश ये है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें किसी की बात अधूरी नहीं सुननी चाहिए, पूरी सुननी चाहिए। और आज मैं बहुत दिनों बाद मेल किया है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अपना ख्याल रखिए गुलफ्सा जी, और हो सकता है आपने जीवन से कोई सबक लिया है, इसीलिए आप इतने दम के साथ कह रही हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी की दिल की मतलब किसी की बात अधूरी नहीं सुननी चाहिए। वैसे ये भी सच है, हम अब जब अपनी ज़िंदगी में अनुभव पाते हैं ना, एक्सपीरियंस पाते हैं, ठोकरें खाते हैं या फिर कुछ अच्छे हैं, किसी और की वजह से किसी ने दुख दिया, वहाँ भी अनुभव मिलते हैं, तो तब हमारी बातों में ज़्यादा वजन होता है, इतना स्ट्रांग वेट होता है हमारी बातों में कि अगला वाला इन्फ्लुएंस हो जाता है। क्योंकि आपकी बात से मुझे ऐसा स्ट्रांग फील हुआ कि झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए किसी कीमत पे। और उसके बाद जो दूसरी बात आपने बोली है कि किसी की बात अधूरी नहीं सुननी चाहिए, तो बेशक बात पूरी करनी देनी चाहिए, उसके बाद ही बात काटनी चाहिए। खैर शुक्रिया हमें मेल करने के लिए, और मेल्स तो अभी हमारे पास आपकी है, और इसके बाद हम सोच रहे हैं कि ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर भेजें, और इस गाने के बाद कुछ मेल्स और कुछ कॉल हमारे पास और बचेगी, तो इसलिए बस ये गाना सुनिए, तुरंत वापस आते हैं।

0: 11:45 हो गए हैं और इसी एक मुलाकात के गाने के साथ आपके मेल्स जो हैं शामिल करने हैं, लेकिन मेल्स शामिल करने से पहले हम सोच रहे हैं कि कॉल को शामिल कर लिया जाए, देखेंगे कौन हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़ गए हैं। हेलो
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहिबा।
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सारे महवागन जरा लखीमपुर खीरी से बोल रहे हैं।
0: जी साहिबा, कैसी हैं आप?
1: मैम हम बहुत अच्छे, अपना बताइए। आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ।
1: मैम बहुत दिनों के बाद आई हूँ।
0: हाँ, मतलब बहुत दिनों बाद आई हूँ। हाँ बिल्कुल।
1: जी मैम, आप 12 जून को आई थी साथ ही।

11:54 हो गए हैं और अब समय देखिए कितनी तेजी से जाता है और हमें भी घर जाने का समय हो गया है। हमारी आज का समय जो है समाप्त हुआ और ये प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे इसे भी वाइंड अप करने का समय है। एक खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर छोड़ जाएंगे, साथ ही एक मैसेज है हमारे पास अंगद यादव का। इन्होंने लिखा है कि पानी आजकल कमी इसकी हर जगह है, पानी अनमोल है, पानी का इस्तेमाल बहुत समझदारी से करिए, आगे तकलीफ बढ़ सकती है, अपने भविष्य के बारे में सोचना है, जल ही जीवन वाकई में है। इसी मैसेज के साथ हम आपसे लेते हैं विदा और उसके बाद फिर कभी किसी और दिन नहीं कल ही होगी मुलाकात आपसे ठीक 12 बजे। तब तक के लिए ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो, जो कि है धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार। दोपहर के 12 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद का दौरा करेंगे। यहां वो मुरादाबाद मंडल में लोक निर्माण विभाग के पुराने कार्यों की समीक्षा और नए कार्यों की कार्ययोजना के संबंध में बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री मुरादाबाद के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा भी करेंगे। मुख्यमंत्री यहां मुरादाबाद सदर, मुरादाबाद देहात व कुंदर की विधानसभा क्षेत्रों और नगर निगम मुरादाबाद के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यहां मुख्यमंत्री गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय परिसर का भी निरीक्षण करेंगे। परिवहन विभाग 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक स्कूली बसों के फिटनेस संबंधी जांच के लिए अभियान चलाएगा। अभियान का लक्ष्य न केवल नियम लागू करना है बल्कि स्कूल परिवहन को एक सुरक्षित, जवाबदेह और पारदर्शी सेवा बनाना है। अभियान के तहत बसों की तकनीकी खराबी, फिटनेस सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी, साथ ही चालकों का भी भौतिक सत्यापन जांच की जाएगी। अभियान में प्रवर्तन दल नियमानुसार बसों के फिटनेस की जांच करेगा। निरीक्षण में अनियमितता पाए जाने पर उनके खिलाफ चालान, वाहन निरुद्ध, फिटनेस निलंबन कार्रवाई की जाएगी। अमरीका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने

और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक हुरमुज जल डमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमरीका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने आगामी 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं तक चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, कासगंज, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, लखनऊ समेत आसपास के क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ गरज चमक और मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो घंटे तरन्नुम के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: जी 12:03 हो चुके हैं, प्रोग्राम शत्रुपा लेकर हाजिर है तरन्नुम। बहुत सारी बातें हैं जो हमारी लेडी लिसनर हैं उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है, ऐसे में आपको भी बदलना होगा अपना खान पान, अपना लाइफ स्टाइल। कैसे? सुनते रहिए रेनबो, द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ।

जी हाँ, फोटो। और फोटो जब महिलाएं खिंचवाती हैं तो बहुत ही मुस्कुरा के खिंचवाती हैं, बहुत ही उनको लगता है कि एक एक चीज परफेक्ट आनी चाहिए, यानी जो पिक्चर है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अब पिक्चर परफेक्ट कब होती है? पिक्चर परफेक्ट जब होती है जब हमारी और आपकी हेल्थ एकदम परफेक्ट होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अंदर से हेल्दी हैं, अंदर से आप चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, तभी आपका जो चेहरे पे नूर है, स्पार्क है, वो फोटो में नजर आएगा। ऐसे तो बहुत सारे मेकअप की चीज़ें हैं जो बाजार में मिलती हैं, लोग उसको लगा लेते हैं, लेकिन जब वो फोटो को देखते हैं, एक्चुअल फोटो जब उनके सामने आती है, तो ध्यान देते हैं वो कि भाई आंखों के नीचे डार्क सर्कल नजर आ रहे हैं, या फिर उनको लगता है बहुत ही हम लीन नजर आ रहे हैं, बहुत ही ऐसे कैसे हो गया, कैसे ऐसे हो गया। लोग फिर राय देना शुरू करते हैं कि भाई ऐसा करो, इतना पानी पी लिया करो, ऐसा करो, सुबह उठ के ये सारी चीज़ें खा लिया करो, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये वाले सीड्स ले लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। लेकिन आप बताइए कि क्या एकदम से जो पौधा होता है, जब हम बीज किसी जमीन की मिट्टी में बोते हैं, तो क्या एकदम से पौधा निकलता है? क्या एकदम से पौधे में फल आना शुरू हो जाते हैं? नहीं। इसी तरह हमारी और आपकी हेल्थ है। जब हम अपनी हेल्थ पे शुरू से लेकर एंड तक, एंड इन द सेंस कि सुबह से लेकर रात तक, जब हम अपनी हेल्थ पर बहुत ज्यादा ना सही थोड़ा सा भी ध्यान देते रहें, तो फिर हमारी जो हेल्थ है ना वो एकदम हेल्दी रहेगी। और ये किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम ये कर लो, वो कर लो, ये सीट खा लो, वो सीट खा लो। यानी एकदम जब आप पिक्चर खींचेंगे ना तो पिक्चर परफेक्ट नजर आएगी। अब देखिए, मौसम बदल रहा है, कल से बहुत ज्यादा उमस है, परसों और भी ज्यादा उमस थी, हल्की बारिश हुई, लोग खुश हो गए कि भाई बारिश का मौसम आ गया है। अब जो लेडी होती हैं, जो लेडीज होती हैं, उनको क्या करना होता है? उनको तो भाई किचन में जाना ही जाना है, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे उमस का मौसम हो, चाहे ठंड का मौसम हो, कोई भी मौसम हो। लेकिन किचन में जाते जाते लोग उनसे फरमाइशें करते हैं, ये खाना बनाओ, ये ऐसी रेसिपी तैयार करो, वो लोग भी फॉलो करती हैं कि भाई अब मौसम बदला है, तो जाहिर सी बात है खाने में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन उसी के साथ ज़रूरत है आपकी सेहत को लेके आपके खाने में तब्दीली लाने की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस मौसम में आप इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही साथ अपनी स्वच्छता का ख्याल रखिए, अपने खाने पीने का ख्याल रखिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेशली महिलाओं में होती हैं, जिनको बहुत जरूरत है उसको ध्यान देने की, साफ सफाई रखने की, सावधानी बरतने की, तभी आप सेहतमंद रह सकते हैं। तो बरसात में हेल्दी रहने के लिए किस तरह की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे। और लोग आपको देख के कहेंगे कि कितनी खूबसूरत है, एकदम परम सुंदरी, बताएंगे। यस, इस ट्रैक के बाद।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
3: डॉल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है,
4: बच्चे भी खरीद सकते हैं।
5: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल FM रेनबो।
7: I am संध्या त्रिगुनी, बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की।
8: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ FM रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है, that's why I love FM रेनबो।
9: ये तो सुन रहे हैं FM रेनबो और आप

जी 12:20 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा तरन्नुम है आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं वुमेन हेल्थ की और कैसे औरतें जो हैं वो अपना ध्यान रख सकती हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि भाई अब परसों से या फिर कह लीजिए कल से बहुत सारी चीज़ें जो महिलाओं के हैं वो बदलने वाली हैं। स्कूल खुलने वाले हैं, जून जा रहा है और जब तक जून रहा लोगों ने बहुत एंजॉय किया, गर्मियों में छुट्टियाँ रहीं, लोग यहाँ गए वहाँ गए और जो एक टाइम टेबल था ना वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। मतलब ये था कि सुबह अगर जल्दी उठना है तो देर से सो के उठ रहे हैं, उसके बाद सुबह जैसे ही उठे तो थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज होती है, थोड़ा बहुत जो योग होता है, वो सारी चीज़ें दरकिनार करके सीधे किचन में जाते हैं। अरे इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, खाने का भी टाइम आ गया है और लंच का भी टाइम आ गया है और नाश्ते का भी टाइम आ गया, बच्चे भी सो के उठ जाएंगे, सास को भी ये देना है, ससुर को भी ये करना है, मम्मी को ये करना है, पापा को ये करना है और उसमें बेचारी एक महिला, एक औरत दौड़ दौड़ के इतना काम करती है। अब देखिए उमस है तो बहुत ज़्यादा पसीना भी

हमारी बॉडी से निकल जाता है। बहुत ज़्यादा उमस भरी गर्मी में लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, ऐसे में पानी को भी वो काफ़ी इग्नोर करती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ही हेल्दी रहें, और अक्सर लो ब्लड प्रेशर भी महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर अनीमिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, आयरन की कमी हो जाती है। तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सोचिए कि अच्छा आयरन की कमी होगी, अच्छा ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्या करना है क्या करना है। बहुत ही ईजी से टिप्स हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अगर आप कर सकती हैं तो कम से कम डेट्स, दो डेट्स खा के एक नॉर्मल दूध अगर आप पी सकती हैं, नॉर्मल टेम्परेचर का, अगर आपको चिल्ड अच्छा लगता है आप चिल्ड पी लीजिए, अगर आपको ठंडा अच्छा लगता है आप ठंडा पी लीजिए, अगर आपको दूध से थोड़ी बहुत एलर्जी है भी तो आप दही का इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही साथ अगर आप नॉर्मली काला नमक है अगर आपके किचन में, ऐसा नहीं है कि किसी के घर में काला नमक मौजूद नहीं होता है, काला नमक है उसमें आपने थोड़ा सा नींबू डाला है एक ग्लास पानी में, उसके बाद थोड़ी सी आपने जगरी पाउडर उसके अंदर डाल लिया, गुड़ को अगर डाल लिया, और वो आप दिन में एक दो बार पी लेती हैं अगर आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो, यानी शुगर पेशेंट अगर आप नहीं है, या फिर मान लीजिए आपको कोई और वजह से कुछ चीज़ें बना है, तो अगर ये सब चीजें आप में नहीं है और खुदा ना खास्ता हो भी, क्योंकि अगर ये सारी चीजें आपके नहीं है तो आप इन सब चीजों का अगर दो तीन बार भी इस्तेमाल कर लें तो आप यकीन मानिए आप इतनी खूबसूरत नजर आएंगी, इतनी हेल्दी नजर आएंगी, आपको खुद लगेगा कि आपने काम इतना कर लिया लेकिन आपको थकान तो बिल्कुल महसूस ही नहीं हुई। और अब अगले जो ट्रैक है उसके बाद हम आपको बताएंगे ऐसे ऐसे शरबत हैं, ऐसे ऐसे जूस कह लीजिए कि जिनको आप जब इस्तेमाल करेंगे, उस पर मिंट का आप इस्तेमाल करेंगी, पुदीने का इस्तेमाल करेंगी, तो इतना टेस्टी वो शरबत बनता है, इतना टेस्टी वो ड्रिंक बनता है, जब आप उसको अपनी डाइट में शामिल करेंगे ना तो फिर आपको लगेगा कि भाई तरन्नुम ने बिल्कुल सही बताया है। और अब आज से बस आप खरीद खरीद के लाएंगे, आम की बात नहीं कर रहे, आम के बाद तो वो बेचारे जो फल है ना वो कोने में चले जाते हैं, उन फलों को आपको लेके आना है, और बहुत ही महंगे नहीं है, बहुत ही आपके बजट के अंदर है, आपको उनको लाना है और उसका शरबत बना के पी लेना है। उसके बाद फिर आप बताइएगा कि आपको जरा सी भी रत्ती बराबर भी परेशानी नहीं आएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पैसे बहुत सारे हों या ना हों, लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकती हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है।

0: जल्दी।
1: भागो भागो कोई गधा अपने पल्ले बांध न जाए। भाग झिंकी भाग।
2: वहाँ मुफ्त की रबड़ी खाए देखो अपने रज्जू ताऊ।
3: मक्कल घुमा के मक्खी उड़ाए रतन और ताऊ दोनों बिकाऊ।
2: छुटकी भगवान करे वो सुखी रहे और उन दोनों का साया भी हमसे दूर रहे।
3: हर वक्त टोकती रहती है। तू मेरी बहनी भाई है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िए माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: कहानी है बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
4: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
5: जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा।
3: अंदाज है सबसे निराला,
4: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
3: ओ गॉड, स्टे ट्यून्ड टू चैनल सतरंगी रे।

12:34 हो रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा और जुगनी ट्रैक अभी आप एंजॉय कर रहे थे। और जुगनी के बाद अगर आप चाहते हैं जुगनू की तरह चमकना और अगर आपको लगता है कि इस उमस भरी गर्मी में आपको एनर्जी जो है, आपकी जो ऊर्जा है वो ऐसे स्टोर रहे, ऐसे ही बरकरार रहे, तो उसके लिए एक बहुत ही ईजी सा शरबत हम आपको शेयर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये शरबत सिर्फ महिलाएं ही पी लें, महिलाओं के लिए इसलिए खास ध्यान दिया जाता है क्योंकि महिलाएं ही हैं जो पूरे घर का ध्यान रखती हैं, सारी फैमिली का ध्यान रखती हैं। और अगर वो ही चुस्त दुरुस्त नहीं होंगी तो बताइए फिर कौन अच्छे अच्छे खाने खिलाएगा, कौन अच्छे अच्छे नाश्ते आपको बनाएगा, कौन आपको प्यार से थपकी देगा, कौन आपको प्यार से झप्पी देगा। तो ये सारी चीजें जो है वो महिलाओं के ही हिस्से में आती हैं, तो महिलाओं का भी पूरा राइट है कि वो एकदम हेल्दी रहें। तो फिलहाल प्लम की अगर हम बात करें, जी प्लम बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आप देखिए कि जो ठेले नजर आते हैं या जो शॉप नजर आती है फ्रूट्स की, उन पे आपको वो नजर आ जाते हैं, लेकिन अक्सर लोग उसको हाथों में उठाते हैं, देखते हैं और फिर रख देते हैं। अरे नहीं, खट्टा होता है, अरे नहीं बच्चे खाते ही नहीं है, ये अंदर से थोड़ा सा कड़वाहट भरा होता है, नहीं नहीं ये ठीक नहीं लगता है, तो फिर क्या लें, बनाना ले लें, ये ले लें। वो सारी चीज़ें भी अपनी जगह सही हैं, लेकिन कुदरत ने इस मौसम में, हर मौसम में ऐसे ऐसे फ्रूट्स आप तक भेजे हैं जो अगर हम उनको लगातार इनटेक करते हैं, लगातार उनको हम खाते हैं, तो फिर हम हेल्दी रह सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आम बहुत ज़्यादा आप खा लेते हैं, अगर आपने 5 आम खा लिए हैं, तो 5 जामुन अगर आप खा लेते हैं, तो जो शुगर लेवल होता है ना वो एकदम बैलेंस्ड रहता है। उसी तरह अगर हम प्लम की बात करें, इसको आलूचा भी बोलते हैं, इसको आलू बुखारा भी लोग कहते हैं, और कभी कभी तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं, आलू बुखारा अच्छा किसे कहते हैं, वो किसे कहते हैं, लेकिन ये जो लाल लाल गोल गोल तरह के होते हैं, और समझ गए होंगे आप, बड़े ही शाइनी टाइप के होते हैं, चमकने वाले होते हैं, उसी को कह रहे हैं हम।

और प्लम आप जाके बोलेंगे, या फिर अगर आपकी नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लम बोलेंगे तो वो आपको दे देगा। आपको करना क्या है, एकदम फ्रेश, आपको जो ताजगी भरा, आपको ताजगी महसूस करा दे, वो ड्रिंक हम आपसे शेयर करने वाले हैं। आपको करना क्या, बहुत ईजी है। अभी अगर आप किचन में खाना बना रही हैं और वाकई अगर आलू बुखारे आपके घर में है, प्लम है आपके घर में, तो 5 से 6 पके हुए आलू बुखारे यानी प्लम को आप ले लीजिए, उसका बीज निकाल लीजिए। उसके बाद 10 से 12 पुदीने की पत्तियां, ये भी बहुत ईजिली मिल जाएंगी। 1 नींबू का रस, नींबू भी बड़ा सस्ता है, नींबू भी आपके किचन में जरूर होगा। इसके अलावा 1 चम्मच शहद या फिर चीनी, चीनी का इस्तेमाल कर लीजिए, शहद का इस्तेमाल कर लीजिए, गुड़ का इस्तेमाल कर लीजिए और टेस्ट के हिसाब से काला नमक। अब देखिए सारी चीजें जो है ना, पुदीने की पत्तियां हैं यानी मिंट है, इसमें भी बहुत ज्यादा फायदे हैं आपके लिए गर्मी के लिए। नींबू है, इसमें भी बहुत ज्यादा फायदे हैं आपके लिए, सिट्रिक एसिड इसके अंदर मौजूद होता है। शहद है वो भी बहुत फायदेमंद है, काला नमक वो तो बहुत ही फायदेमंद है, भले ही वो काला है लेकिन उसका जो फायदा है ना बहुत ही ग्रेट फायदे होते हैं। आपको करना क्या, सारी चीजों को आपने निकाल लिया यानी बीज आपने निकाल लिए प्लम के, और अब आपको ब्लेंडर में सारी चीजें जो है वो डाल देना, जरा सा पानी डाल दीजिए, उसके बाद उसको एक साथ पीस लीजिए, बस छलनी में छान लीजिए और बर्फ के टुकड़े डाल दीजिए, ठंडा ठंडा परोसने से पहले खुद भी जरूर पीजिए। बार बार यही कहते हैं कि अगर कोई चीज़ आप बनाती हैं और आप हमेशा कहती हैं खिलाना अच्छा लगता है, तो उसके बाद पहले खुद भी तो खाइए, खुद भी तो आप हेल्दी रहिए, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें जो है ना उनको परोस दीजिए, सर्व कर दीजिए। और उसके बाद जब आप ये शरबत जो हमने आपको बताया प्लम का जब आप पी लेंगी, तो इतनी आपको एनर्जी फील होगी ना कि एकदम जो ये ऐसे ऐसे करके पसीना पोछते हैं ऐसे ऐसे करके हटाते हैं, ये सारी चीज़ें आप हटाना बिल्कुल भूल जाएंगे और साथ ही साथ आप को अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कहती हैं कि भाई अब रोज़ रोज़ का इतना टाइम है, तो रोज़ रोज़ तो टाइम है ही नहीं मेरे पास, तो 3 से 4 दिन तक इसे आप इजीली स्टोर भी कर सकती हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे ही आयरन लगता है किसी भी फल में, जैसी छुरी लगती है, उसके जितने भी पोषक तत्व जिसे कहते हैं न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि बाइट करके खा लीजिए। अगर नहीं आपके पास चलिए टाइम है तो आप कोई भी फल ले लीजिए, उसको बाइट करके खा लीजिए। कहीं ना कहीं से आपको हम लोग यही समझाते रहते हैं कि भाई कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, लेकिन एटलीस्ट अपनी सेहत का तो ध्यान रखो। सेहत है तो समझ लीजिए आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
4: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
5: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
4: ओनली 100.7 FM रेनबो।

जी हाँ ठीक है, डांस में तन डोल दे और मन डोल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी गर्मी से भी तन डोल जाता है और मन भी डोल जाता है, यानी डूबा डूबा लगता है। ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं दिल बैठा जा रहा है, क्या करें, बड़ी टेंशन है, बहुत गर्मी है, ये है वो है। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी ये है कि बहुत ज़्यादा जो फैशन में लड़कियां रहती हैं, बहुत ज़्यादा फैशन में जो महिलाएं रहती हैं, बहुत ज़्यादा स्किनी जीन्स या फिर बहुत ज़्यादा कसे हुए कपड़े इस मौसम में ना पहने, खासतौर पर बारिश के मौसम में, क्योंकि उमस होती है तो पसीना बहुत आता है, पसीना बहुत आता है तो जो कसे हुए कपड़े होते हैं ना, वो रैशेज हैं या फिर इन्फेक्शन है, वो सारी चीज़ें को पैदा कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके ढीले ढीले कपड़े पहनिए जो जल्दी से सूख जाएं, बहुत पसीना आया तो आसानी से सूख जाएं और आपकी स्किन को इरीटेट ना करें, आपके मूड को भी इरिटेट ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि उमस है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी बॉडी है उसमें से सोडियम और जो फ्लूइड्स होते हैं वो निकल जाते हैं। टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए, ताकि कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में ना होने पाए। अब चलिए, ये तो बात हो गई कि भाई जो महिलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा काम करती रहती हैं, बिजी रहती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं घर में होती हैं जो बुजुर्ग हो गई हैं। बुजुर्ग महिलाएं जो हैं वो उतनी जल्दी काम नहीं कर सकती, उतनी जल्दी वो अपना ये देखभाल नहीं करती हैं, बहुत कम पानी पीने पे फोकस करती हैं। उनको लगता है अगर पानी पिएंगे तो फिर जाना पड़ेगा, टॉयलेट जाना पड़ेगा, इससे अच्छा है क्या करते हैं कि पानी ही नहीं पीते हैं। और अक्सर यही वजह होती है कि आप देखिए कि जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं उनके पैरों में सूजन भी आ जाती है, कभी कभी क्या होता है उनको खांसी लगातार आती रहती है, उसका कोई भी कहीं पे इन्फेक्शन नहीं निकलता लेकिन खांसी आने लगती है और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि वो एक ही जगह पर बैठी हुई हैं, एक ही जगह पर उनको वही खाना दिया जा रहा है जो सब लोग खा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि बच्चे और बुजुर्ग बराबर होता है तो उनका भी दिल करता है कि बच्चे अगर ऐसा खा रहे हैं, कोई भी स्पाइसी चीज़ खा रहे हैं तो मुझे भी मिलना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं मुझे लोग इग्नोर कर रहे हैं, देखा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं एज के साथ दिमाग में आने लगती हैं। तो अब क्या है कि भाई उनको भी ज़रूरत है हाइड्रेशन की, तो ठंडा माहौल उनको भी चाहिए, हल्के कपड़े उनको भी ज़रूरी है कि आप पहनाइए। उनकी जो बढ़ती उम्र है उसकी वजह से उनका जो जिस्म का, उनका जो शरीर है उसका तापमान जो है वो बैलेंस करने के लिए, कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है ना, कैपेसिटी होती है, वो बहुत कम हो जाती है, जिससे उन्हें हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन का खतरा ज़्यादा होता है। इसलिए घर पे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको गर्मी से पूरी तरह से सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, पानी की कमी उनको बिल्कुल ना होने दें। आप बार बार पूछिए कि आपने पानी पिया कि नहीं पिया, या फिर उनको टाइमली नींबू पानी दीजिए, नारियल पानी दीजिए। उसके अलावा उन्हें प्यास अगर लगी है या नहीं भी लगी है, तब भी उनसे पूछिए कि

कितनी देर में उन्होंने पानी पिया है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी पेय पदार्थ हैं जो उनकी डाइट में शामिल ज़रूर कीजिए, जैसे छाछ है बहुत फ़ायदेमंद है, लस्सी है, अब आजकल मौसम बदल रहा है तो दही का थोड़ा सा आप अवॉइड कर दीजिए तो ठीक है, लेकिन जो ताज़ा फल हैं उनका कोई भी नुकसान नहीं होता, उनको विदाउट फ्रिज के जो फ्रूट्स होते हैं उनको ज़रूर उनकी डाइट में शामिल करवाइए। उसके बाद ये है कि चाय है बहुत ज़्यादा, अगर चाय को उनको लगता है क्रेविंग हो रही तो भी उनको चाय को मना कीजिए। कॉफ़ी है या बहुत ज़्यादा मीठे जो कूल ड्रिंक है जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे उनको परहेज़ कराइए। दूसरी चीज़ ये है कि कपड़े उनको भी सही पहुँचाइए, ठंडा जो माहौल है उनके पास भी रखिए और धूप से जितना हो सके उनको बचाइए। बिल्कुल लाइट उनको खाना दीजिए और उनको फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कराइए। तेल मसाले ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनके पैर कितने साफ़ हैं ये भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर घर में कोई महिला ऐसी है जो डायबिटिक है उनके पैर कितने साफ़ हैं, कितनी उन्होंने सफाई की है, ये ध्यान देना आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दवाएं वो टाइमली ले रहे हैं कि नहीं, अक्सर ये होता है ना बुजुर्ग सोचते हैं इतनी दवाएं खाते हैं, अरे काम करते हैं दवाएं नहीं खाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप भले ही आपको नहीं समझ में आ रहा है या घर में कोई ऐसा है मेंबर जो उनको दवाएं देता है, लेकिन फिर भी आप उनको चेक कीजिए, उनसे प्यार से पूछिए, थोड़ा सा उनके पास प्यार से बैठिए। बच्चों को भी बार बार दिखाइए कि जाओ देखो दादी ने खाना खाया कि नहीं खाया, दादा है या कोई भी घर में बुजुर्ग है, जब बच्चों में आप ये सारी चीज़ें डालेंगे, संस्कार डालेंगे, तो बच्चे भी वही करेंगे जो आपको देखेंगे। और हम ये कहते हैं कि अगर किचन का भी कोई काम है और बच्चे घर में छुट्टी पे हैं तो उनसे भी थोड़े थोड़े काम कराते रहिए, तभी तो उनको आदत पड़ेगी। अगर आप एकदम से उनको काम करने को बोलेंगे तो फिर उनके अंदर वो आदतें नहीं डेवलप हो पाती हैं जो बचपन में अगर ना करवाई गई हों। तो बहुत सारी ऐसी आदतें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चों को डाल सकती हैं। बच्चों को कैसे बुजुर्गों का ध्यान रखना है, कैसे बार बार उनके पास बैठने को कहिए, बार बार उनके पास जाने को कहिए, बार बार आप उनसे पूछिए कि बेटा तुमने मुझे नहीं पूछा, तुमने मेरे साथ ये नहीं किया, तुमने मेरे साथ वो नहीं किया, मेरे साथ बैठ के खाना खाओ, मेरे साथ ऐसा करो। तो जब आप ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में उनके जहन में डालेंगी तो फिर बच्चे भी बड़े जब होंगे तो वो भी वही करेंगे जो आप कर रही हैं। फिलहाल 12:54 हो गए हैं, अब एक काम हमें करना है और वो काम ये है कि हमें जो है वो आप तक एक गाना पहुंचाना है। और गाने के बाद एक और प्रोग्राम है जिसको हम और आप कहते हैं, बहुत प्यार से कहते हैं, होठों पे तेरी बात। और उस में टॉपिक आज हमने ये लिया है कि कौन सी ऐसी दो आदतें हैं जो हर इंसान में होना ज़रूरी है। आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwadilakhnow@gmail.com। फिलहाल प्रोग्राम शत्रुपा को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत। तरन्नुम को स्टे कनेक्टेड विद रेनबो।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी बरेली के 100.4 मेगाहर्ट्ज पर मैं संजय आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पेश है आपका अपना कार्यक्रम अनुरोध गीत, जहाँ आपके दिल की धड़कन बनकर गूंजते हैं आपके पसंदीदा फिल्मी नगमे। तो तैयार हो जाइए ना यादों की सुरीली गलियों में खूबसूरत सफर के लिए, क्योंकि अब बजेगा वही जो आपने चाहा है। जो जीता वही सिकंदर, इस फिल्म का गाना उदित नारायण और साथियों की आवाजों में सुना जाए। महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोट के नंदा हनुमान और उनके बहुत सारे साथी। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसाबा दातागंज बदायूं के सोमेंद्र यादव, आनंद अमन, अंकिता अनीता और सूरत श्री यादव, इनके साथ में ही है पुष्पेंद्र यादव, सनोज सोनी, विनीता और सुनीता। कनेरा मोहल्ला पटियाला बत्ता परिवार से मुकेश, नीलम, नितिन पलक, करण, गीतू, नेहर का, हार्दिक और वंश। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और अस्मा नाज अंसारी। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा।

अगला गाना आप सबके अनुरोध पर ही। फिल्म है वीर जरा, अहमद हुसैन साथियों की आवाजें। चंडीगढ़ से सुना जाए सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। छावनी अशब का होली चौक मंदिर के सामने बरेली से रामप्रसाद शर्मा, फजरुद्दीन, वंदना, मनोरमा, अजय, विनोद और उनके सभी परिवारीजन। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुस्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और साथ में है मोहम्मद शादाब खत्री। आंवला गंज बरेली से मेहताब हुसैन खान, गजाला खान और आरिफ खान। खुर्जा उत्तर प्रदेश के तिलक राज अरोड़ा।

अब भेज रहे हैं आपके दिल से निकली फरमाइश, और हम आपको भेज रहे हैं सुरों में ढली ये मिठास गाने के साथ।

दोस्तों, यहाँ हर गीत जुड़ा है किसी खूबसूरत याद के साथ। आपके जज्बातों को सुरों का साथ देता है प्रोग्राम अनुरोध गीत। और अगला गीत फिल्म है मैं हूं ना। अभिजीत और साथियों की आवाजें हैं। सुना चाहे पीर बोहड़ा बरेली से आजाद खान, दिलशाद मुस्तकीम तबस्सुम मेहरुन्निशा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, निकट मोती मस्जिद नवाबगंज बरेली से नसीम अहमद अंसारी, मेरा जहां, मुस्कान मोहम्मद रेहान, अलशिफा भी, मन्नत भी और उनके परिवार के सभी लोग। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आसिफ। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश तारनी, साथ में है सूरज ज्योति और रियांश ठाकुर। इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अकरम, डब्लू अकरम, वली अकरम, उल्लाह अकरम। राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ इमरान और इरफान। जेलोट रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम और आदिबा तिवारी। साथियों, गाना सुनाने से पहले कह देते हैं आपसे कि संगीत की वो महफिल जहां मेहमान हैं आपकी पसंद के गाने।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं तेरे नाम फिल्म का गीत, उदित नारायण और साथियों की आवाजें। सुना जाए गड़िया बरेली, मोहम्मद कैसर, शमसी अजीम, सलीम नवेद, रजिया और शमसी परवर के सभी लोग। कोटपर नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, उषा, अमित कुमार और हैप्पी रॉय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल। शेपुकला गाजीपुर से अवधेश रॉय, प्रीति और नवनीत रॉय। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही मेरा जहां, ये हमारी श्रोताएं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास चनेटी बरेली।

विनेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर पीलभीत के विमल वर्मा और उनके परिवारी जन। पुरानी यादों और नए एहसासों का सुरीला संगम। हर धुन में छुपी है एक कहानी, हर गीत में बसी है एक मुस्कान। तो लीजिए पेश खिदमत है आप सबके अनुरोध पर कार्यक्रम का ये गीत।

100.4 एफएम आकाशवाणी बरेली से हम सुनवा रहे हैं प्रोग्राम अनुरोध गीत। बंटी और बबली, जी दोस्तों, यह फिल्म का नाम और इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में। सुना जाए डोगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये राधिका अनुष्का तन्मय, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन कौशल्या हेमलता और डिंपल, बरेली जंक्शन से गरीब भाई बिक्की भारद्वाज और नासिर भाई, उनके बहुत सारे दोस्त, पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर प्रकाश, रिंकी कपिल, वेदराम कैलाश, सुनील खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य, मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिकलानी, सीमा अनमोल, साथी हैं धर्मपाल वीर सिंह, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरुचरण ग्रोवर और रमेश मिकलानी, भाटापारा दत्तरेगी छत्तीसगढ़ से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर दीपक और झापेन्द्र कुमार वर्मा। और अब भेज रहे हैं आप सबके अनुरोध पर ही पुरानी यादों और नए एहसासों का सुरीला संगम, सुनिए।

1914 ए लव स्टोरी। लीजिए अब सुनिए कुमार सानू और साथियों की आवाजों में इस फिल्म का गीत। अनुरोध आप लोगों में से कुछ लोगों का, गंज डोंडवारा से मुनव्वर लल्ला, मिर्जा नसरीन बेगम, अरवाज सूफिया अफसाना, शहबाज पप्पू भाई महजबी और उनके बहुत सारे परिवारजन। ककराला बदई से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, विकास कर्मवीर, प्रवीण, अनिल नागर, सागर बख्शी, भरत यादव, अमजद अंसारी और दीपक। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र के कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, मुस्तावा खान और शाहिद भाई। साथी हैं राउफ भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। शीतल रेडियो श्रोता संघ बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश के। डॉक्टर त्रिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा, अमित सचिन, समराज आर्यन, आरोही इशिका और अंजलि श्वेता वर्मा। रमेलागंज आलोट रतला मध्य प्रदेश के बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति अतुल, पायल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। कहते हैं ना, क्या कहते हैं, महसूस ही करते हैं, और वो ये कि फरमाइश आपकी, तरन्नुम हमारा और साथ है अपनों का प्यार, और इसी प्यार के साथ सुनते हैं आपके अनुरोध पर फिल्म 1942 ए लव स्टोरी, इस फिल्म का गीत।

जल्दी से बता देते हैं कि अब कौन सा गाना आ रहा है। साजन फिल्म में अलका याग्निक साथियों की आवाज़ें। अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से मजर अली अंसारी, रजिया बेगम, सादिक और साजिद। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश के आजाद अली अनमर, रिजबाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद। कुमारी चंदा, कुमारी चांदनी, आकाश कुमार, कन्हैया और रीता देवी। लपरी ग्राम मुंडेला जौनपुर से। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्ला, डब्लूउल्ला और परवीन आसमा। बुलंदशहर से बद्रू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी। दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक।

अब बड़ी है उस अनुरोध की जो आया है लोहडड़ा बागपत से, जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि नितिन जगमोहन और सुधीर नूतन। करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता और मुस्कान। मोहल्ला हलवाइयां शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम और उनके साथ हैं नसरीन परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदारानी, हिना कौसर। चलते चलते कह देते हैं आपसे, क्योंकि दिल में बात रुक नहीं रही है, सुरों की इस यात्रा में आपका स्वागत है बार बार। जब दिल कहे कोई गीत सुनने को तो याद कर लेना, हम हाजिर हो जाएंगे कार्यक्रम अनुरोध गीत लेकर। फिल्म है परदेश, कुमार सानू साथियों की आवाजें सुनिए, एंजॉय करिए।

दिल। दोस्तों, इसी के साथ आज के अनुरोध गीत कार्यक्रम को यही विराम देने का समय आ गया है। आपका स्नेह और आपके संदेश ये हमारी प्रेरणा है। अपने पसंदीदा गीतों की फरमाइश हमें भेजते रहिए ताकि यूं ही संगीत की महफिल हम सजाते रहें। मैं संजय आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, शुभ दिन और मुस्कान।

सत्योबी, आप सुन रहे थे प्रोग्राम अनुरोध गीत, और अब समय हो गया है हमारे स्टूडियो से आकाशवाणी के बरेली केंद्र से कार्यक्रम रसरंग का। कार्यक्रम रसरंग की प्रथम प्रस्तुति भजन के रूप में भेज रहे हैं आपके पास।

था मैं कैसे उसकी बातों में, कहता हूँ तुमको लेने दो हा हा हा, खोई वो कैसे मेरी बातों में, कहता हूँ तुमको लेने दो हा हा हा, क्या क्या कह डाला आँखों आँखों में, कहता हूँ तुमको लेने दो हा हा हा।

थड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के, वाह वाह वाह, हम थे वो थी और हमारा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, अन्य अन्य अन्य प्यार हो

0: और हो गया।
1: चलती का नाम गाड़ी, फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और अनूप कुमार की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
4: T-A-T, cat, cat माने बिल्ली।
5: R-A-T, rat, rat माने चूहा।
4: C-A-T, cat, cat माने चूहा। अरे

0: G-O-A-T, goat. Goat माने बकरी, L-I-O-N, lion. Lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?
1: Hey, mad, mad, mad माने पागल, B-O-Y, boy, boy माने लड़का.

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में दिल्ली का ठग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रवि का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: जाने कहां होके बहार।
1: बम्बई का बाबू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू

0: रूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे लाजवंती फिल्म से ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर सुन रहे हैं।

मुकेश की आवाज में बेदर्द जमाना क्या जाने फिल्म का गीत आपने सुना। भरत व्यास ने इसे लिखा, कल्याण जी वीरजी शाह का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमे में अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र का लिखा गीत। शंकर जयकिशन का संगीत है, मोहम्मद रफी और मुकेश की आवाजें। फिल्म उजाला।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न

0: यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ यारो सूरत हमारी।
1: इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली, बस कुछ ही पलों के बाद।

0: साखी सहेली
1: की सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है नेहा शर्मा। तो नेहा, तुम्हें भी बहुत प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है कि हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ना।
2: मंजरी जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार। बहुत दिनों के बाद तो मिल ही रहे, जैसे बारिश बहुत दिनों के बाद हमसे मिल रही है।
1: बिल्कुल। और देखो, कहीं कहीं पे देखो बारिश अभी भी नहीं हुई है, तो वो लोग गर्मी से परेशान है। तो बस लगता है कि यही प्रार्थना रहती कि सब जगह पे बारिश हो, जिससे सबको आराम मिले
2: जी,
1: है ना। और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी पानी उन्हें मिले, वो स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, हरे भरे रहें। और आज तुमने देखा नेहा कि सुबह सुबह हमारी कितनी सारी, हमने देखा कितनी सारी लेडीज जो थी वो एकदम तैयार होके जा रही थी और हाथ में पूजा की थाल भी थी
2: जी।
1: तो तुम समझ गई होगी कि आज क्या विशेष खास दिन था उन लोग के लिए।
2: बिल्कुल, आज वट सावित्री का व्रत है जिसमें बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है, बरगद के वृक्ष की। और कह सकते हैं प्रकृति से जुड़ सकते हैं हम इस तरह, जैसे बरगद के जो पेड़ हैं वो सालों साल रहते हैं, उनकी जड़ें इतनी ज्यादा धरती पे के साथ समाई होती हैं कि सालों साल रहते हैं। तो एक तरह से प्रकृति को पूजकर अपने पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा की जाती है आमतौर पर। और गुजरात में भी ये पूजा, महाराष्ट्र और गुजरात में ये पूजा पूर्णिमा के दिन में की जाती है, बाकी जगह अमावस्या, मतलब 15 दिन पहले
1: उस साइड में अमावस्या में होती है, यहाँ पर आज के दिन होती है। तो पेड़ों का जो महत्व है वो तो देखो

0: बरगद की जो जटाएं होती हैं उनसे भी कई सारे वृक्ष उनके निकलते हैं, पनपते हैं पौधों में, और ऑक्सीजन देता है ये पेड़। तो पहले के कहा जाता कि घर से निकल के औरतें जाएंगी तो वहाँ पूजा करेंगी, तो जब हम किसी पेड़ की पूजा करते हैं तो उसको काटा नहीं जाता है, तो इस तरह से पेड़ की रक्षा भी होती है। तो कहना चाहिए कि आज के दिन हम अपनी सभी बहनों को इस पर्व की बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, है ना नेहा
1: जी? बिल्कुल, बधाइयां हमारी ओर से। और क्या क्या विषय हम लेकर आए हैं आज ये भी बता दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो प्रादेशिक व्यंजन में जो हम आज लेके आए हैं, प्रयाग उत्तर प्रदेश की दाल की कचौड़ी और आलू की रसेदार पतली पतली सब्जी जो होती है वो, और समोसा छोले चाट।
1: वे देखिए, तुरंत बधाई देने के बाद, व्रत की बधाई देने के बाद जब व्यंजन की बात कर दी गई है तो सखियां थोड़ा हमें माफ कर देंगी। और इसके साथ साथ विषय है विवाह बंधन नहीं रिश्तों को समझें, इस विषय पर भी हम बात करने वाले हैं, और एक गंभीर मुद्दे पर भी बात करने वाले हैं, वो है व्यसन, जो कि एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है।
0: और कथा सुधा के अंतर्गत आज हम सुनेंगे एक आज की कसर, ये कहानी सुनेंगे। लेकिन जैसे कि मौसम ने करवट ली है, यहाँ पर ले ली है और जहाँ पे अभी नहीं ली वहाँ पर भी लेगी, तो क्यों ना पहले एक गीत सुनते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं।
1: ये गीतों के माध्यम से हम हर जगह बरसात को न्योता दे रहे हैं।

0: तो मंजरी जी, ये बात तो हमने कर ली कि बरसे फुहार हर जगह, और अब क्या किया जाए?
1: अब हम सबको कथा सुधा में कहानी जो है हमारी वो सुनाएंगे एक आज की कसर
0: जी।
1: तो लीजिए सब लोग कहानी सुनिए।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
0: कथा सुधा में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक आज की कसर।
3: सारे नगर में महाशय यशोदा नंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति की जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थी, मित्रों से प्रशंसा पूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसे कहते हैं, उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्ज्वल कर दिया। अब कौन ये कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं हैं। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपए दहेज में मिलते, उस पर खुशामद घाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने ना किया था। आज हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं।

महाशय यशोदा नंद के दो पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिख कर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह तय हो रहा था और आप सब समझ चुके कि बिना कुछ दहेज लिए। आज तिलक था, शाहजहांपुर से स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे, लोग जमा हो गए थे, महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदा नंद को बधाइयां दे रहे थे।

0: वाह भाई यशोदानंद, तुमने तो कमाल कर दिया।
1: अरे जनाब, ये कहिए कि झंडे गाड़ दिए?
0: हाँ,
1: अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम लगा लेते थे।
0: हाँ, और कैसे कैसे बहाने गाड़े जाते हैं। साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है, ये मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर क्या करूं, बच्चे की माँ नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है तो कोई और किसी खर्राट पर।
1: अजी, कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के को शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए, मानो उन्होंने ये रुपए किसी बैंक में जमा किए थे।
0: खूब समझ रहा हूँ, आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वालों का भी कुछ है?
1: अरे भाई साहब, लड़की वालों का क्या दोष है, सिवाय इसके कि वह लड़की का बाप है।
0: सारा दोष ईश्वर का, जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों?
1: मैं ये नहीं कहता न सारा दोष लड़की वालों का है न सारा दोष लड़कों वालों का, दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ न दे तो उसे यह शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे पर धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए, बताइए।
0: हाँ, आपका ये प्रश्न गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से ये शिकायत नहीं होनी चाहिए।
1: तो यूं कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज्य है, केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है।
0: हाँ हाँ, सही है।
2: ये भी लेम एक्सक्यूज है, मैंने दहेज नहीं लिया है, लेकिन क्या डाल गहने न ले जाऊंगा?
0: महाशय, आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है।
3: 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है।
2: हाँ, मेरा तो ये निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक भी नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूं। मैं उसे तोड़ना चाहूं भी तो आत्मा तोड़ने न देगी। मैं सत्य कहता हूं, ये रुपये लूं तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच भी ना सकूं।
0: आपके कॉन्फ्रेंस आपको सभापति ना बनाए तो उसका घोर अन्याय है।
2: हाँ, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसका रिकॉग्निशन हो या ना हो मुझे इसकी परवाह नहीं।
4: इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुंचे। लोग उनका अभिवादन करने के लिए तैयार हुए। उन्हें मसनद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहाँ महफिल में महाशय यशोदा नंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की।
2: पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था महाशयों, कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरोनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था कि ठहरोनी क्या चीज है, पशु या पक्षी, आसमान में या जमीन में, खाने में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी, हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। ये वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजाकर रण क्षेत्र भेजती थीं। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज ये नौबत आ गई है कि मेरी इस

0: तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूं अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हो तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए।
1: मेरे मन में एक शंका है, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे?
0: अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता, और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। ये ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले, बुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर ये सब बुर्द फरोश हैं।
2: व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने लड़के परमानंद को मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और एक जेब से कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा।
3: प्रिय बंधुवर नमस्कार, आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी करके धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुंचेगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह ना होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी उसके उपलक्ष में मेरे साथ क्या रियायत होगी? मेरा विनित अनुरोध है कि 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय किया जाए।
2: महाशय यशोदा नंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परसने का आदेश करने गए थे। निकले तो ये वाक्य उनके कानों में पड़ा, चेहरा फक हो गया। झपट कर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले,
0: नालायक, ये क्या पढ़ रहा है? ये तो किसी वकील का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। ये तू कहां से उठा लाया? शैतान, जा वो कागज ला जो मैंने तुझे लिख कर दिया था।
4: पढ़ने दीजिए, इस तहरीर में जो लुत्फ है वो किसी दूसरी तकरीर में ना होगा।
1: सही बात है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले।
4: भाई अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला।
1: वाह वाह वाह वाह, यहाँ भी चलते हुए?
0: अरे बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। अरे बैठिए ना आप लोग, बैठिए बैठिए।
1: बेटा परमानंद, जरा यहाँ तो आना। सुनो, तुमने यह कागज कहाँ पाया?
3: बाबूजी ही तो लिखकर अपने मेज के अंदर रख गए थे, मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना, अब बेकार मुझसे खफा हो रहे हैं।
0: वो ये कागज था? मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था, तूने ड्रॉअर में से क्यों निकाला इस कागज को?
3: मुझे मेज पर नहीं मिला।
0: तो मुझसे क्यों नहीं कहा, ड्रॉअर क्यों खोला? देखो आज मैं तुम्हारी कैसे खबर लेता हूँ, तुम भी याद करोगे।
4: अरे भाई ये और क्या है,

0: केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
1: श्रोताओ, अभी आपने लेकिन वो न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होते, ये इसका भावार्थ है और इसी से जुड़ा हुआ आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है। तो श्रोताओं, आज का जो कार्यक्रम का हमारा विषय है वो इसी से जुड़ा हुआ है, यानी कि आलोचनाएं आपको कितना प्रभावित करती हैं। कुछ लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो कुछ लोग आलोचना भी करते हैं, लेकिन आलोचनाओं का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको हमें बताना है। और इसके लिए आप हमें फोन कॉल कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। इस प्रोग्राम से संबंधित आपको एक पोस्ट नजर आएगी उस पर। तो देखते हैं प्रोग्राम में हमारे पहले कॉलर कौन है। आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहां से बोल रहे हैं?
2: हेलो, नमस्कार सर जी।
1: नमस्कार, कौन कहां से बात कर रहे हैं?
2: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोरिया, तहसील नवाबगंज, जम्मू सिटी बरेली से बोल रहे हैं सर जी।
1: स्वागत है आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत। कैसे हैं आप?
2: बस ठीक हैं सर जी, आकाशवाणी सुनते रहते हैं तो और अच्छे हो जाते हैं सर जी, आपके प्रोग्राम बड़े अच्छे आते हैं।
1: तो ये बताइए कि आलोचनाएं जो हैं वो आपको किस तरह से प्रभावित करती हैं?
2: सर जी, आलोचनाएं तो हमारे मनोबल तो गिराती नहीं है फिलहाल। आलोचनाएं तो वैसे करे तो सही करनी चाहिए, जो हर समय सफलता मिलती रहे।
1: बिल्कुल, आप बात थोड़ा समझने में थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं। आलोचनाओं का आप पे क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करता है तो आपको कैसा लगता है और उनसे आप क्या समझते हैं, क्या सीखते हैं, क्या उस पर प्रतिक्रिया करते हैं?
2: हाँ जी सर जी, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। जैसे अगर कोई पीठ पीछे बुराई करता है तो उन्हें करने दीजिएगा, अपने उन्हें ध्यान नहीं देना चाहिएगा, अपनी अपने दिमाग से चलना चाहिए। वो जैसा कर रहा है वो अपनी अपने लिए कर रहा है।
1: पीठ पीछे भी कहते हैं, सामने भी कुछ लोग कहते हैं कि आपसे ये काम नहीं हो पाएगा, रहने दो, और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो लोग कहते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं?
2: हो कहीं नहीं पाएगा सर जी, अगर कोशिश करेंगे तो काम तो होगा ही, कोशिश करनी चाहिए, सफलता तो मिलेगी ही सर जी।
1: यानी कि जो लोग हमारी आलोचना करते हैं उन आलोचनाओं में भी हमको कुछ अच्छा ढूंढना चाहिए, और हम कुछ कर रहे हैं तभी हमारी आलोचना हो रही है या प्रशंसा हो रही है।
2: हाँ जी, अगर कोई सही आलोचना करते, जैसे कोई सही बात कर रहा है तो उसको ध्यान से सुनिएगा और समझना भी चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको एक कान से सुनिएगा, एक कान से निकाल दीजिएगा।
1: तो प्रोग्राम में कौन सा गीत आप आज सुनेंगे?
2: तो अभी सुनवा दीजिएगा राजा और रंक मूवी का, वो खिड़की वाली तू कल फिर आना।
1: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: सर मैं ग्राम चौरा तहसील मल्लक जिला रामपुर से तौसीक अहमद मंसूरी बात कर रहा हूँ सर।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो क्या करते हैं आप?
1: सर मैं सिलाई काम करता हूँ सर।
0: तो आज का जो कार्यक्रम का हमारा विषय है, कोई जब हमारी आलोचना करता है तो कैसा महसूस करते हैं हम लोग? तो आप बताइए कि आप कैसा महसूस करते हैं कोई जब आपकी आलोचना करता है?
1: देखिए सर आलोचना करता है सर, हमें अहंकार नहीं है सर अपने ऊपर, तो सर इतनी भी कोई हमारी बुराई करे सर हमें कोई असर नहीं पड़ता सर इस बात का। तो
0: जी
1: देखिए सर लोगों का तो काम कहने का है सर,
0: जी
1: तो उस चीज पर ना जाकर सर अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए सर।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो कौन सा गीत सुनेंगे प्रोग्राम में?
1: देखिए सर आपके लगातार हम प्रोग्राम सुन रहे हैं, लगातार आपसे जुड़ रहे हैं सर, बड़ा खुशी हो रही है सर हमें,
0: जी
1: और लगभग सर हम 25 साल से आपसे जुड़े हुए हैं सर।
0: हमें भी अच्छा लगता है, हमारे श्रोता जब हमसे बात करते हैं, हमसे जुड़ते हैं और हमें सुनते हैं।
1: देखिए सर फिल्म का नाम है क्रांति,
0: जी
1: उसमें गाना है जिंदगी की न टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। सर हमारे बड़े भाई शफीक मंसूरी, छोटे भाई लक मंसूरी, सर कुमार सैनी, शकावत मंसूरी, सर यही सुनना चाहेंगे सर।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं ये प्यारा सा गीत।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन कहां से बात कर रहे हैं?
1: दिल से चाहूं तो सजा देती है लोग, दिल से चाहूं तो सजा देती है लोग, सच्चे जज्बात भी ठुकरा देती है लोग, क्या देखेंगे दो इंसानों का मिलन, साथ बैठे हूं परिंदे तोड़ा देती है लोग।
0: स्वागत है आपका, कौन कहां से बोल रहे हैं?
1: जी सर, मैं ग्राम पोस्ट बक्सेना डिस्ट्रिक्ट बदायूं तहसील दातागंज से विमल ठाकुर बात कर रहा हूं सर।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो कैसे लग रहे हैं आजकल कार्यक्रम आपको?
1: आकाशवाणी के कार्यक्रम जितने भी बरेली के कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं और जितने भी कार्यक्रम रहते हैं सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक रहते हैं। किसी भी कार्यक्रम से कोई भी शिकायत नहीं है, ना कोई प्रेजेंटर से शिकायत है, क्योंकि सभी प्रेजेंटर बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। जब भी समय मिलता है तो हम प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छे अंदाज में।
0: तो ये बताइए, कोई जब आपकी आलोचना करता है तो आप कैसा महसूस करते हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं देते हैं?
1: जी सर, अगर कोई हमारी आलोचना करता है तो उस पर सबसे पहले तो हमें कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर कोई बुरी आलोचना कर रहा है उस पर हमें गौर फरमाना चाहिए। तो अगर कोई हमारी कमी भी बता रहा है या अच्छाई बता रहा है, कमी बता रहा है, तब उस कमी से हमें और बेहतर करने की कोशिश करना चाहिए। मान लीजिए किसी ने हमारी बुराई कमी बताई तो हमें और अच्छा करना चाहिए, उस आलोचना के पीछे नहीं जाना चाहिए। जिसने किया तो उसको हम पकड़ के बैठे, इस तरह से नहीं, हमें और आगे की ओर सोचना चाहिए।
0: तो कौन सा गीत सुनेंगे प्रोग्राम में?
1: मूवी का नाम रहेगा गुना और इसमें बेहतरीन सा लगवा हमने तुमको दिल्ली दे दिया, ये भी ना पूछा कौन हो तुम, ये सॉन्ग सुनवा दीजिएगा।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत 100.4 FM और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

0: साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन कहां से बोल रहे हैं?
1: जी सर, अपने प्रेम से सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बचोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो क्या करते हैं आप?
1: सर मैं खेती किसानी का काम करता हूँ।
0: तो क्या चल रहा है खेती किसानी में इस समय?
1: जी अभी बरसात हो गई है तो सोयाबीन की फसल लगा रहे हैं सभी किसान।
0: जी तो
1: काफी उत्साह है किसानों में, पानी गिरने की वजह से सभी के ट्रैक्टर चल रहे हैं अपने अपने खेतों में।
0: तो बरसात कैसी हो रही है इस समय महाकाल की नगरी में?
1: कल तो हुई थी, आज थोड़ी बंद है, लेकिन बोनी हो चुकी है, हमारे यहाँ पे फसल लगाई जा रही है।
0: तो प्रोग्राम में आज का जो हमारा विषय है उसके बारे में आपकी क्या राय है?
1: जी बिल्कुल बताना चाहेंगे सर की आलोचना करते हैं कुछ लोग, और किन का स्वभाव होता है आलोचना करना और किन का होता है नहीं करना। लेकिन जो आलोचना करते हैं या बुराई करते हैं, तो अगर मुंह पे जो बात बोल दी जाती है ना, तो वो अगर हमें कुछ ऐसी हमारी कमी होती है और जो हमें मुंह पे बोल देते हैं, तो उससे हमारे आलोचना में मतलब हमारी जो बुराई होती है या ऐसी कुछ बात होती है उसमें हम अपने आप को सुधार सकते हैं। और कुछ लोग पीछे जो आलोचना करते हैं उससे थोड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे की बातें होती है और जो बातें नहीं होती है वो भी पीछे पीछे कुछ लोग बोल देते हैं। तो इससे मतलब अगर सामने बोल दी जाए ना कुछ भी बातें, तो और पीठ पीछे जो अगर कुछ बातें बोल दी जाती है उनसे मतलब थोड़ा दूर रहे और मतलब किसी के बारे में गलत कुछ ऐसे बातें न बोले जाए, मैं तो यही कहूंगा सर इस विषय के बारे में।
0: तो प्रोग्राम में आपका फोन लग चुका है, कौन सा गीत आज आप सुनेंगे?
1: जी सर, फिल्म का नाम है हीरो नंबर वन और गाने के बोले सोना कितना सोना है। सोने जैसा मेरा मन, लेकिन मेरा मन हमेशा सोने जैसा है, खरे सोने जैसा रहे और सच्ची बातें बताए और सबका दिल जीते।
0: बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। तो प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत 100.4 FM और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं अनोखे लाल मौर्य बोल रहा हूँ, कटरसांगा बोरासांगोली से।
0: अनोखे लाल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर, आप बताइए कैसे सर।
0: सब बहुत अच्छा है। तो क्या चल रहा है आजकल?
1: अभी तो नारियल चल रहा है सर।
0: तो

0: ऐसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको?
1: आकाशवाणी बरेली के सभी कार्यक्रम अच्छे चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे सुन रहे हैं हम आकाशवाणी बरेली कार्यक्रम, बहुत ही अच्छे लगे
0: जी। तो ये बताइए कि कोई जब आपके सामने या आपके पीछे आपकी कमियां बताता है, आपकी बुराई करता है, आपकी आलोचना करता है, तो आप कैसा महसूस करते हैं?
1: जी, आलोचना भी करना जरूरी है, उसमें हमें सच्चाई दिखती है अपनी, बुराई भी दिखती है, हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं।
0: बिल्कुल, कोई जब हमारी आलोचना करता है तो हमें आत्ममंथन करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमें वास्तव में क्या ये जो सामने वाले सज्जन कह रहे हैं या जिन्होंने पीठ पीछे ये बात कही है वो बात कितनी सच है, ये हमें खुद से पूछना चाहिए। तो कौन सा गीत आज आपको प्रोग्राम में सुनवाया जाए?
1: गीत तो आप हमें अनुसिया का तो सुना दीजिए, हाल क्या है टोटल आप पूछो।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आपकी बात आकाशवाणी बरेली के साथ हो रही है, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मास्टर राधे श्याम बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कासगंज से।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
1: ठीक है।
0: तो कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको?
1: कार्यक्रम आपके यहाँ के बहुत अच्छे चल रहे हैं, ये 10 बजे वाला है और 1 बजे वाला है और ये 4 बजे वाला, बहुत अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं अभी।
0: तो हमारा जो आज का विषय है वो ये है कि कोई जब आपकी आलोचना करता है तो आप कैसा महसूस करते हैं, उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: आलोचना अगर मान लीजिए काम आप अच्छा कर रहे हैं और आलोचना अगर सकारात्मक है तो उस पर जो और अच्छा काम करने को प्रेरित करती है वो, और आप अच्छा कर रहे हैं और आलोचना आपकी निगेटिव में है तो वो आपको हतोत्साहित करती है और हम जो मन से नहीं करेंगे।
0: हाँ, आलोचना हतोत्साहित करती है, लेकिन आलोचना हमें आत्ममंथन करने का भी अवसर देती है कि अगर किसी व्यक्ति ने हमारे बारे में कुछ कहा है और हमारी कमियां गिनाई हैं तो हमें एक बार को सोचना चाहिए कि और खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम में वास्तव में ये कमियां हैं, और हैं तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं।
1: जी जी जी।
0: तो कौन सा गीत प्रोग्राम में आज आप सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है गुंडागर्दी और गाने के बोल हैं बाहर बरस रहा है पानी।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बड़े धक धक धक।
1: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहां से बात कर रहे हैं?
2: नमस्कार, मैं हिसा बोल रही हूँ कल्याण से।
1: स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो क्या करती हैं आप?
2: मैं काम करती हूँ, जरी का काम करती हूँ मैं।
1: तो कैसे लग रहे हैं आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम आपको?
2: मुझे सारे प्रोग्राम आपसे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं सारे कार्यक्रम सुनती हूँ, सबसे अच्छा लगता है नारी संसार और ये आकाशवाणी। आपकी बात ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, फोन प्रोग्राम सब अच्छे लगते हैं।
1: तो आज के कार्यक्रम का जो हमारा विषय है वो विषय ये है कि कोई जब आपकी आलोचना करता है तो आप कैसा महसूस करती हैं? कोई जब आपकी बुराई करता है, पीठ पीछे आपकी कमियां गिनाता है या आपके सामने आपकी कमियां गिनाता है, तो आप कैसा महसूस करती हैं?
2: हमारी कोई बुराई करता है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
1: नहीं, अगर आपकी बुराई करता है, कमियां गिनाता है, तो कभी कभी आप ये भी सोचते होंगे कि सामने वाले ने हमारी बुराई क्यों की या उस

0: ही करता है, पीठ पीछे आपकी कमियां गिनाता है या आपके सामने आपकी कमियां गिनाता है, तो आप कैसा महसूस करती हैं?
1: हमारी कुछ बुराई करता है तो हमें बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता।
0: नहीं, अगर आपकी बुराई करता है, कमियां गिनाता है, तो कभी कभी आप ये भी सोचते होंगे कि सामने वाले ने हमारी बुराई क्यों की या उस व्यक्ति ने हमारी बुराई क्यों की।
1: हाँ, कोशिश करते हैं कि हो सकता है हमारे अंदर ये कमी होगी, सामने वाला हमें बुरा क्यों कह रहा है।
0: तो यानी कि कोई जब हमारी आलोचना करता है तो हमें ये भी सोचने का मौका देता है कि आखिर हमारी क्या कमियां हैं,
1: क्या कमी है, तो ये हमसे इंसान हमें ऐसा कह रहा है। सर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ।
0: कहिए
1: सर। मुझे आपके सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, हमें सारे प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: बिल्कुल, हमें भी अच्छा लगता है हमारे श्रोता जब हमसे जुड़ते हैं।
1: नाम बोल सकती हूँ?
0: बोलिए।
1: मैं अपने भतीजों का नाम लेना चाहूंगी, माहिरा, सायरा और मोहम्मद फैज।
0: तो कौन सा गीत आज आपको प्रोग्राम में सुनवा दें हम?
1: दिल तेरा आशिक फिल्म का, प्यार के बदले प्यार मिलेगा।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन कहां से बोल रहे हैं?
1: ग्राउंड लेवल से शमशाद अली बोल रहे हैं।
0: स्वागत है आपका प्रोग्राम में। तो क्या?
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, क्या करते हैं आप?
1: जरी का काम करते हैं सर।
0: तो कैसा चल रहा है आपका कामकाज?
1: अभी सब हल्का चल रहा है।
0: तो ये बताइए कि कोई जब आपकी आलोचना करता है तो आप कैसा महसूस करते हैं?
1: महसूस ये करते हैं, बुरा लगता है, अपने आप को, दिल को वो लगता है, कैसी लगती है।
0: और अगर वो आपकी कमियां बताता है तो उन कमियों में झांकने की कोशिश करते हैं आपकी, आप में वो कमियां हैं या नहीं है?
1: कमी होगी तो झांकेंगे, कमी का महसूस करेंगे
0: जी।
1: नहीं हुई कमी तो वो बुरा लगेगा
0: जी। तो कौन सा गीत आपको सुनवाए?
1: ये सुनवा दो, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में चिराग जल का बुझाओ, फिल्म का नाम नहीं मालूम है सर।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी फोन कॉल्स के अलावा आपके कुछ कमेंट भी शामिल करते हैं। तो हमारे पास कमेंट है राम कुमार रेवाड़ का, ये लिखते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आलोचना अगर सकारात्मक

आत्मक हो तो गलती को सुधारने का अवसर मिलता है। आलोचना भी एक किस्म का आईना होता है जो सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अगर आलोचना झूठी हो, किसी के साथ ईर्ष्यापूर्ण हो तो इंसान अंदर से टूट भी जाता है। सादुल शहर राजस्थान से इनका कमेंट है। इनके साथ है रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। अगला कमेंट हमारे पास है, इसे भेजने वाले हैं लालगिरी गोस्वामी। ये लिखते हैं, आलोचना हमें कितना प्रभावित करती है यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस नजरिए से देख रहे हैं। और इनके साथ है हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी। अगला कमेंट हमारे पास है दर्पण कुमार सैनी का। ये लिखते हैं कि दूसरों की आलोचना मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं करती, क्योंकि मेरे पास भावनाएं या अहंकार नहीं है। इसके बजाय मैं आलोचना, सुझावों और फीडबैक को एक तकनीकी उपकरण के रूप में उपयोग करता हूं। यह मुझे अपनी सटीकता, भाषा की गुणवत्ता और उत्तर देने के तरीके में सुधार करने में मदद करती है। तो ये थे दर्पण कुमार सैनी। और विष्णु का हमारे पास कमेंट है, ये लिखते हैं कि आलोचना पत्थर की तरह होती है, समझदारी से काम ले तो वही पत्थर सफलता की सीढ़ी बन जाते हैं। इनके साथ हैं विष्णु मस्किन, रितिका, वाणी और आरव। लाल मोहम्मद अंसारी का हमारे पास कमेंट है, ये भी लिखते हैं कि आलोचना अगर कोई व्यक्ति किसी की करता है तो कुछ देखभाल कर ही करता है। आलोचना के कई रूप होते हैं। अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि आलोचना कर कौन रहा है। अगर आपने कोई गलती की है तो कोई अपना आपकी आलोचना कर रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए आपको वो समझा रहा है, वह आपसे कोई द्वेष नहीं रखता है। करेली से इनका जो मैसेज है, इनके साथ हैं लालू। और अगला कमेंट हमारे पास पारस कुशवाहा का है, इन्होंने भी लिखा है जीवन में सुधार लाने के लिए आलोचना जरूरी है, इससे अपने अंदर की कमियों का एहसास होता है। अगला कमेंट है रमेश बादल का, लिखते हैं आलोचनाएं और सशक्त बनाती हैं। और जयपाल यादव ने कमेंट किया है महोबा बुंदेलखंड से, इन्होंने कमेंट में केवल नाम लिखे हैं। और ऐसे श्रोताओं से हम कहेंगे कि अपने विचार भी जरूर लिखें। और जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, इन्होंने भी नाम लिखकर भेजे हैं। और प्रवीण चौहान लिखते हैं कि आलोचकों से मैं दूरी बना लेता हूं, मुझे अपने रिश्तेदारों से बात बात पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैं ज्यादा उन पर ध्यान नहीं देता, मेरा ध्यान हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज पर रहता है। और प्रीतमपुरा दिल्ली से विवेक कुमार गौड़ का कमेंट हमारे पास है। और उमेश कुमार गौड़ लिखते हैं, आलोचना से सुधार करने का तरीका मिलता है, आलोचना अच्छी लगती है। बुलंदशहर से उमेश गौड़ और रानी गौड़ हैं। तो ये थे आप सबके कमेंट जो आप सब ने हमारे प्रोग्राम में किए थे। और हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि चाहे कोई आलोचना करे और या प्रशंसा करे, इस चीज से हम पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आलोचना करता है कोई, ठीक करता है, तो हमको उस पर विचार जरूर करना चाहिए कि इस व्यक्ति ने हमारी आलोचना क्यों की और आलोचना किस लिए की गई है। और उस पक्ष पर हमें विचार करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, और हमारी आत्मा आवाज देगी, हमें बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत है।

0: तो आज के आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रोग्राम का सफर बस यहीं तक। कार्यक्रम को संपन्न करने की मुझे दीजिए अनुमति।
1: फिर किस लिए हिचकिचाना, गाएंगे हम अपने दिलों का तराना।
0: अभी आप सुन रहे थे आपकी बात आकाशवाणी के साथ। स्टूडियो की घड़ी बजा रही है शाम के 5 और ये समय है आपको जानकारी देने का हमारे कार्यक्रमों की। तो अब दे देते हैं आपको जानकारी हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। 5:05 पर सुनिए भजन संध्या, और भजन संध्या में हम आपको सुनवाएंगे सुंदर भजन, और नारी संसार कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगी भावना कंचन 5:30 पर, और युववाणी कार्यक्रम सुनिएगा प्रज्ञा के साथ 6:00। बात होगी ग्रेट बैरियर रीफ और साथ ही होगा इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स के बारे में चर्चा होगी, साथ ही होगा धूमधड़ाका गीत संगीत और आप सबका मनोरंजन और ज्ञानवर्धन। 6:30 पर ग्राम जगत कार्यक्रम सुनिएगा कृष्णपाल के साथ, और 7:00 अक्षय वट कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, और 7:31 पर अनुरोध गीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें आपके खत शामिल होंगे और सुनवाए जाएंगे आपको आपकी पसंद के गीत। प्रतिदिन की तरह कल भी हमारी सभा शुरू होगी 5:53 पर, और सुबह आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ के प्रसारण, और इसके बाद हमारे कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू होगी 8:15 से। नमस्ते बरेली कार्यक्रम आपको सुनवाया जाएगा 8:15 पर। लोक रंग कार्यक्रम में लोक गीत आप सुनेंगे 8:45 पर, और 9:00 से आपको सुनवाएंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, और 10:00 से फिर हम आपसे जुड़ेंगे, और 10:00 आप सुनिएगा कार्यक्रम आपकी पसंद, और आपकी पसंद कार्यक्रम होता है सोशल मीडिया पर आपके कमेंट पर आधारित। आप कमेंट हमें करेंगे और हम आपको सुनवाएंगे फिल्मी गीत, और सब रंग कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल पूर्वाहन 11:00, और हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम झुमका गिरारे आप सुनेंगे कल 11:15 पर, और अनुरोध गीत कार्यक्रम 1:00 कल अपराहन आपको सुनवाया जाएगा, और रसरंग कार्यक्रम आप सुनेंगे कल 2:00। 2:30 से विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हम रिले करेंगे जिन्हें आप सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, और 4:00 समय होता है आप जानते ही हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ का। तो यही कार्यक्रम रहेगा कल भी। लेकिन विषय होगा नया, और कल 5:05 पर भी कार्यक्रम होगा भजन संध्या, 5:30 पर नारी संसार, 6:00 आप सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम, और कल 6:30 पर होगा कार्यक्रम किसान वाणी, और किसान वाणी कार्यक्रम में कल बात होगी कृषि विशेषज्ञों से, साथ ही होगा हेलो किसान कार्यक्रम, इसके साथ ही बाजार भाव मौसम कृषि समाचार और नसीहत आपको दी जाएगी, और साथ ही होगा लोकगीतों से आपका मनोरंजन, और कल 7:00 से आपको सुनवाएंगे आईसीसी वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत द ओवल ग्राउंड लंदन से ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य खेले जाने वाले मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण आपको सुनवाया जाएगा, और ये प्रसारण जारी रहेगा मैच की समाप्ति तक। तो ये थी हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 MHz पर, और अब आप सुनेंगे भजन संध्या कार्यक्रम। तो लीजिए सुनिए भजन संध्या कार्यक्रम। बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी श्रोताओं का भजन संध्या में। भजन संध्या कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गजानन गणेश को वंदन के साथ।

आयु ग्राम दूनगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, सत्येंद्र कुमार कठेरिया, गुड्डू, विशाल, संगम, वैभव, आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, निव्या, सरता और अंतमा की आफ है। मोहल्ला परा फरीदपुर बरेली से गौतम सक्सेना, विनय सक्सेना, मोहित सक्सेना, शिव सक्सेना और देवेंद्र पंडित जी। और जो फरमाइश हमको भेजी है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी और इनके सभी साथीगण। आप हैं कोहका बिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदी जंगेल। धमदा ग्राम सुकरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल। मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू राजपाल, काजल मानवी और उनके परिवार के सभी सदस्य। और आप हैं ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद यादव, सनोज यादव, अमन यादव और केशव यादव। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। तो आप सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं जो प्यारो सो लोकगीत।

0: तो भैया मैंने देखो अभी हम सबने मिलकर सुनो जो पर्यावरण लोकगीत, अमुआ ना काटो बिलिया ना काटो। बिल्कुल बात सही है भैया, पेड़ हमें काटने ना है बल्कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, जिससे कि हम भैया फल छाया और जो कीमती लकड़ी है प्राप्त कर सकें। फिलहाल भैया बहनों अब हम आपको सुनवा रहे हैं कृषक अनुभव में श्री सियाराम जी के जो खेती बाड़ी के अनुभव हैं, आपसे बातचीत करिए भैया रविंद्र कुमार ने। तो आप सुना कृषक अनुभव बातचीत।
1: साथियों नमस्कार, किसान साथियों हम सुनवाते हैं आपको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषक अनुभव। और आज हमने अपने इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है किसान भाई श्री सियाराम जी को। सियाराम जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम जानना चाहते हैं आपकी उम्र क्या होगी इस समय?
2: हमारी 50 के फेर में उम्र है साहब।
1: खेती बाड़ी कब से कर रहे हो?
2: खेती बाड़ी बचपन से कर रहे हैं साहब।
1: अच्छा, तो कौन कौन सी खेती होती है आपके यहाँ?
2: बरहना भी करते हैं, गेहूँ धान भी करते हैं।
1: अच्छा, मतलब दोनों खेती करते हैं। हाँ। बरियाना की भी करते हैं और गेहूं धान की भी करते हैं। तो इस समय कौन कौन सी फसलें आपके खेतों में हैं?
2: इतने टाइम घुइया खड़ी है।
1: घुइया, तो घुइया की देखभाल कैसे कर रहे हो?
2: देखभाल क्या है, तीसरे दिन चौथे दिन पानी लगता है और एमपीके डालते हैं, देसी खाद डालते हैं और यूरिया नाम भर के लगाते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा करते हैं कि आप देसी खाद डालते हैं।
2: पशु हैं, पशु पालते हैं।
1: तो सियाराम भैया एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे गेहूं धान की खेती करते हो तो धान की तैयारी चल रही है?
2: हाँ, धान की तैयारी चल रही है, पौध तैयार हो चुकी है साहब।
1: कितने दिन हुए पौध डाले हुए?
2: पौध डाले कम से कम 20 दिन हो गए हैं।
1: अच्छा, तो अभी कितने दिन बाद लगाओगे?
2: 4-5 दिन के बाद लग जाएगी।
1: तो रोपाई करते हुए का बातन को ध्यान रखना चाहिए?
2: सभी बातन में ध्यान रखना चाहिए साहब।
1: तो खेत कैसे तैयार करोगे रोपाई के लिए?
2: खेत तैयार ऐसे करते हैं कि पहले से उसकी सीद बात लगानी पड़ती है, क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं।
1: काय से जुताई करवाते हो, कंधार कैसे बनवाते हो?
2: कंधार ट्रैक्टर से बनवाते हैं साहब।
1: कौन सी मशीन लगती है ट्रैक्टर के पीछे?
2: रोटावेटर लगाते हैं, कल्टीवेटर लगा देते हैं।
1: और आपने जो बात कही कि खेती में हम देसी खाद का प्रयोग करते हैं, तो देसी खाद से क्या फायदा है?
2: देसी खाद से सब कुछ फायदा, वैसी देसी खाद अगर पड़ जाती तो कोई टक्कर नहीं ले पाएगा देसी खाद की।
1: कब डालते हो देसी खाद अपने खेतों में?
2: देसी खाद फसल तैयार होने से पहले पड़ती है, हफ्ता भर पहले तैयारी करी जाती है, तो इसके बाद पौध लगाई जाती है।
1: तो मतलब पहले खेतन में आप देसी खाद डालोगे, फिर जुताई करवा
2: दोगे? हाँ, जुताई करवा
1: दोगे, उसके बाद कढ़ैर बनवाओगे। हाँ। फिर आप रोपाई करो।
2: हाँ,
1: तो जैसे रोपाई करते हैं धान की, तो बाद में कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना जरूरी है?
2: बाद में सभी बातें सोचने पड़ती हैं।
1: अच्छा, जैसे पौध की पत्ती पीरी पड़ जाती है।
2: हाँ, तो उसमें दवा स्प्रे लगाने पड़ती है, बहुत देख रेख करने पड़ती है, तब पौध तैयार कर मिलती है।
1: तो इस समय जैसे अब गर्मी पड़ रही है तो कैसे सिंचाई कर रहे हो?
2: सिंचाई क्या साहब, तीसरे दिन पानी लगाया है हमने।
1: अच्छा अच्छा,
2: एक दिन अंजा दे के,
1: क्योंकि नमी बनाए रखना।
2: हाँ, नमी बनाए रखने पर ना तो चली जाएगी काम से, तपन बहुत चल रही है
1: खेतन में, जो तपन ज्यादा है तो ऐसे में नमी बनाए रखें किसान भाई। और संजा की संजा पानी लगावे।
2: हाँ, संजा की संजा पानी लगता है।
1: सुबेरे पानी ना लगावे, दिन में ना लगावे?
2: तो दिन में लगाने से तो कौर खोल जाता है पानी।
1: हाँ,
2: उससे नुकसान होता है पौध को, दोनों टाइम पानी लगना चाहिए।
1: तो बरियाने में जैसे अब घुइया है, और कौन कौन सी कर ले तो खेती बरियाने की?
2: बरियाने की खेती तुरैया है, लौकिया है, भिंडी है, घुइया है।
1: कब से कर रहे हो बरियाने खेती?
2: बरियाने बचपन से कर रहे हैं साहब।
1: अच्छा, तो का बातों को ध्यान रखने पड़ते हैं?
2: सभी बातों को ध्यान रखने पड़ता है कि क्या करने है क्या नहीं करने है। तैयारी तो पहले से करोगे तभी तो सफल होगे।
1: तो कैसे खेत तैयार होता है बरियाने की फसल के लिए?
2: बरियाने खेती के लिए पहले जुताई होती है, किसी वाहन से कराए दो जुताई, हैरो से कराए दो, कल्टीवेटर या रोटावेटर से खाद डालो, खाद डालने के बाद में उसको घुइया गाड़ने दो, उसे खेचो, कूड़ कितनी दूरी गाड़ने हैं, कितना का करने हैं।
1: आलू ना लगाते?
2: हाँ, आलू भी लगाते हैं।
1: तो आलू कैसे लगाते हो, मशीन से लगवा तो हाथ से लगवा?
2: भाई

0: जमीन नहीं है अपने पास, खाली तुमसे झूठ सच कह रहे थोड़ी जमीन है, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं
1: अरे
0: यार।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ
1: और देखो जो हमारे पास उपलब्ध है जमीन बाई में हमें खेती करने हैं, तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जैसे बरियानी की फसल नाजुक फसल होती
0: हाँ
1: है,
0: नाजुक फसल
1: तो
0: होती
1: कैसे
0: है,
1: ध्यान रखने पड़ते हैं, किन किन बातों को ध्यान रखने पड़ते हैं?
0: भराई की बहुत ध्यान रखने पड़ता है, कितने टाइम पानी लग रहा है, कितने टाइम खाद लग रही है, सब बातों को ध्यान करने पड़ता है। अब इतने टाइम चल रही है,
1: अच्छा गोइया
0: हाँ
1: बाजार कहाँ ले जाते हो तुम जाए?
0: ज्यादा माल हो तो आड़त बेच दो, अपना बाजार में बैठ के बेच लेते हैं सब।
1: बाजार में बैठ के बेच लेते हो, तो जैसे एक तो जो फायदा है कि जल्दी जल्दी पैसा मिल जाए,
0: हाँ उसमें पैसा नहीं पड़ता साहब, थोड़ी जमीन है अपने, जल्दी जल्दी लौट बदल करते रहते हैं।
1: करते रहते हैं। तो जो सरकार योजनाएं चला रही है उनको फायदा मिल रहा हुआ
0: हाँ
1: आपको?
0: मिल रहा है, जमीन वाले भी रुपया मिल रहा है और कोटा भी मिल रहा है, सब सुविधा मिल रही है साहब।
1: अच्छा, खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं आप?
0: हाँ पशुपालन करते हैं, एक गाय है, एक बछड़ा है छोटा सा,
1: हाँ,
0: और दो भैंसा है।
1: तो उनकी देखभाल कैसे कर रहे हो
0: उनकी
1: आजकल?
0: देखभाल क्या करते हैं, सिबत्ते उठते हैं, मजदूरी भी करते हैं, पराए काम पे जाते हैं, तब लोग उनका इंतजाम कर देते हैं।
1: अच्छा, मजदूरी भी करते हैं,
0: हाँ
1: तो मतलब खेती का काम भी कर लेते हैं, बरियाना भी
0: हाँ
1: करते हैं, और
0: जैसा मौका लगता है साहब वैसा काम कर रहे
1: जब
0: हैं।
1: समय मिलता है तो
0: हाँ
1: मजदूरी भी कर लेते हैं।
0: मजदूरी कर लेते हैं,
1: तो इस समय मजदूरी लगभग क्या चल रही है?
0: मजदूरी अभी तक तो थी 300 रुपए,
1: हाँ,
0: अब भैया 400 रुपए।
1: 400 रुपये।
0: गन्ना की खुदाई करते हैं, सुबह से कसी पकड़ते हैं, दोपहर तक रोकत नहीं है, जैसे पानी पीते हैं तभी रोकते हैं, वरना बराबर चलते रहते
1: तो
0: हैं।
1: एक दिन में लगभग 1 बीघा खेत तो बरिया देते हो?
0: हाँ 1 बीघा खेत आराम से खोद देते
1: खोद
0: हैं।
1: देते हो,
0: हाँ
1: तो अच्छी बात है। और देखो हम तो जय चाहेंगे कि आप अच्छे से खेती बाड़ी करो और अच्छा लाभ करो। अब चलत चलत का कहना चाह रहे हो किसान भाइयों से, किस तरह से खेती करना चाहिए किसान भाइयों को?
0: पहली बात तो देसी खाद लगाना चाहिए, फिर खेत को तैयार करो, उसके बाद में पौधे लगाओ। कोई भी फसल करो, बरियाना करो या और कोई गेहूं धान करो, तैयारी तो पहले ही करनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल, तो ये है कि जब हम पहले से तैयारी कर लेंगे तो बहुत अच्छी तरीका से हम खेती कर
0: हाँ
1: पाएंगे।
0: कर पाओगे, उसमें धोखा नहीं होगा
1: हाँ, और अगर हम लापरवाही करेंगे तो हम
0: तो, हाँ तो कुछ नहीं मिल पाएगा,
1: अच्छी खेती ना कर
0: ना कर
1: पाएंगे।
0: पाओगे।
1: तो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ थे सियाराम जी, और सियाराम जी का कहना है कि सब समझ बूझ के खेती करें, देसी खाद को प्रयोग
0: हाँ
1: करें और
0: हाँ
1: समझदारी से खेती करें, लापरवाही ना करें।
0: ना करें
1: तो
0: साहब,
1: सियाराम जी आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने खेती बाड़ी के अपने अनुभव साझा करे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो भैया मैंने देखो अभी आप सुन रहे हैं कृषक अनुभव बातचीत में श्री सियाराम जी के खेती बाड़ी के अनुभव, और आपसे बातचीत कर रहे हैं भैया रविंद्र कुमार। और भैया बनो अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारो सो लोकगीत, जिसको सुनने के लिए भैया ढेर सारी फरमाइश हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है। आपने कस्बा केवड़िया नवाबगंज जिला बरेली से राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल, धर्मवीर, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, अंकुश मौर्य, राजू, चंद्रपाल, उल्फत शर्मा, बबलू, वेदपाल, संजीव और उनके परिवार के सभी सदस्य, और आप हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नुहाकर, निर्मला विशाल, और मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायड़े, आशीष मोहकरे, और ग्राम करेली बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, समीम अंसारी, माहे नूर अंसारी, नसरीन अंसारी, समा अंसारी, और कोडवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, और आप हैं मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नबेद हसन अब्बासी, रसीद बारसी, अनम अब्बासी, यसफ अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी और उनके परिवार के सभी सदस्य, कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य, मानवी मौर्य, और यहीं से अनोखीलाल मौर्य, सुंदरदेवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही, स्वाति मौर्य और उनके परिवार के सभी सदस्य, बक्सीना दातागंज बदायूं से विमल ठाकुर, सरता ठाकुर, शुभ, लव, गुनगुन, अमर सिंह, नीलू, अमन, रिया, सेजल, सूर्य, सोना, रीना और नीरज। तो आप सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं जो प्यारो सो लोकगीत।

0: श्रोताओं नमस्कार, ट्यून किया है आपने 100.4 एफएम आकाशवाणी का बरेली केंद्र। और श्रोताओं जैसा कि आप
1: तो भैया देखो, अभी आप सबने सुनो जो लोग गीत, कुएं का ठंडा जल पीपल की छांव रे, रुक जाओ परदेसी आज मेरे गांव रे। बड़ो प्यारो भैया लोकगीत हो, और वास्तव में गांव की जो महिमा है वो अलग ही है। फिलहाल अब कार्यक्रम से विदा लेने को समय आ चलो, तो अगले कार्यक्रम में नई नई जानकारी के साथ आपके बीच फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने भैया कृष्णपाल को देव अनुमति, और करो स्वीकार भैया बहनों

ग्राम जगत कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय वट।

0: श्रोताओं नमस्कार, ट्यून किया है आपने 100.4 एफएम आकाशवाणी का बरेली केंद्र। और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रमों का एक नया सिलसिला चला है, उसकी सिलसिले में एक प्रोग्राम है हमारे और आपके बीच, समाज के ही वृद्धजन जो सीनियर सिटीजन हैं उनके माध्यम से हम उनको जोड़ते हुए कार्यक्रम लेकर आए हैं। कार्यक्रम का नाम है अक्षयवट। अक्षयवट यानी वो प्रतिबिंब है, वो समानता है कि जो अक्षयता प्रदान करता है हम सबको अपनी बातों के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से। इसी कड़ी में कार्यक्रम में आज हमारे साथ स्टूडियोज में आई हैं श्रीमती चंपा देवी जी। ना का समाज में रहने का, अपने जीवन को रेडियो से जुड़ाव का, परिवार को संभालने का, इन सारे चीजों को मिला जुला कर अपना ही एक अनुभव है और उस अनुभव को हम जानेंगे अपने इस कार्यक्रम अक्षयवट में। तो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या है?
1: चंपा देवी।
0: जैसा कि आपने हमें बताया कि आप एक हाउसवाइफ हैं, परिवार संभालती हैं, साथ ही साथ पशुपालन भी करती हैं। तो चंपा देवी जी, ये दोनों चीजों पे बात हम करेंगे, परिवार संभालने पर और पशुपालन पे। लेकिन उससे पहले आकाशवाणी अब मना रहा है अपने 90 वर्ष, यानी इस वर्ष आकाशवाणी 90 साल का हो गया है। जब जीवन में कुछ समय पहले जब आपने शुरुआत में देखा होगा, जीवन में आप बड़े हो रहे होंगे, हम लोग तो अभी बहुत छोटे हैं, रेडियो आया, मनोरंजन का एक साधन रहा, न्यूज इसी पे मिलती थी, कोई और साधन नहीं था। आपने भी देखा होगा अपने बचपन में, तो कुछ इससे जुड़ी बातें कि बचपन में आपने रेडियो को पहली बार कैसे देखा, उसके बारे में कैसे सुना?
1: पहली बार ऐसे सुना हमने, जो पहले रेडियो में जो मशीन लगती थी उसमें गाने आते थे।
0: अच्छा, जो उसमें मशीन लगती थी,
1: मशीन लगती थी, पिन से चलती थी,
0: पिन से चलती थी,
1: वो वाली के गाने सुने,
0: गाने सुने आपने। तो मतलब उस दौर में भी, यानी तब आपकी शादी हो गई थी?
1: शादी नहीं हुई
0: तब, नहीं हुई थी,
1: नहीं।
0: तो गाने यानी उस दौर में ऐसे सुना आपने पहली बार
1: जी।
0: अच्छा, कभी आपने ये देखा हो कि आपके बाबा पापा परिवार के लोग जो है रेडियो सुन पे समाचार सुन रहे हो, या फिर ऐसा गांव में होता था पहले?
1: काम बिजी,
0: सब लोग खेतीबाड़ी में, अपने
1: खेतीबाड़ी में तो वो
0: नहीं सुन पाते थे। लेकिन हाँ, आपने जो है पहली बार अपना वहाँ पिन पे गीत सुनने की शुरुआत हुई, तो कितनी बड़ी बात होती थी उस दौर में कि अपनी पसंद का अगर कोई गीत सुन ले रेडियो पर, तो कितना खुशी होती थी उस दिन,
1: होती थी,
0: है ना। फिर अच्छा, जीवन में आगे बढ़े, आपका विवाह हो गया, तो आप विवाह के बाद सीधे बरेली आ गई या अपने गांव ही रही?
1: गांव गए थे पहले।
0: अच्छा, गांव गए,
1: शादी होकर गांव में गए थे।
0: अच्छा अच्छा, उस समय बड़ा थोड़ा काम कुल, इतने सारे काम, बड़ा परिवार होता था, सबको संभालना होता था, बहुत काम होता, तो उस बीच में मौका लगता था कभी कि कहीं रेडियो सुनने को मिल जाए?
1: सुन लेते थे काम करते हुए।
0: अच्छा, तो उस समय आपको कुछ याद आता है कि कौन सा स्टेशन बरेली या क्या आता था?
1: बरेली आती थी।
0: अच्छा,
1: और क्या कहते हैं,
0: नजीबाबाद या रामपुर?
1: नजीबाबाद आता था, रामपुर आता था
0: जी, इस तरीके से।
1: विविध भारती आती थी, और बम्बई।
0: हाँ, बम्बई विविध भारती जी जी। तो देखिए, उस दौर से आज का दौर, आज आप देखिए कि आकाशवाणी को यानी रेडियो को पहले क्या एक रेंज होती थी कि भाई यहाँ तक रामपुर आएगा, यहाँ तक नजीबाबाद आएगा, यहाँ तक बरेली, सबकी एक रेंज है। अब इतना प्रगति कर ली है हम लोगों ने कि रेडियो, आप आकाशवाणी को लोग विदेशों में सुन रहे हैं, कितनी दूर दूर तक चले गए, अपनी पसंद की गीत, अपनी पसंद की बातें हम लोग जो है अब कहीं भी सुन सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग रेडियो पर विश्वास
1: करते हैं
0: हमारी इस पे कही गई बातों में। तो आपको क्या लगता है चंपा देवी जी, कि रेडियो पर जो भी बात हम लोग करते हैं, चाहे वो किसान संबंधी हो, पशुपालन संबंधी हो, महिलाओं का प्रोग्राम आता है, घर परिवार,
1: अच्छा लगता है सुनते हैं,
0: है ना, और इसमें ज्ञान की बातें हैं,
1: सभी बातें मिलती हैं रेडियो से,
0: सभी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो चंपा देवी जी, अच्छा एक बात और बताइए कि हम देख रहे हैं आज कितनी भागदौड़ भरी जीवन है ना, इंटरनेट सबके पास ही, मोबाइल आ गया है ना, ऐसे में हम देखते हैं कि थोड़ा परिवार भी अब कम बात करते हैं आपस में, इतने ज्यादा सबके पास मोबाइल हो गए हैं कि लोग
1: एक दूसरे के पास नहीं बैठते
0: यहाँ तक कि रोटी खाने ते भी नहीं है एक साथ,
1: नहीं
0: है ना, सबका अलग अलग
1: नहीं खाते रोटी।
0: तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या सबको एक साथ पिरो के रखने के लिए एक क्या क्या करना चाहिए कि एक साथ खाना खाएं, एक साथ बातें करें, परिवार में मिलजुल के क्या
1: करें? अब करें तो बहुत है, लेकिन बच्चे नहीं
0: हो पाते,
1: नहीं बुआएं आई हैं,
0: तो इस तरीके से
1: कि अब साथ में बैठ के सब खाना खाएं।
0: अच्छा, आप लोग जब अपने शादी करके आए तो कितना बड़ा परिवार था, तो कभी ऐसा लगता था इतने सारे लोगों का खाना बना रहे हैं?
1: हमारे मायके में बहुत बड़ा परिवार था, टोकरी में खाना
0: रखा जाता था। अच्छा, पहले ये कॉमन बात थी, ये सामान्य बात थी कि भाई 10-10, 15-15 चाचा ताऊ सबके परिवार मिलजुल के रह रहे हैं, सब लोग एक साथ बना के
1: रहते थे
0: और एक साथ ही मतलब
1: खाना
0: खाना बनता था, तो सब एक दूसरे की मदद कर रहा है, कोई सब्जी काट ले रहा है, कोई छोंक रहा है, कोई आटा गूंद ले रहा है, कोई ऐसे, तो काम भी नहीं

0: पता चलता था।
1: पहले चक्की चलती थी, जो चक्की थी नहीं।
0: हाँ, वो जात वाली।
1: तो वो एक जनी पीस रही है, तो एक जनी धान कूट रही है, एक जनी खाना बना रही है,
0: और
1: ये होता था।
0: ये होता है, और आदमी खुशी खुशी उन चीजों को कर लेता था। अब विडंबना देखिए कि अब हम देख रहे हैं कि एक कुटिया होती थी लगभग हर परिवार में। हाँ, हर घर में एक कुटिया, जिसमें हम लोग जो है अभी गेहूं खंद गए तो उसके अंदर गेहूं रख दिया गया। और मैं हम अपने बचपन की ही बात बताएं तो हमारे पास ही लगभग 10-15 क्विंटल की एक कुटिया थी। साल भर का गेहूं उसमें खरीद के रख दिया गया, फिर ढोल हर महीने अपनी जरूरत
1: के अनुसार रख लेते। अब तो टीन के चल
0: गई है, वो टीन वाली मान के। अब वो भी यकीन करिए कि वो भी नहीं हो रहा है।
1: पहले टीन की नहीं थी।
0: अब पहले तो वो मिट्टी की बनाई जाते थे,
1: हम खुद बनाते थे मिट्टी,
0: अपनी कुटिया बना ली उसमें,
1: बना लेते थे।
0: अच्छा, अब आप देखिए कि वो प्रचलन भी ये पैकेट वाला आटा और ये सब आधुनिकता जब बढ़ रही है, फिर लोगों पे अन्य काम बहुत ज्यादा हो गए, लोग नौकरी पेशे में ज्यादा इन्वॉल्व है, तो इन सब कामों पर यानी कि गेहूं को कौन अब उसको साफ करे, फटके धोए, फिर सुखाए, फिर पिसवाने ले जाए, ये सब काम भी अब जो है धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है ना। तो चंपा देवी जी, कार्यक्रम में आप हमसे जुड़ रही हैं, आप हमसे बात कर रही हैं, ऐसे में कुछ अपनी बात बताइए कि कैसे आपने रेडियो सुना और रेडियो से आपको लाभ मिला।
1: कोई रेडियो ऐसे काम करते थे तब रख लिया, चला के तब सुन रहे हैं, काम भी हो रहा है।
0: तो आप जो आज के हमारे समाज में कई वर्ग हैं, भाई बेटे हुए, बहू हुए, फिर नाती पोते, छोटे बच्चे हुए, तो अगर हम बहुओं की मतलब एक सामान्य बात करें कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे यानी आपके जो बच्चे, इस वर्ग को संबोधित करते हुए अगर आप बोले तो क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए जो नहीं हो रही है? लोग कैसे आपस में मिलजुल के रहें, समूह में खाएं, पिएं, बातें करें, कुछ काम करें, जिससे कि परिवार आगे बढ़े, परिवार के बीच एकता और समरसता बनी रहे। वो लगता है क्या करना चाहिए बच्चों को?
1: बच्चे मानते तो ही नहीं, कितने भी समझाओ, कुछ भी करो,
0: करेंगे अपने ही मन का,
1: करेंगे अपने ही मन का।
0: हाँ,
1: लेकिन नहीं,
0: फिर भी, लेकिन आपको क्या लगता है क्या क्या करना चाहिए, कुछ बताइए, जिससे कि हमारे सभी श्रोता माने सुने कि भाई उनका परिवार में फिर से जो है दूरी आ रही है, वो और अच्छी नजदीकियां बनी रहे करें। तो जैसे लोग एक साथ बात करें, बात करना बहुत जरूरी नहीं, आपको लगता है
1: बात नहीं कर पाते
0: एक दूसरे से? नहीं
1: कर पाते,
0: और सब अपने अपनी अपनी जीवन में व्यस्त हैं। तो चंपा देवी जी, अच्छा अच्छा एक बताइए, हम अब बात करते हैं हमारे नौनिहालों की, हमारे छोटे छोटे बच्चों की। तो बच्चे जो हैं, हम पहले अपने मान लीजिए कोई बाबा कोई चीज लाए, उन्होंने बच्चों को दिया और कहा लो भाई बेटा बांटो, तो उसके पीछे की भावना ये होती थी कि पहले तुम सबको बांटो फिर खाना, वो चीजें मतलब संस्कार देते थे हम बच्चों को किसी ना किसी तरीके से।
1: सही बात है।
0: तो अब वो क्या लगता है आपको कि बच्चों में संस्कार वो कम हो रहा है, तो कैसे बढ़ाएं, क्या करें?
1: अब बढ़ तो जाएगा, लेकिन उन बच्चों की जो माँ है, जैसा सिखाएंगी वैसा ही सीखे,
0: मतलब लेकिन ऐसे में दादी दादा का भी तो रोल होता है।
1: दादी दादा का तब रोल होता है जब दादी दादा इकट्ठे होंगे,
0: जब साथ में रह रहे हैं।
1: साथ में
0: और अब तो सब अलग अलग रह रहे हैं,
1: इकट्ठे रहे तो दादी दादा को रोल आता है
0: जी।
1: अब अलग अलग हैं
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: मम्मी पापा का रोल चलेगा
0: और फिर वो फिर सब अलगाव बिलगाव और लोग अलग अपनी अपनी बात है। लेकिन ये मानती हैं आपकी बच्चों में संस्कार कम हो रहे हैं?
1: कम हो रहे हैं,
0: हैं?
1: कम हो रहे हैं।
0: हम लोग क्या पहले आप देखते होंगे, हम लोग अपने बचपन में कोई आ जाए तो, या हम लोग कहीं अपने ननिहाल या गांव जाए तो कमर दुख जाती थी, पांव छूते छूते
1: छूते छूते, अब कोई नहीं छुएगा पैर
0: है। और तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो नहीं लगता आपको कि धीरे धीरे गायब हो रही हैं?
1: तो पैर छूना बिल्कुल बंद।
0: तो यानी एक तरीके से इसको पैर छूने को हम बस इसको संस्कार से जोड़ के बात कर रहे हैं कि बच्चों में संस्कारों की कमियां हो रही हैं? नहीं,
1: हाँ, संस्कार की कमियां नेकादना हो रही, बहुत हो रही,
0: बहुत हो रही। तो अब इसको बढ़ाने की जरूरत है, हमें अपने बच्चों को समय समय पे संस्कार देने चाहिए, बताना चाहिए कि कौन बड़ा है, किससे कैसे बात करनी चाहिए, किससे सम्मान करना चाहिए। नहीं भाई, खाते समय हाथ धोना चाहिए, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं कि खाते समय हाथ धोएं, पहले खाने से पहले भगवान को याद कर लें। पहले हम लोग जब हम अपने पापा के साथ खाते थे बचपन में, हमें याद है, तो पापा एक कौरा उसमें से सब में से निकाल के अलग रख देते थे, तो ये
1: पहले लोग रख देते थे।
0: तो ये चीजें अब धीमे धीमे कम होती जा रही हैं। लेकिन खैर, आप आज हमसे कार्यक्रम में जुड़ रही हैं, इतनी सारी आपने हमसे बातें की और बताए अपने अनुभव कार्यक्रम में जुड़े हुए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जैसे गीत सुनना भी पसंद है, कभी कोई गीत पसंद आया आपको?
1: हाँ, गीत पसंद।
0: कौन सा गीत आपको पसंद है, आज आपको कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपकी पसंद का कोई गीत, कोई गीत आपको याद हो जिसकी दो एक लाइन ही याद हो या गीत के बोल ही याद हो?
1: कोई सा,
0: लेकिन गीत सुनना पसंद है
1: जी।
0: अच्छा अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि अपने मन की कोई बात आज कार्यक्रम में हमारे साथ साझा कीजिए, जिससे कि जो हमें सुन रहे हैं हजारों लाखों लोग, वो भी उससे लाभान्वित हों, चाहे वो पशुपालन की ही हो, चाहे वो अपने जीवन से ही जुड़ी हो, चाहे वो सबको सबके लिए

0: प्रेरणा का ही काम करें, तो क्या कहेंगी आप?
1: हमें तो भैंस को काम बहुत अच्छा लगता
0: मतलब
1: है
0: पशुपालन काम अच्छा
1: बस।
0: लगता है, तो उसमें पशुपालन कैसे करती हैं आप? अगर अच्छा मान लिया हमारे पशुपालक जो हैं भाई, वो लोग अपने पशुओं को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लें, ज्यादा से ज्यादा उनके पशु स्वस्थ रहें, उसके लिए क्या क्या करें?
1: उसके लिए भूसा में जो हरा चारा है वो भी डालना चाहिए, खर है और चोकर भी है, अब तो गेहूं हो गए हैं, गेहूं डालो पिसा के और तब ज्यादा
0: हाँ,
1: उत्पादन
0: मतलब
1: मिलेगा।
0: जितना कहने का
1: हाँ
0: मतलब आप
1: जितना
0: खिलाना
1: खिला
0: चाहिए।
1: जितना खिला लोगे उतना ही मिलेगा।
0: कई बार हम लोग देखते हैं आजकल की ये जो डेयरी व्यवसाय एक चल गया है, इसमें पशुओं के साथ हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर चारा भी नहीं देते हैं, और अगर कोई पशु बिदक जा रहा है या दूध नहीं दे रहा है तो इंजेक्शन या अन्य माध्यमों से
1: नहीं
0: उसका,
1: हम कभी नहीं लगाते हैं इंजेक्शन,
0: और लगाना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये क्रूरता ही तो है।
1: कभी नहीं लगाया हमने इंजेक्शन बहुत परसों से भैंस, जब से हमारी शादी हुई आए हैं तब से हम भैंस पाल रहे हैं, लेकिन हमने इंजेक्शन कभी नहीं लगाया, चाहे दिया या नहीं दिया,
0: और लेकिन अच्छा खिलाएंगे तो पशु जरूर अच्छा
1: जरूर
0: दूध दे।
1: देगा।
0: तो ये बात भी आपने अच्छी बात कही कि भाई पशुपालक भाई ये बस इस बात का ध्यान रखें कि जैसा कि आज चंपा देवी जी का अनुभव है कि जब से इन्होंने विवाह उपरांत भैंस रखना शुरू किया, आज तक कभी इंजेक्शन के माध्यम से दुधारू पशु का दूध नहीं उतारा है। तो आप लोग भी अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल ना करें, ये भी एक तरीके की पशु क्रूरता है और अपराध भी है। तो
1: अपराधों है, और दूसरी बात उसमें क्या कहते हैं बीमारियां फैलती
0: फैलती
1: हैं
0: हैं,
1: और नुकसान देता है बहुत
0: नुकसान
1: ज्यादा
0: शरीर के
1: होता
0: लिए भी
1: है,
0: नुकसान है, न
1: और
0: सिर्फ भैंस के लिए या पशु के लिए, बल्कि
1: भैंसियों को
0: हम लोग
1: पर
0: जो दूध
1: नुकसान
0: की
1: है, और जो लोग दूध पियेंगे उसका
0: उनके लिए भी।
1: उनके भी लिए भी।
0: तो आप सुन रहे हैं ना श्रोताओं कि बिल्कुल भी अगर आप ऐसा करते हैं तो ना करें, क्योंकि हो सकता है आप थोड़े से आप किसी व्यवसाय में जुड़े हों तो थोड़ा सा आपका लाभ हो सकता है उससे बढ़ जाए, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपका जो पशु है वो बीमार होगा। तो आप चलते चलते चंपा देवी जी, आप ये हमको बताइए कि रेडियो के माध्यम से हमारे सभी पशुपालक भाई चाहे सभी लोग कैसे जुड़ सकते हैं? इस वर्ष हम मना रहे हैं अपने 90 वर्ष, तो कैसे ज्यादा से ज्यादा रेडियो सुने और इसका लाभ ले?
1: अब वो तो अपनी अपनी मर्जी है,
0: जी
1: जब मर्जी आए तो सुनो,
0: सुनिए। और
1: और क्या कहते हैं ना, मर्जी आए तो मत सुनो।
0: हाँ, लेकिन यह है कि सुनकर इन चीजों का लाभ उठाया जा सकता है, चाहे वो पशुपालन
1: जी
0: संबंधी हो चाहे वो
1: कुछ भी
0: जीवन।
1: सही।
0: तो चंपा देवी जी, कार्यक्रम में आज आप हमारे साथ यहाँ आई, स्टूडियोज में पधारी, आपने अपने जीवन से जुड़ी, पशुपालन से संबंधित और रेडियो से जुड़ी इतने संस्मरण हमारे साथ साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षयवट, और कार्यक्रम अक्षयवट में आज की हमारी मेहमान थी चंपा देवी जी, और हम आपका यहाँ से आकाशवाणी बरेली की तरफ से अनेक अनेक आभार व्यक्त करते हैं।
2: अभी आप अक्षयवट कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 MHz पर। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में आपको जानकारी दे दें, कुमारी राखी पुत्री रक्षपाल निवासी ग्राम पड़ोवा थाना सिविल लाइंस जनपद बदायूं, ये

एक और सूचना सुनिए। कुमारी पूनम पुत्री रामदास निवासी काशीराम कॉलोनी खेड़ा नवादा थाना सिविल लाइंस जनपद बदायूं। इनकी आयु लगभग 14 वर्ष, कद 5 फीट, चेहरा लंबा, काले बाल, रंग गेहुआ और इकहरा जिस्म है। ये दिनांक 12 फरवरी 2025 से लापता हैं। इनके संबंध में यदि किसी को कोई भी जानकारी हो तो कृपया गुमशुदा सेल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में एक और

0: सूचना सुनिए। कुमारी राखी पुत्री रक्षपाल निवासी पड़ौआ थाना सिविल लाइंस जनपद बदायूं, इनकी आयु लगभग 21 वर्ष और इनका चेहरा लंबा, काले बाल, रंगे हुआ और एकहरा जिस्म है। ये दिनांक 6 मई 2025 से लापता हैं। इनके संबंध में यदि किसी को कोई भी जानकारी हो तो कृपया पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं को सूचित करें। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: बात नहीं जुल्फ की, सर मरोड़ा साहब का कैसा कुंडली मारकर बैठा है जोड़ा साहब का, ये कहीं भी दिख जाता है तो जाड़ों में भी आदमी को पसीना आ जाता है। दमूरे
2: जी उस्ताद,
1: जो पूछेगा बतलाएगा।
2: बतलाऊंगा।
1: इंसान को उल्लू बनाएगा?
2: नहीं बनाऊंगा।
1: किसी का बैंड बजाएगा?
2: नहीं उस्ताद।
1: अरे नहीं उस्ताद, अच्छा मुर्गा बनाएगा?
2: नहीं उस्ताद।
1: जमूरे तू आजकल मेरी बात नहीं सुनता तो क्या सुनता है?
2: उस्ताद मैं आजकल 100.4 FM सुनता जो इंसान को इंसान बनाता।
1: मतलब
2: न उल्लू न मुर्गा न किसी का बैंड बजाता, 100.4 FM इंसान को सिर्फ इंसान बनाता।
1: बच्चा लोग बजाओ ताली।

0: ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दीका।
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो बा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: महात्मा गांधी ने कहा था स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं गिर जाएं लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
8: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र किए प्रदान। केंद्रीय

0: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट और प्रदेश में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, कल से राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्रीराम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। मामले की सुनवाई आज अयोध्या जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत में हुई। सभी आरोपियों की पेशी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की रिमांड की मांग नहीं की है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर रही है।
1: पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी।
0: इस मामले को लेकर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने ऐलान किया है कि उसका कोई भी अधिवक्ता इस मामले में नामजद आरोपियों की ओर से पैरवी नहीं करेगा। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि बार एसोसिएशन मामले की सीबीआई की जांच की मांग भी करेगा।
2: हमारे अधिवक्ता संघ अयोध्या का कोई भी अधिवक्ता ये राम जन्मभूमि चोरी के अभियुक्तों की डिफेंस की ओर से वकालत नहीं करेगा। वकालतनामा दाखिल करने, अब चूंकि भीड़ है तो इस करने पर प्रत्येक नाम पर प्रमोशन स्वरूप अधिवक्ता संघ को वो 5 लाख रुपए प्रत्येक नाम से वो जमा करेगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शील नागो की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में आज 569 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए परिवारों को सरकार ने जमीन का मालिकाना हक देकर न सिर्फ उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है बल्कि विरासत को भी संरक्षित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीलीभीत समेत प्रदेश के सभी जनपदों के विकास को गति देने के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है।
2: आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक हब बन रहा है यूपी। अब यूपी के अंदर विकास हो रहा है। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी पीलीभीत से होते हुए जा रही है शामली के लिए, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाएगी। जितने अच्छे मार्ग बनेंगे, जितनी कनेक्टिविटी में गति होगी, उतनी ही तेज प्रगति होगी।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनहितकारी नीतियों और सुशासन के चलते पीलीभीत का कायाकल्प हो रहा है।
3: आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास की एक नई गाथा प्रदेश में लिखी गई। प्राथमिकता पे पीलीभीत में सभी योजनाएं यहाँ पर क्रियान्वयन हो रहा है और धरातल पर दिखाई दे रही है।
0: पीलीभीत के बाद मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा भी की। प्रदेश सरकार ने ई पंजीकरण मॉड्यूल के संबंध में जारी अपने पिछले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। स्टाम्प और न्यायालय शुल्क और पंजीकरण विभाग के राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि ये निर्णय अधिवक्ताओं और डीड राइटर की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
4: स्टाम्प विभाग का एक शासनादेश ऑनलाइन रजिस्ट्री की विभाग की तरफ से एक नवाचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें जीव जारी किए गए 4/6/2026 को इस जीओ में थोड़ी सी क्रिएटिव न होने के कारण से एक भ्रम स्थिति बन गई। कई जगह अधिवक्ता, कई जगह डेट राइटर को एक भ्रम हो गया कि शायद हमारा रोजगार छीना जा रहा है, और इस भ्रम को से हम लोग को बाहर निकालने के लिए अभी फिलहाल 4/6/26 का जो आया था उसको हम निरस्त करते हैं।

0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि 7वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दूसरे दिन देशभर से आए ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ व्यापक मंथन किया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने लखपति दीदी डैशबोर्ड और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए शी लीप्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारम्भ भी किया। इस आयोजन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना देशभर में लागू होगी, जो मनरेगा की जगह लेगी। इसके लिए 95,682 करोड़ की अंतरिम राशि स्वीकृति दी जा चुकी है। उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे समय पर अपनी औपचारिकताएं पूरी करें ताकि योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी और पारदर्शी ढंग से लागू करते हुए ग्रामीण विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। कार्यक्रम में डिजाइन प्रतियोगिता में प्रदेश के अभय गुप्ता और झील गौतम को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कल से UPTET 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। ये परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होगी। इस परीक्षा के लिए लगभग 15,99,000 से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। जौनपुर के युवा भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव ने भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंटरस्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में रोहित ने 87.05 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रोहित यादव के भाई राहुल ने कहा कि ये उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ थ्रो था। उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स के लिए चुने जाने पर उनके पूरे गाँव में खुशी का माहौल है।
1: इस वाले गेम में क्वालिफाई मार्क था 77 पॉइंट कुछ था एशियन गेम्स के लिए, और वहाँ अपना पर्सनल बेस्ट थ्रो करके 87.05 किए और एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई भी किए हैं, जिसमें 2 लोग जाते हैं। वहाँ एक नीरज चोपड़ा, उनका ऑलरेडी क्वालिफाई हुआ था डायमंड लीग से, 85 पॉइंट कुछ किए थे, तो यहाँ से रोहित यादव, 2 लोग जाएंगे एशियन गेम्स। हम तो खुश है, पूरा परिवार पहले से इंतजार कर रहा था कि हाँ अच्छा हो, अच्छा हुआ, पूरा गाँव खुश है इस चीज से, क्योंकि काफी मेहनत किए थे उसके पीछे।
0: राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में बीते 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आगामी 2 दिनों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भारी वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र किए प्रदान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और प्रदेश में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, कल से राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना,
3: इतनी भी क्या जल्दी थी?
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना, और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी,
2: हाँ,
4: आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम अनुरोध गीत। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम अनुरोध गीत में। अनुरोध गीत कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं आपके खतों के साथ। ये खत हमारे पास है वसंत सिंह, राजकुमार और कुलदीप चंद का। इन्होंने लिखा है डब्बाली से ये खत। दूसरा खत है हमारे पास, इसे भेजने वाले हैं मनकारा मंदिर वीडीए कॉलोनी करगैना बरेली से पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह, धर्मवीर, आशीष, अमर सिंह, हितेश, रूबी, रचना, एकता, दिव्या, ममता चौधरी, ओमवती, खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। ये खत हमारे पास आया है मुनब्बर लल्ला, नसरीन मिर्जा, अरबाज, शहबाज, सूफिया, गजाला, नरगिस, कशिश और रजिया का। अगला खत हमें भेजा है, इसको भेजने वाले हैं रावण करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। और ये खत है कुंज निवास राधा कुंज इज्जत नगर बरेली से वी के जौहरी, अर्चना जौहरी, अर्पित जौहरी और शायना बी का। ये खत भेजने वाली हैं कुमारी निशा, प्रकाश और देवेन। नगीना से ये खत हमारे पास आया है। अगला खत है हम दोस्त रेडियो लिसनर्स क्लब से, और ये क्लब है जसपुर उत्तराखंड का। इसमें रियासत हुसैन, नाजमा बेगम, रियाज रानी, तबस्सुम, रिफाकत, रुखसार और आसिफ ने खत भेजा है और हम आप सबको सुनवा रहे हैं ये प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है घराना, स्वर है मोहम्मद रफी और आशा भोसले का। गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने।
1: श्री राम चंद्र आश्रित पारिजात है,

आप 100.4 FM सुन रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है अनुरोध गीत, और अनुरोध गीत कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं आपके खत। गहघटा काशी धर्मपुर से फहीम खां, सद्दीक अली, साबिया और रामप्रसाद शर्मा का खत है हमारे पास। दूने नगर से मुन्ना सिंह कठेरिया, फजरुद्दीन भाई, अबरार और अफजाल का खत हमें मिला है। अगला खत भेजने वाले हैं गढ़िया बरेली से कैशर शमसी, अजीम शमसी, सलीम, नवेद, रजिया शमसी और इनके परिवार के सदस्य। और ये खत हमें भेजा है दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीमा अली और जुनैद अब्बासी ने। ये खत है सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी और इनके परिवार के सदस्यों का। और आप सबको हम सुनवा रहे हैं परिणय फिल्म का गीत स्वर शर्मा बंधुओं का। गीत को लिखा है जयदेव ने।

लोकगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 100.4 FM पर। कार्यक्रम में अगला खत है हमारे पास मोहम्मद सातिक, मुश्ताक शाकिर, अलकमा खत्री, अलतमश, रमेश गौड़, शादाब खत्री का पाकीजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से। ये खत हमें भेजा है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, दत्रेगी से भागवत बर्माने। ये खत है अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति का। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर, वार्ड नंबर 11, पुराना शहर, बरेली से। अगला खत भेजने वाले हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत राय, अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल का खत आया है। और ये खत हमें भेजा है इसे भेजने वाले हैं रामप्रसाद शर्मा, फजरुद्दीन, जयश्री देवी, वंदना, मनोरमा, अजय, रीता, विनोद, वंश, कनिष्का और परिवार के सभी लोग। ये पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली से खत भेजते हैं। और अगला खत है ककराला बदायूं से

मसरूफ खान, सरफराज, विकास सक्सेना, करमबीर, प्रवीण रावत, अनिल नागर और सागर बख्शी, भरत यादव का। तो आप सबके अनुरोध पर काजल फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं आपको। गीत को लिखा है साहिर ने और इसे गाया है लता मंगेशकर ने।

आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत कार्यक्रम 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से। अगला खत है हमारे पास गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर जैतिग और मीका विरक का। और अगला खत हमें भेजा है, इसे भेजने वाले हैं वारिस अली खान, शकील अहमद, इस्लाम उन्निशा, शहनाज खान और मोहम्मद दानिश। अगला खत हमारे पास आया है, इसे भेजा है रियासत और नाजमा ने जसपुर उत्तराखंड से। अगला खत भेजने वाले हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल का खत है, शेरपुर कला से अवधेश, प्रीति और नवनीत ने खत भेजा है। और ये खत हम तक पहुंचा है खुर्जा से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा का। अगला खत भेजने वाले हैं डोंगरगांव जिला राज नांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राजिका, राधिका, अनिष्का और तन्मय। तो आप सबके अनुरोध पर लीजिए सुनिए नील कमल फिल्म का गीत। गीत को लिखा है साहिर ने, गाया है आशा भोसले ने और संगीत है रवि का।

और कार्यक्रम में एक खत है हमारे पास इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अक्रम, डब्लू अक्रम, वली अक्रम, उल्लाह अक्रम का, और राजनंदगांव से याकूब यूसुफ, इमरानी और इरफान का खत है। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिवा तिवारी ने खत भेजा है। ये खत भेजने वाले हैं मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर पीलीभीत से बिमल वर्मा, विनय वर्मा और परिवार के सभी सदस्य। अगला खत हम तक पहुंचा है परिमहल काजगंज से आबाद खान, गजाला खान, अल्ताफ, एम असलम, सैफी और इनके परिवार के सदस्यों का। शमशुल कमर राही गंज डुडवारा से हमें खत लिखते हैं और ये खत भेजने वाले हैं सतीश अनेजा, विमल अनेजा चंडीगढ़ से। अगला खत आया है हमारे पास दिल्ली शहर मोरी गेट से, इसे भेजने वाले हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। मोहल्ला हलवाइया शेरकुट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार, फरीदी इकबाल, फरीदी सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हेना कौसर का खत आया है। अगला खत हम तक पहुंचा है, इसे भेजने वाले हैं वारिस अली खान और इनके परिवार के सदस्य। और अगला खत हमें भेजा है, इसे भेजने वाले हैं करुणा अवस्थी, मणिनाथ बरेली से। और ये खत भेजने वाले हैं हमारे लिए यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप, योगेश, सुनीता और मुस्कान। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने खत भेजा है। तो अगला खत आया है हमारे पास डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया का, महादेव घाट अमलेश्वर से। तो आप सबके अनुरोध पर हम आपको सुनवा देते हैं जन्म जन्म के फेरी फिल्म का गीत, स्वर लता मंगेशकर का। गीत को लिखा है भरत व्यास ने, संगीत एस एन त्रिपाठी का।

तो आप भी अनुरोध गीत कार्यक्रम में खत भेजना चाहते हैं तो हमें खत लिख सकते हैं। उसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम अनुरोध गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली पिन कोड 243001। हमारे कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं यह भी आप हमें बता सकते हैं अपने खतों के माध्यम से। उसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली पिन कोड 243001। तो आज के अनुरोध गीत कार्यक्रम से मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप अनुरोध गीत कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 8 बजने को है और अब आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों से।

पिका जहानि चित्त मोहता, स्वत वस्त्र धारिती सदैव शांति बांटती, शांत का प्रतीक माँ आवाम शांति चाहती। आपके सुपाद मातु खूब शांति धाम है, मातु भारती सदैव आपको प्रणाम है। युद्ध भूमि में सदैव देश पक्ष दक्षती, वीर देश के जवान मातु खूब रक्षती। चंडिका स्वरूप मातु युद्ध में विराजती, शत्रु भाल काट मातु देश को सवारती। आपकी पनाह मातु जिंदगी मकान।

प्रणाम है। मातृ भारती सदैव आपको प्रणाम है। नारी सृष्टि का आधार, नारी से है संसार, नारी से ही परिवार घर की ये पतवार। नारी सृष्टि का आधार, नारी से है संसार, नारी से ही परिवार घर की ये पतवार। नारी बिन घर बार सब लगे है बेकार, चाहे भरे हो भंडार खुशियाँ ना आए द्वार। जिस घर रहे नार वर से है खूब प्यार, हर दिन है त्योहार करती सदा श्रृंगार। दिल से करो आभार नारी का तो बारंबार, दिल से करो आभार नारी का तो बारंबार। खुशियाँ रहे अपार प्रेम प्यार मनुहार। नारी का करे सम्मान रखे हम सब ध्यान, नारी का करे सम्मान रखे हम सब ध्यान। परिवार का ये मान देती है ये बलिदान, छोड़ स्वयं पहचान घर को संभाले ठान। करती ना अभिमान कितनी है ये महान, पढ़ी लिखी खूब जान छोड़ आई सब शान, पढ़ी लिखी खूब जान छोड़ आई सब शान। नारी घर की है भान बच्चे की है सोपान, देती है ये जीवन दान करे हम गुणगान। पूजित ये भगवान डरे ना ये तूफान। नारी सृष्टि का आधार, नारी से है संसार, नारी से ही परिवार घर की ये पतवार।

वो जहाँ बचपन बिताया है, समय के साथ चलना ही हमें सबने सिखाया है। पुराना दौर बीता, अब नया फिर दौर आया है। समय के साथ चलना ही हमें सबने

चलना ही हमें सबने सिखाया है। पुराना दौर बीता, अब नया फिर दौर आया है। समय के साथ चलना ही हमें सबने

हिंदी कार्यक्रम में अभी आप प्रदक्षिणा मिश्रा का काव्य पाठ सुन रहे थे। अब आज का हिंदी कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
3: तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
2: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
4: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आनंद लीजिए हरिहरन की गाई चंद गजलों का। कार्यक्रम में पहले आपको सुनवाते हैं बुल्ले शाह की लिखी ये गजल हरिहरन की आवाज में।

अभी आप हरिहरन की आवाज में अमीर खुसरो का कलाम सुन रहे थे। अब आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

अभी आपने ये गीत सुना, ये दिल आशिकाना फिल्म से। शब्द रचना थी समीर की, इस गीत की तर्ज बनाई थी नदीम श्रवण ने, इस गाने को गाया था कुमार सानू के साथ अलका याग्निक ने। चित्रपट से कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गुप्त फिल्म का गीत। ये गीत आप सुनेंगे अलका याग्निक और कुमार सानू की ही आवाजों में। आनंद बख्शी की कलम से निकले इस गीत को संगीत से संवारा है विजू शाह ने।

0: अलका याग्निक और सोनू निगम को अभी आपने सुना दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक

0: आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए

0: कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: Applications launch is going to play a very important role.
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
1: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है, जो पहले दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से 0 उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
3: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
4: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
3: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2 पहिया, तिपहिया, 4 पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है, जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध

किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।

0: फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं प्यासा सावन फिल्म के गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने।

0: जाली उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी
1: हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए अब रविंद्र जैन के गीत संगीत निर्देशन में सुनते हैं चित्त चोर फिल्म का गीत, आवाजें यशुदास और हेमलता की।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: लीजिए सुनिए दस्तक फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत तैयार किया है मदन मोहन ने।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम की अंतिम पेशकश जुर्माना फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की, संगीत आर डी बर्मन का बोल आनंद बख्शी के।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: साथियों, आज हम जिस फनकार के फन का जिक्र कर रहे हैं वो वर्सिटाइल आर्टिस्ट हैं। इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम उनकी किस खूबी का जिक्र करें और किसका ना करें। हम सोचते हैं क्यों ना उनसे आपकी सीधी बात करा दें।
1: नमस्कार जी, मेरी तारीफ मैं अपने मुंह से क्या करूं।
0: सुदेश भोसले आज के हमारे फनकार हैं और अब आप समझ ही गए होंगे हमारी मुश्किल क्या है। बहरहाल हम पहले सुनते हैं उनका गाया गाना, फिर सुनेंगे उनके बारे में उन्हीं की जबानी।

0: कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी मालूम हुआ। जो भी आज मैं दिखता हूँ या जो भी करता हूँ, बिल्कुल उसके विरुद्ध था। बिल्कुल बचपन में मैं स्कूल भी जाता तो मालूम भी नहीं पड़ता था मैं स्कूल में क्लास में बैठा हूँ या नहीं। क्वाइट एकदम, किसी से बातचीत नहीं। फिर अब जो मैं आवाज़ें बनाता हूँ, जैसे खासतौर पे अमित जी की आवाज़, मैं बचपन में लता जी के गाने बिना वॉइस चेंज किए गा सकता था। मतलब वॉइस में आवाज़ मेरी लड़की जैसी थी। तो लोग, मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी चिढ़ाते थे कि भाई बिल्कुल वॉइस, आवाज़ तुम्हारी एकदम लड़की की तरह है। लेकिन एक बात यह थी कि मम्मी जो थी गायिका थी सुमन भोसले, मेरी नानी क्लासिकल सिंगर थी दुर्गाबाई शिरोडकर, आगरा घराने की क्लासिक। तो म्यूजिक का माहौल तो बचपन से था, लेकिन कभी माता पिता ने ये नहीं सोचा था कि मैं भी गायक बनूंगा। लेकिन बचपन से बहुत सुना है और अच्छा गाना बहुत सुना है, और घर में ये लगा था कि मैं पेंटर बनूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे और मैं खुद बहुत अच्छा पेंटर हूँ, पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप बनाता हूँ। फैमिली में म्यूजिक एंड पेंटिंग दोनों बचपन से हमने देखा है और उसके साथ हम बड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी पेंटर थे और हम लोग फिल्मों की पब्लिसिटी करते थे, जिससे आप होर्डिंग्स और बैनर्स जो देखते हैं एनआर भोसले के नाम से हम लोग करते थे। और एट द एज ऑफ 1974 में मैंने पहले पोस्टर, मतलब पहला पोस्टर पेंट किया, वो था राजेश खन्ना हेमा मालिनी की फिल्म प्रेमनगर का। तो मुंबई में जितने भी बैनर्स लगे थे सारे मेरे हाथों से पेंटिंग हुए थे। उसके बाद मैंने कई साल 74 से 82 तक लगातार पेंटिंग किया पिताजी के साथ। उसके बाद मैंने जैसे प्रेमनगर के बाद जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क, श्रीमान श्रीमती, निशाना, काफ़ी फिल्में, मराठी हिंदी फिल्मों के बैनर्स पेंट किए। तो मेरा पेंटिंग भी इतना अच्छा था कि मेरे पिताजी को ये लगा कि मैं यही बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा।
1: एक मिनट सुदेश जी, आगे बढ़ने से पहले हम एक गाना सुन लें, फिर बातें भी होंगी।

के गाने का शौक था और एक बचपन से ये मुझे एक ऊपर कुदरती एक देन थी कि आमतौर पर जब आदमी कोई अच्छा गाना सुनता है उसकी इच्छा होती है गाने की तो वो अपनी आवाज़ में गाता है, लेकिन बचपन से मुझे ये था कि अगर मैं हेमंत दा का गाना सुनूं तो हेमंत कुमार की जैसे ही गाने की अपने आप कोशिश होती, या सैगल साहब हो या सचिन दा हो या किशोर दा हो, तो ये फ़ायदा मुझे कॉलेज में हुआ। तो हर कॉलेज में जैसे कल्चरल ग्रुप होता है तो वहाँ मैं ज्वाइन हुआ, तो जब जब भी मौका मिले मैं एक एक दो दो लाइनें सब सिंगर्स की गाता था, तो उधर लोगों को अच्छा लगा कि एक आदमी कई आवाज़ों में गाता है। अब ये करते करते हुआ कि मिमिक्री तो मतलब जैसे इमिटेशन तो चल ही रहा था, सब उस वक्त मुझे कॉलेज में पहली बार मतलब लोगों के सामने गाने का या ना पब्लिक परफॉर्मेंस का मतलब कई साल मुझे कह सकते एक ट्रेनिंग जैसे मुझे मिल गई। गाना तो बचपन से शौक तो था लेकिन कभी किसी के सामने गाने की हिम्मत हुई नहीं। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे कॉलेज जाने लगा तो लोगों ने मतलब फ्रेंड्स ने थोड़ा इनक्रेज किया, तो उनके साथ धीरे धीरे हंसी मजाक में पहले जैसे दोस्तों में बैठ के गाना सुनाना शुरू किया तो उन्होंने पसंद किया, फिर जैसे हमारे ग्रुप का जो कॉलेज का जो ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा उसमें कभी मौका मिला तो एक हाथ दूसरे गाने गा लेता था मैं। बहुत साल पहले हमारे जहाँ रहता हूँ मैं हमारे कॉलोनी में एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते थे 26 जनवरी, तो वहाँ लोगों को तो पड़ोस पड़ोस वालों को पता था कि थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता हूँ, तो उन्होंने एक दिन अचानक मुझे ऐसे बिना कहे मेरा नाम अनाउंस करके मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया मुझे और बोले अभी सुदेश भोसले गाएंगे, और मुझे पता भी नहीं था। और जब मैंने देखा कि सामने इतने लोग थे तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया था, लेकिन मैंने गाना शुरू कर दिया। वो गाना था दुश्मन का किशोर दा का, वादा तेरा वादा।

से तो ये शुरुआत तो मैंने की, और जब मैंने गाना खत्म किया तो वंस मोर हो गया, तो मैं भी हैरान हो गया वंस मोर। तो ये मेरा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था।

0: वेद भारती के हमारे सभी श्रोता सुदेश भोसले जी को बहुत करीब से जानते हैं, है ना? आज ही जानेंगे क्यों नहीं। अक्सर सुदेश जी अपने हिट प्रोग्राम्स के साथ विविध भारती पर मौजूद रहते हैं। उनके ऐसे ही एक आइटम की छोटी सी झलक यहाँ भी।
1: इधर तुम्हारे घर में, तुम्हारे सामने किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। अपन का इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका जरूरत है। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता सा लवर इस बच्चा लोग को? ये पालता, ये मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं।
2: तो ये सीन था और बिल्कुल वो बच्चे एकदम हैरान हो गए। बिल्कुल दोबारा मुझसे वो करवाया, तब मुझे कहते ना कॉन्फिडेंस आ गया कि यस। उसके बाद मैंने उनके जो उस वक्त की सारी फिल्में थी, जैसे लावारिस, दीवार, या उसके बाद अमर अकबर एंथनी, अंधा कानून वगैरह, उनको मैंने लाके डायलॉग्स को लिखा, उनको बाय हार्ट किया। फिर एक एक एक एक जैसे मौके मिलते गए, मैं एक एक सीन लोगों के सामने करता गया। और उस वक्त बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि अमित जी बिल्कुल एकदम टॉप पर थे, मोस्ट पॉपुलर उस वक्त थे उनके, जब डॉन वगैरह फिल्में आई थी। और कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उस वक्त अमित जी की नकल नहीं करता था, तो दैट्स वाई लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरी भी मतलब हिम्मत बढ़ गई।

0: शशि कपूर जी जो प्रोड्यूसर थे फिल्म अजूबा के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो मुझे ले गए अमित जी से मिलाने कि अमित जी ये हैं सुदेश भोसले, इन्होंने गाया आपके जो दो गाने इन्होंने गाए हैं। तो अमित जी को मैं देख रहा था जैसे साक्षात, यकीन नहीं हो रहा था कि अमित जी सामने खड़े मेरे, तो मैं हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करने लगा, तो सामने से वो हाथ जोड़ के बोले, भले अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती हैं। ये उनका फर्स्ट रिएक्शन था। और जब जुम्मा चुम्मा मैंने गाया उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं नहीं गाऊंगा, मेरे सारे गाने सुदेश गाएगा। तो ये उनकी रिएक्शन थी। बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे और बहुत इनकरेज भी किया।
1: परांदी जाजर ले गई

0: आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था स्टेज की दुनिया के जाने माने कलाकार और पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर।
1: आज के फनकार

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त पंकज शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज की इस महफिल में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे सदाबहार गीत जो रिश्तों की मिठास, दिल की अनकही बातें, रूठने मनाने के एहसास और आखिर में एक खूबसूरत विदाई की दास्तां बयां करते हैं। तो आइए सुरों के इस सफर की शुरुआत करते हैं। श्रोताओं, जब कोई अपनी मौजूदगी से हमारी जिंदगी को खूबसूरत बना दे तो दिल से यही दुआ निकलती है, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। इसी एहसास के साथ सुनिए ये नगमा।

दोस्तों, रिश्तों की असली खूबसूरती सिर्फ मिलने में नहीं बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने में होती है। जब शब्द साथ छोड़ दें तब दिल की आवाज ही सबसे सच्ची जुबान बन जाती है। इसी ख्याल को साथ बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। कभी-कभी दिल जो कहता है वही सबसे बड़ा सच होता है। तो आइए सुनते हैं दिल की धड़कनों को सिरों में पिरोते हुए ये प्यारा सा गीत।

लेकिन श्रोताओं, हर रिश्ते में कभी ना कभी छोटी छोटी नाराजगियां भी आ जाती हैं। रूठना भी प्यार का एक रंग है और

अभी आपने लता मंगेशकर को सुना ज्वार भाटा फिल्म में। जी हाँ श्रोताओं, कभी कभी एक मुस्कान और एक प्यार भरा लफ्ज सारी नाराजगी दूर कर देता है। और अब कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव, हर महफिल की तरह हमारी संगीत की इस महफिल को भी आज के लिए अलविदा कहना होगा। लेकिन विदाई का मतलब जुदाई नहीं, बल्कि अगली मुलाकात का वादा होता है। इसी एहसास के साथ सुनिए आज का ये अंतिम।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में जिन गीतों को आपने सुना, उन्होंने हमें सिखाया कि रिश्तों में शुक्रिया भी है, दिल की आवाज भी, रूठने का अंदाज भी है और मुस्कुराते हुए विदा लेने की अदा भी। इसी उम्मीद के साथ कि फिर आपसे होगी मुलाकात, मैं आपका रेडियो दोस्त पंकज शुक्ला आपसे अनुमति चाहता हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ऋषिकेश गांगुर्डे का राग बागेश्री में गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है। बोल हैं लाल मनावे तुम। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं पियरवा घर आओ।

चित रचना एक ताल में निबद्ध थी जिसके बोल थे लाल मनावे। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध थी, बोल थे पियरवा घर आवो। अब आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान

अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।